मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:56 और 25 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच

0: ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आरंभ करते हैं देशगान के साथ।

आसुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकारोंकार अविनाशी तुम ही देवाधिदेव जगतोत्सर्जक प्रलयकर्ता सत्यम शिवम सुंदरा।

शिव जी की इस वंदना के बाद कार्यक्रम वंदना के अंत में आइए सुनते हैं ए हरिहरन के स्वर में ये भक्ति गीत।

0: ये थी आज की वंदना। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
4: पवन के ठंडे झोंके के साथ
3: हिलोरे लेगी
4: आकाश की वाणी।
3: आकाशवाणी
5: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
3: या फोन करें 222150 या 222400।
4: 222150 या 222400।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
6: जब से मानव ने होश संभाला है तब से उसके अंदर एक जिज्ञासा है। यूं तो कुछ न कुछ जानने की हर किसी में इच्छा होती है, और ये जिज्ञासा ही मानव जीवन को विकसित और समृद्ध करती हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो वह तरह तरह के प्रश्न करता है, यह क्या है, यह क्यों है, यह किस लिए है। कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमें प्रेरणा देती रहती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती रहती है। वह शक्ति है आत्मशक्ति। यह शक्ति हमारे मनोबल को बढ़ाती है, हमारे विश्वास को बढ़ाती है, और तब उसके जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो निरंतर इस शक्ति के सहयोग से बढ़ता रहता है। भक्ति की तरफ चलने वाले मनुष्य को पुरुषार्थ और प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए, श्रम भी बहुत करना चाहिए और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। दोनों का मेल बिठाने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, वह कृपा जो दुर्भाग्य की स्थिति में संभलने की शक्ति देती है, कैसे संभलें इसकी प्रेरणा देती है। जापान के प्रसिद्ध कवि नागोची हुए हैं, वे लिखते हैं, मेरे प्रभु मैं नहीं कहता कि मेरी जिंदगी का रास्ता कठिन है, उसे तू आसान कर। मेरी प्रार्थना तो यह है कि मुझे जीवन में कठिन रास्तों पर सरलता से चलना आ जाए, ऐसी आत्मशक्ति व साहस मुझे देना। मैं यह प्रार्थना भी नहीं करता कि मेरे जीवन में उलझने बहुत हैं, उन्हें तू सुलझा दे। मेरी तो यही विनती है

हृदय चाहे कितनी भी क्यों न हो, पर मुझे इतनी सुमति व आत्मशक्ति अवश्य देना कि जिससे मैं उन उलझनों को सुलझा सकूं और दूसरों की उलझनों को भी सुलझा सकूं, खुद सुलझूं और दूसरों को भी सुलझा कर उनके जीवन में आनंद भर दूं। इतनी आत्मशक्ति व सुमति अवश्य देना। आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, दुख बहुत है, वे हमारी कर्मों के फल हैं, पर मैं उन दुखों को सहने का और दुखों में मुस्कुराने का आशीर्वाद मांगता हूँ, हर घड़ी प्रसन्न रह सकूं। आखिरी पंक्ति थी, मैं यह नहीं कहता कि मेरे पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तूने मुझे

0: लोग शरीर से बहुत कमजोर दिखाई देते हैं, किंतु संघर्ष करने का साहस दिखाने का अवसर आ जाए तो वे जूझने के लिए सबसे आगे भागते हैं। शरीर की शक्ति सीमित है, उससे बढ़कर आत्मिक शक्ति है जो तप द्वारा प्राप्त होती है। जिंदगी बहुत मूल्यवान है, आत्मिक शक्ति ही जीवन में सामना करना सिखाती है। मूल्य तो हर वस्तु का चुकाना पड़ता है, संघर्ष हर चीज के लिए करना पड़ता है। जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष जीवन में न आए तो जीवन नीरस लगेगा। जितनी शक्ति आप अपने अंदर पैदा करेंगे उतनी ही आपकी बाह्य शक्ति बढ़ती जाएगी। जूझने के बाद जो शक्ति प्रदर्शित होती है उसका प्रमाण पत्र प्रकृति आपको देती है और वह बहुत कीमती होता है। मनुष्य का दिया प्रमाण पत्र तो जाली भी हो सकता है, किंतु कुदरत का प्रमाण पत्र बेशकीमती होता है। उस प्रमाण पत्र का अर्थ है आपके सामने भारी से भारी समस्या आ जाए आप घबराएंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, कहोगे तुम्हारा स्वागत है, वेलकम, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। यह सारी प्राप्ति आत्मशक्ति को सबल बनाए बिना हासिल नहीं हो सकती। प्रभु सबकी आत्मशक्ति बढ़े ऐसा आशीर्वाद सभी को दें।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख और स्वर केसरी चंद पारेख का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आइए अब सुने श्री रामचरितमानस का गायन।

शिव का वरण करने के पार्वती के निश्चय की परीक्षा लेने के उद्देश्य से सप्तर्षियों ने हर प्रकार से उन्हें शिव से विमुख करने का प्रयत्न किया, किंतु शैल कुमारी शैल की भांति ही दृढ़ थी। कहा, मैं महर्षि नारद के वचन की अनसुनी नहीं करूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। हे मुनीश्वरो, यदि आप पहले मिल गए होते तो मैं आपका उपदेश सिर आंखों पर रखकर मान लेती, परंतु अब तो शिव जी के लिए मैं अपना जन्म हार चुकी हूँ, फिर उनके गुण दोष का विचार कैसा। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक ये हठ रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी या फिर कुंवारी रहूंगी। शिव जी के लिए पार्वती की ऐसी प्रीति देखकर ज्ञानी मुनिगण उनकी जय जयकार कर उठे। बोले, हे माते, आप माया हैं और शिव कल्याणकारी भगवान। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। ऋषिगण ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती के पास भेजा, जो विनती करके उन्हें घर ले आए। उधर भगवान शंकर के पास जाकर ऋषियों ने पार्वती की दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन सुनाया, जिससे भगवान शिव आनंद मग्न हो गए।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन। स्वर शिप्रा बोस और रामकृष्ण चंदेश्री के थे। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कृषि सामयिकी की बेड़ा खाड़ा चौगोट।
1: खेतिहार भाई बहन मन, किसान जो कमानी हुन्चो नगद फसल उपरे रहे से कसन बल्लो ने फसल नगद गुण बीती होलो ने हुन्चो कीमत हाट ने नगद मिरुआ। नगद फसल का जे मशीन मंचो उपयोग करुआत असन तो खेती कमानी ने कैक मशीन मंचो उपयोग हुआ है। जसन जोताई बुनाई दाए, खत और दवाई खत देतो दाए, सिंचाई करतो दाए, फसल कटाई और ढुलाई दाए, कैक मशीन मंचो उपयोग हुआ है। मानतर खेती कमानी ने ट्रैक्टर गोटोक प्रमुख कृषि यंत्र है, जोन बेड़ा मन के नुआ उवाट ले जोड़तो काम करुआ है। ट्रैक्टर के कैक नानी नानी मशीन मन के मिशन बनावात एक आचे ये दखा रखा नगत नहीं होलो ने ट्रैक्टर नगत नहीं रहे और खेती ने खूबे असर हुआ है। जसन ट्रैक्टर जुगे काम नहीं करे, ईंधन तेल जुगे लागू आए, तेल लीकेज और बले कैक परेशानी हुआ है। एक आचे समय समय ने मैकेनिक के दखा तो रहा, संगे संगे नगत तेल नगत स्पेयर पार्ट्स जो उपयोग करतो रहा। नगद दखा रखा खूबे जरूरी है। एचो काजे आमी तुमके कैक गोठ मन के संगू से जसन रोजे दिन इंजन ने तेल के दखतो रहा, रेडिएटर चो पानी के दखून फिर पानी भरतो रहा, असने एयर क्लीनर के साफ करते रहतो रहा, हफ्ता ने ट्रैक्टर चो टायर चो हवा के चेक करतो रहा, हफ्ता ने बैटरी चो पानी के चेक करतो रहा, हफ्ता ने गियर बॉक्स चो तेल के बदलतो रहा, क्लच सॉफ्ट और बियरिंग, ब्रेक कंट्रोल, पंखा चो वाशर, पूरे चो चक्का चो हब, टाइराड और रेडियम क्रॉस सब ने ग्रीस लगातो रहा। 15 दिन ने डायनमो और स्टार्टर ने तेल लगातो रहा, धुआं ट्यूब ने कार्बन के साफ करतो रहा, इंजन तेल के बदलतो रहा, एचो पाछे डंडी ट्रैक्टर के चालू संगातो रहा, जिचोले सपाय तेल तपे दे, एचो पाछे नाली प्लग ले तेल के बाहर निकरातो रहा और सही ग्रेड चो ताजा तेल भरतो रहा। तेल फिल्टर, कागज, कपड़ा और

0: जो तेल के बाहर निकरातो रहा है और एथा नगद ग्रेड जो साफ तेल के भरतो रहा है। असने बैक एक्सल जो तेल के बाहर निकराउन साफ तेल के भरतो रहा है। हाइड्रोलिक पंप जो फिल्टर के बले साफ करतो रहा है। स्टेयरिंग आयल के बदलते रहतो रहा है। असन हिसाब ने ट्रैक्टर जो दखा रखा कर लो ने ट्रैक्टर नगद रह दे और खूबे दिन तक चले दे।
1: अभी बेड़ा खाड़ा चौगोट का प्रसारण किया जा रहा था। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
2: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
3: सुनो ना।
4: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
3: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है बस्तर के लोक वाद्य धुन का कार्यक्रम हुलहुली। आज इसमें सुनिए पाकलू और साथियों का बजाया रणबीर देवपाड़।

हुलहुली कार्यक्रम में आप सुन रहे थे रणबीर देव पहाड़, वादा कलाकार थे पाकलू और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आप सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित

होने वाले आज के कार्यक्रमों के बारे में। छत्तीसगढ़ ही लोक संस्कृति पर केंद्रित समन्वित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के लोक सुर आप सुनेंगे आज सुबह 8:30 पर। इसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। नमस्कार, जगदलपुर में सुबह 7:05 पर आज के आकर्षण सुनेगा काव्य सरिता में नीलम पांडे का कविता पाठ, साथ ही होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 मोचो माटी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे अर्जुन सिंह बघेल द्वारा प्रस्तुत कविता पाठ, अमलू सलाम की गोंडी कहानी सुनिए, साथ ही ठसा का संचालन करेंगे मिनेश कुमार पानीग्राही। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। इसमें आज की फिल्म होगी दिल क्या करे। गुलशन कार्यक्रम में पुराने नगमे पेश करेंगे सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर गुड़दुम कार्यक्रम में सुनिएगा दशरू और साथियों के गाए गोंडी गीत। एक ही कलाकार, इसमें दिन के 11:00 प्रस्तुत करेंगे लेखक और चरित्र अभिनेता कादर खान पर केंद्रित कार्यक्रम। गणेश मंडावी और साथियों के गाए गोंडी गीत हम आपको सुनवाएंगे पाटा केंजा कार्यक्रम में। प्रसारण समय दिन के 11:30। दिन के 12:00 सुनिए कला और कलाकार कार्यक्रम। 12:30 पर होगा कार्यक्रम घर द्वार। दोपहर 1:05 पर बेड़ा खाड़ा चौगोट का पुनर्प्रसारण हम करेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर प्रसारण होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का। शाम की सभा में शाम 5:05 पर समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए भारत सरकार आपके द्वार। ये कार्यक्रम आज हल्बी बोली में होगा। युवानी कार्यक्रम का प्रसारण होता है रोजाना शाम 5:10 पर। बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्बी गीत प्रस्तुत करेंगे आज शाम 6:30 पर। बस्तर के स्वर शाम 7:00 और शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम आमचो गांव। गोंडी गीतों के कार्यक्रम नानोली में आज रात 8:00 प्रस्तुत करेंगे हड़मा राम मरकाम के गाए गोंडी गीत। रात 8:30 पर पिलामन काजे गोठ कार्यक्रम में जवाहरलाल नेहरू पर जानकारी देंगे मिनेश कुमार पानीग्राही। जीवना चौसूर, इस कार्यक्रम में रात 9:15 पर आज सुनिए

0: दिन के 11 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा लेखक और चरित्र अभिनेता कादर खान पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम श्रोता सुमन हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:10 पर। ये वाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 5:10 पर। ये थी हमारे केंद्र से आज रिले और प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्यारभ्य इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशानां षड् दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। अस्याः त्रिदेशीय यात्रायाः प्रथमे चरणे असौ अद्य इंडोनेशिया देशं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः इयं चतुर्थ इंडोनेशिया यात्रा वर्तते। अत्रावधेयं यत् यात्रावधौ प्रधानमन्त्री इंडोनेशिया देशस्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तालापं विधास्यति। संधेः प्रगतिमालक्ष्य समीक्षां च करिष्यति। तदीय मुख्याः आधिकारिकाः कार्यक्रमाः जकार्ता नगरे भविष्यन्ति। परं असौ योग्यकर्ता इति कञ्चन ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं च नगरम् अपि गमिष्यति। जकार्ता नगरे प्रधानमन्त्री सुविशालं भारतीय प्रवासी समुदायं सम्बोधयिष्यति। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदेहल्यां आयोजितं सहकारिता मंत्रालयस्य पञ्चमं स्थापना दिवस समारोहं अलंकरिष्यति। मंत्रालयेन ज्ञापितं यत् अयं समारोहः सहकारात् समृद्धिः इति राष्ट्रिय संकल्पनामाधृत्य विधीयते। अस्मिन् मंगल प्रसंगे श्री शाहः अनेकासां प्रमुखाभिनव परियोजनानां शिलान्यासं उद्घाटनं च विधास्यति। एतासु योजनासु 33,200 अन्न संग्रह भण्डाराणां लोकार्पणं सहकार वनस्य भूमिपूजनं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र राज्ययोः कृषु कल्चर इति सुविधायै भूमिपूजनं राष्ट्रिय सहकारी डेटाबेस एनसीडी 3.0 इत्यस्य भौगोलिक चिन्हांकन दूरभाषानुप्रयोगस्य च आरम्भः। जम्मू कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशे प्रचलन्त्यां वार्षिक श्री अमरनाथां महत्सम्मर्धः दृश्यते, यत्र यात्रायाः प्रथमेषु त्रिषु दिनेषु एव 650,000+ जनाः पवित्र गुहा मन्दिरे समागताः। रविवासरे प्रायः 25,000 भक्तैः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्य दर्शनं विहितम्। इतः पूर्वं द्वितीय दिने प्रायः 20,000 जनाः, उद्घाटन दिवसे च 12,000+ तीर्थयात्रिणः भगवतः दर्शनं लब्धवन्तः। अनेन सहैव जम्मू कश्मीरस्य उपराज्यपालः मनोज सिन्हा श्वः नुवान पहलगाम इति आधार शिबिरस्य निरीक्षणं विधास्यति। सममेव ह्यः तत्र तीर्थयात्रिभ्यः कल्पितानां व्यवस्थानां प्रबन्धानां च सूक्ष्म पुनरीक्षणं तेन कृतम्। देशस्य विशालेषु भूभागेषु प्रावृत् स्थितिः अत्यधिकं तीव्रीभूता सञ्जाता, येन हि अतिवृष्टिः मेघगर्जनं विद्युत्पातः प्रचण्ड चक्रवात वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत् स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते।

0: विभागेनाद्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां, उत्तरप्रदेशे, पंजाबे, चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेविवोचिस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल

0: में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने दो शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

जो पेड़ आसमान को छूना चाहता है वो अपनी जड़ें जमीन में जरूर बढ़ाता है, जितना ही वो ऊपर की ओर बढ़ता है उतना ही नीचे की ओर भी। वो जमीन में जितने गहरे जुड़ेगा उसकी मजबूती और उसका विकास उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए जीवन में उन्नति के लिए जमीन से जुड़ा होना बेहद जरूरी होता है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, जगदलपुर में स्वीकारें मेरा अभिवादन। मैं हूं रानू। नमस्कार श्रोताओं।

काव्य सरिता में नीलम पांडे की कविताएं और मधुरिमा आज के नमस्कार जगदलपुर में। श्रोताओ, आज 6 जुलाई का दिन भारत के एक महान शिक्षाविद, राजनेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था आपके मन में। एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में जन्मे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी भी प्रसिद्ध शिक्षाविद थे। कुछ बड़ा और कुछ प्रेरक कर गुजरने का जज्बा आपको पिता से ही मिला। स्वतंत्रता के बाद सन 1947 से 1950 के बीच डॉ. मुखर्जी पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। बाद में नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और सन 1951 में आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से भारतीय जनसंघ की स्थापना की। बाद में ये एक बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी में देश की अखंडता और एकता को लेकर विचार उत्तेजना थी। आपका मानना था कि जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है और इसे भारत का अभिन्न अंग बनने में उसके प्रयास में, जो कि एक सकारात्मक और देशहित का प्रयास था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के एक महीने बाद 23 जून सन 1953 को हिरासत में ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हो गई थी। ये मृत्यु कैसे हुई, ये आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। डॉ. मुखर्जी एक प्रखर सोच वाले प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। मात्र 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने। साथ ही वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। इस दौरान आपने देश विकास के बहुत से कार्य किए जो आज हम भारतीयों के लिए प्रेरणा हैं। आपका जाना निस्संदेह देश के लिए अपूर्णीय क्षति थी और रहेगी। देश का स्वाभिमान बनाए रखने में इस समर में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रतिदान देश कभी नहीं भूल सकता। आज आपके जन्मदिन पर देश उन्हें शत शत नमन करता है।

0: लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रिट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
4: पवन के ठंडे झोंके के साथ
3: हिलोरे लेगी
4: आकाश की वाणी।
3: आकाशवाणी
5: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
3: या फोन करें 222150 या 222400,
4: 222150 या 222400।
6: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
0: इन संदेशों के बाद नमस्कार जगदलपुर में अब प्रस्तुत है काव्य सरिता के तहत काव्य पाठ। आज इसमें सुनिए नीलम पांडे से उनकी कविताएं।
7: मैं नीलम पांडे कुम्हारपारा जगदलपुर से, मैं अपनी स्वरचित कविता, मेरी कविता का शीर्षक है माता पिता एक बूढ़े पेड़ की तरह होते हैं। घर के आंगन में खड़ा वो बूढ़ा पेड़ पुराना है, जिसकी घनी छाओं में बीता हम सबका जमाना है। जिसने धूप झेली सिर पर हमको शीतल छाया दिया, खुद भूखा प्यासा रहकर उसने अपने आंचल में फलों से भर दिया। ठीक वैसे ही माता पिता भी बूढ़े पेड़ की तरह होते हैं, जो हमारी खुशी की खातिर अपनी हर ख्वाहिश खोते हैं। वक्त की

हवाओं से अब पत्ते झड़ने लगे हैं, उनकी टहनियों के हाथ थोड़े कांपने लगे हैं, झुर्रियों की झाल लपेटे वो चुपचाप खड़े रहते हैं। बच्चे खुशी रहे दुनिया में, बस यही दुआवे करते हैं। जिन पैरों से चलना सिखाया, आज उन्हें सहारे की दरकार है, पर उनके बूढ़े होंठों पर अब भी केवल दुलार है। हम नई टहनियां बनकर ऊंचे आसमान को छूने चले हैं, भूल गए उस जड़ को जिसने दंप कर हम बूढ़े हुए हैं। पेड़ पू

हम नई टहनियां बनकर ऊंचे आसमान को छूने लगे हैं, भूल गए उस जड़ को जिसके दम पर हम बड़े हुए हैं। पेड़ पुराना हो जाए तो लोग अक्सर उसे भुला देते हैं, तरक्की की इस अंधी दौड़ में कुछ बच्चे उन्हें रुला देते हैं। पर याद रखना, जड़ कट जाए तो पेड़ कहाँ बच पाता है। बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के घर आंगन उजड़ जाता है। चलो आज लौट चले उस बूढ़े पेड़ की छांव में, थक चुके हैं हम बहुत इस दुनिया की धूप छांव में। सहारा बने उनका जो हमारे लिए जीवन भर रीढ़ रहे हैं। माता पिता वो देव हैं जो सदा हमारे लिए ऋणी रहे हैं। माता पिता को नमन है मेरा। दूसरा मेरा शीर्षक है, मैं स्त्री हूँ। मैं सृष्टि का आधार हूँ, मैं जीवन का विस्तार हूँ। हाँ मैं स्त्री हूँ, असीम शक्ति का अवतार हूँ। मुझसे ही जन्म लेती है यह सुंदर काया। मैंने ही ममता का आंचल इस जग पर फैलाया। कभी बेटी बनकर आंगन में चिड़िया सी चहकती हूँ, तो कभी बहन बनकर नेही की खुशबू बिखेरती हूँ। कभी पत्नी बनकर संभाली घर की हर दीवार, और कभी माँ बनकर लुटाया निश्चल प्यार। पर मत समझना मुझे सिर्फ कोमलता की मूरत, वक्त पड़े तो ले सकती हूँ चंडी की सूरत। मैं केवल त्याग और सहने की कहानी नहीं हूँ, मेरे भीतर भी बहती है स्वाभिमान की नदी। आज मैं गगन छूने का हौसला रखती हूँ। माँ हूँ, स्त्री हूँ, और मैं एक कलयुग की नारी हूँ। हर बेड़ी हर रूढ़ी को तोड़ने का दम रखती हूँ। मैं मर्यादा भी हूँ और क्रांति की मसाल भी हूँ। मैं कोमल संवेदना हूँ, वक्त पड़ने पर ढाल भी। मेरा अस्तित्व किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। मेरे कदमों से बदलता कल और बदल रहा आज है। हाँ मैं एक स्त्री हूँ। सृजन की आदि अनंत का विस्तार हूँ। गर्व से कहती हूँ मैं स्त्री हूँ, पूरे जग का आधार हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, आज एक निर्जला एकादशी है, उसी में चार लाइन मैं अपनी कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। भक्ति की कठिन डगर मेरी कविता का शीर्षक है। जेठ का महीना तपती है धरती, सूरज की किरणें हैं आग उगलती। जेठ का महीना तपती है धरती, सूरज की किरणें हैं आग उगलती। ऐसे मैं मन में एक संकल्प जागा, प्रभु भक्ति का अनुपम रंग लागा। कठिन है व्रत, कठिन है साधना, बिना अन्न जल के माधव की आराधना। कंठ सूखा है पर मन में है आस, विष्णु चरण है बीते हर एक श्वास। न जल की बूंद न भोजन की आस, यही है भीमसेनी पावन उपवास। इंद्रियों को जीत मन को झुकाया, केशव के चरणों में शीस नवाया। घड़े का दान पंखे की शीतल छाँव, पुण्य की गंगा बहे गाँव गाँव। प्यास तन की है मन को तृप्त है, प्रभु के भजन में आत्मा लिप्त है।

द्वादशी का सूर्य जब नई किरण लाएगा, व्रती का जीवन खुशियों से भर जाएगा। है लक्ष्मीपति दो ऐसा वरदान, बनी रहे सदा श्रद्धा और ज्ञान। मिट जाए तन का सारा विकार, सफल हो जाए यह निर्जला व्रत का त्योहार। मेरी अगली कविता का शीर्षक है केवट की विनती। केवट ने श्री राम से विनती करी कि हे प्रभु राम, खड़े गंगा के तीर, संग जानकी और लखन वीर, पार उतारने की थी बारी, केवट से बोले अवध बिहारी। पर केवट ने जोड़े दोनों हाथ, बिन चरण पखारे न ले जाऊं साथ। प्रभु सुनी है मैंने महिमा भारी, तुम्हारी चरण धूली से तर गई नारी। एक पत्थर की शिला बन गई इंसान, मेरी नाव को काठ की है भगवान। गर

0: वाणी। बैठ गए तट पर रघुकुल राम, केवट ने धोए प्रभु चरण अभिराम। पीकर चरणामृत तर गया केवट, प्रेम भक्ति से धन्य हुआ गंगा का तट। उस निर्धन मल्लाह की जीत हुई, प्रभु राम से उसकी ऐसी प्रीत हुई। मेरी कविता का अगला शीर्षक है संस्कार। जो महका दे पूरे जीवन को, ऐसा अनमोल उपहार है संस्कार। सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है यह, मानवता का असली आधार है संस्कार। धन दौलत तो आती जाती है, वैभव का क्या आज है कल नहीं। पर जो चरित्र को कंचन बना दे, उस पारस का नाम है संस्कार। व्यवहार का आईना, बड़ों को आदर, छोटों को स्नेह, जो झुकना और सम्मान सिखाए। भीड़ में भी जो अपनी पहचान दे, वो शालीन व्यवहार है संस्कार। वाणी में घोल दे जो मिश्री सी, क्रोध को जो क्षमा में बदल दे। कठिन राहों में भी जो थामे रखे, वह नैतिक पतवार है संस्कार। पीढ़ियों की धरोहर विरासत ने मिला जो पुरखों से, संस्कृति का वह अनमोल सार है। रूप रंग तो ढल जाता है उम्र के साथ, जो कभी न फीका पड़े वह शाश्वत सिंगार है संस्कार। मेरी अगली कविता शीर्षक है विशाल काय वृक्ष, जो धरती का मुख रक्षक है। सदियों से जो खड़ा अटल है, इस धरती का अनुपम बल है। शाखाएं जिसकी नभ को छूती, जड़े पाताल का अमृत पीती। वह विशाल काय बूढ़ा तरुवर, खड़ा छांव का लिए समंदर। धूप और लू को खुद सहता है, सबको शीतल छाया देता है। जीवन का आश्रय तने पर जिनकी झुर्रियां घनी है, उसकी गोद में दुनिया बनी है। कोटर में गिलहरी का बसेरा, शाखों पर पंछियों का डेरा। राहगीर जब थककर आता है, इसकी छांव में सुदगुद होता है। पत्ते इसके गाते हैं सरगम, दूर करते हैं मन का हरगम। सदियों का इतिहास छुपाए, मुख खड़ा वह सबको भाए। देता ही देता है हरदम, वृक्ष नहीं वह जीवन का है परचम। अगली शीर्षक है जनगणना और अंतिम। हर चौखट पर दस्तक होगी, हर आंगन की बात होगी। देश के हर एक नागरिक की अब यही पहचान होगी। अमीर गरीब, शहर या गांव, ना छूटे कोई भी इंसान। जनगणना के पन्नों में दर्ज होगा पूरा हिंदुस्तान। यह केवल कुछ अंक नहीं, यह देश की असली सूरत है। नीतियों को गढ़ने के लिए इस दर्पण की जरूरत है। कितनी बहनें, कितने भाई, कितनी आबादी साक्षर हैं। जिस घर में खुशहाली आई, कहां सुधार की जरूरत है। बुजुर्गों का आशीष यहां और बच्चों की किलकारी है। युवाओं के सपनों की गिनती देश के विकास की बारी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नींव इसी से सजती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की नींव इसी से सजती है। जब सही आंकड़े मिलते हैं, तब तरक्की की नौबत आती है। जाति, धर्म और भाषा से हम सब भारतवासी हैं। इस महायज्ञ में भाग लें सब जो इस धरती के वासी हैं। सच बताना यह, सही सीख लिखाना हर नागरिक का कर्तव्य। यहाँ जनगणना से ही तय होगा हमारे आने का कल यहाँ। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, इस जानकारी को सही जगाएं, देश के उज्जवल भविष्य की एक मजबूत नींव सजाएं। धन्यवाद।
1: काव्य सरिता में आप सुन रहे थे नीलम पांडे की कविताएं। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कुछ संदेश।
2: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
3: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
2: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में, हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर,

0: विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
2: आप सुन रहे हैं नमस्कार जगदलपुर। श्रोताओं, हमारी छत्तीसगढ़ की माटी को संस्कारित करने कई लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों ने अपने प्रतिदान दिए हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कला विश्व स्तर पर जानी जाती है। यहां के लोक गायन की विभिन्न विधाओं में से एक है पंडवानी गायन, जिसे आरंभ करने और उसे समृद्ध करने का श्रेय जाता है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका श्रीमती तीजनबाई को। तीजनबाई ने जिस विशिष्ट कलात्मकता से महाभारत के प्रसंगों को मंचित किया है, उसने न केवल लोक कला को समृद्ध किया बल्कि आने वाली पीढ़ी को ज्ञान भी दिया है। पंडवानी की विशेषता है महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को रुचिपूर्ण ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना। अपने नानाजी से प्रेरित तीजनबाई ने 13 वर्ष की अल्पायु में पहला मंच प्रदर्शन किया। हाथ में तंबूरा थामकर जिस शौर्य के साथ तीजनबाई ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, वो उनका विशिष्ट अंदाज बन गया। महाभारत के प्रसंगों को घंटों मौखिक प्रस्तुत करना सचमुच अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है। देश विदेशों में कई बार पंडवानी प्रस्तुत कर चुकी

मैं तो अर्जुन बड़ा उदास हो गया। कुछ दुबी के रस पिए, कुछ कंदमूल फल खावे और कुछ समय ले अर्जुन इसने दिल बितावा थवे कहकर। जब आत्मा ले ब्रह्मांड में चढ़ा कर शंकर के ध्यान लगावे तो कैलाश पर्वत डगमगाए। पार्वती जोर से चिल्ला के कहे, भोला भोला अरे का हो गए तोला। कहते

0: अर्जुन छत्री पुत्र है और वहां लगा ही तो का हमार कैलाश पर्वत डगमगा जाही। शंकर हंस के कहे पार्वती, आदि अर्जुन चाहे ना तो तन मन धन दे के पूजा करे तो तीनों लोग खिलाए के ताकत है। कैलाश पर्वत ला कौन पूछाए? पार्वती गुस्सा के मारे कथे ये गलत बात है। शंकर कथे तेनी पत्यावत तो चल परीक्षा लेबो।
1: अच्छा।
0: तो कैसे परीक्षा ले जाबो? अरे बोलो शिकारी न चलेगा, मैं हवन हूँ शिकारी, ऐसे बोला ना तो बोलेगा। तो शिकारी न बन जा, मैं शिकारी। शंकर के पास में बैला गाड़ी तो रही से कका, ओकर पास माँ मोटरसाइकिल कुछ नहीं।
1: अच्छा।
0: पार्वती ला बैला गाड़ी माँ बैठार के सुकर नाम राक्षस ले बरहा बना के ओकर ऊपर में बांध छोड़ के और निशाना जमा के जब चले तो बरहा आगे आगे और पार्वती शंकर के गाड़ी बैला पाछे पाछे।
1: अच्छा।
0: अरे गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़ उड़ावे भोला पार्वती गलो चढ़े। शंकर कथे पार्वती हो बने खुटल धरे रबे जझरंग ले गिरबे मैं नहीं जाना हूँ।

चिल्लावे तो अर्जुन के ध्यान टूट गए और अर्जुन के जब ध्यान टूटे तो गुस्सा के मारे तब

0: पहचान दिलाई और विदेशों तक इस कला का परिचय दिया, इसे प्रसार दिया, उसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश सदैव आपका कृतज्ञ रहेगा। कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर में छोटे से अंतराल के बाद पेश करेंगे मधुरिमा।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: और अब पेश है मधुरिमा।

इधर मौसम का करवट लेना और उधर संगीत का फुहारों में भीग भीग जाना। बड़ा पुराना रिश्ता है मौसम का गीत संगीत के साथ। तभी तो दोनों में से किसका असर मन पर ज्यादा पड़ता है ये तय करना मुश्किल हो जाता है ना।

गुनगुनाती हुई आती है फलक से बूंदें, गुनगुनाती हुई आती हैं फलक से बूंदें, कोई बदली तेरी पाजेब से टकराई है।

भीगे मौसम में साथी का दूर देश जाना बड़ा उदास कर जाता है मन को। ऐसे में कोई शिकायत करे भी तो किससे? आंगन में अनवरत बरसती फुहारों से या परदेश जा बसे उस साथी से जो इस मौसम में अकेला छोड़ जाने कौन देश बस गया जाकर।

ऐसे लुभावने मौसम में अगर कोई मनचाहा साथ हो तो मौसम जैसे कुछ और रूमानी हो जाता है। रिमझिम फुहारों में भीगते अपने साथी का हाथ थामे, खेतों की पगडंडियों से दूर तक जाते कदम जैसे कुछ और इठला से जाते हैं। आलम ये कि हाथ जैसे घटाओं को छूने को आतुर हो जाएं।

0: तुम घटा बनकर चली आओ, मैं बादल बन जाऊं। तुम घटा बनकर चली आओ, मैं बादल बन जाऊं। तेरे प्रेम की बारिश हो और मैं जलमग्न हो जाऊं।
1: हवा के साथ साथ,
2: अरे रे रे,
1: घटा के संग संग,
2: संभलना।
1: हवा के साथ साथ,

मौसम के साथ भीगती इठलाती और तर होती, ये थी आज की मधुरिमा। इन्हीं गीतों के साथ अब आज के नमस्कार जगदलपुर से रानू को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुन रहे थे नमस्कार जगदलपुर, आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 8 बजने को है समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने

0: मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में साइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और

0: निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
1: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं द्वारिका यादव और साथी इनके स्वर में लीजिए अब सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं द्वारिका यादव और साथी। इनके स्वर में लीजिए आप सुनिए ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे द्वारिका यादव और साथी ये आकाशवाणी का रायपुर और सराय पाली केंद्र।

0: نوتیجنا نشور دن راہ نشور دن راہ
1: نشور چوری کیا
0: نہیں اہنکار کیول منورنجن گیان وردھن اور سچے سماچار جی ہاں یہی بکھیرتا ہے آپ کے جیون میں آکاشوانی پریوار
2: सुनो ना
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: माटी की सौंधी खुशबू के साथ,
5: पवन के ठंडे झोंके के साथ
4: हिलोरे लेगी
5: आकाश की वाणी।
4: आकाशवाणी
6: विज्ञापन के लिए संपर्क करें आकाशवाणी जगदलपुर आकर,
4: या फोन करें 222150 या 222400,
5: 222150 या 222400।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर,
2: 8700014242।
7: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी। कार्यक्रम के संपादक हैं बलबीर सिंह कच्छ।

0: আলে মাই বলে সাং শোনা না দাদা
1: আলে আলে আলে
0: গোট গোট নে গোট বড়ুয়ায়
1: হাও
0: দাদা মানে শোনা না গোট গোট নে গোট বড়ুয়ায় পানি নে বড়ুয়ায় ধান তেল ফুল নে পিলা বড়ুয়ায় তেল ফুল নে পিলা বড়ুয়ায় খিলওয়ান মে বড়ুয়ায় কা
2: তো মাছ লাগবল গোট কাস দাদা
1: আলে নোনি আলে নোনি আলে নোনি
2: आपलो बेटा छाती ने पेटा आपलो बेटा छाती ने पेटा पर बेटा कुड़ा बेटा
3: सत्य है सत्य
1: है गाना मैं बोल कम नहीं रहे ने कांदुल खुटा खुटा मोहरिया कांदुल खुटा खुटा कांदुल खुटा खुटा मोहरिया कांदुल खुटा खुटा डोकरा फांदे भैंसा नागर डोकरी बेचे बूटा
3: गाय बैला आसे गाय बैला आसे बनावसे दियारी गाय बैला आसे बनावसे दियारी
1: दियारी
3: लेका का ज्ञान लू नो बोहारी
0: पक्का पक्का ठसा मन कान ली इतना दादा मैं बड़ो कान लेस ना
3: आले
0: आले मैं सुना है ना
1: आले
0: करिया कुकड़ी गरम मसाला करिया कुकड़ी गरम मसाला कुकड़ी गुड़ा ने सिरामन फुजारिया और देव के मसाला
2: तो मैं बल कटक बले दादा
0: लाले
2: बिहाने बेड़ा सांझ के गाय बिहाने बेड़ा सांझ के गाय लेखनी कर ले
1: मांतर देखा आमा आसे तेतर आसे आसे डुमर बोर आमा आसे तेतर आसे आसे डुमर बोर मामा चो बेटी मन रांधून दिला कुकड़ा भाजा जो
3: थेवा थेवा गोड कासता बैला डीला बैला डीला बैला डीला बैला डीला फाटलो पैसा के दिला चिलर करून जाते रहे चिलर करून जाते रहे कान पुटा के दिला।

0: 안운데세 모초까지 마마.
1: 마마
2: 사태야 사태야
3: 사태야.
4: 나가 नानी नदी चीला चीला हाँ? बड़े नदी चीला
1: हाँ?
4: नानी नदी चीला चीला बड़े नदी चीला आमा गुणी लेकी मन के भरा ओंडकी के दिला
5: सुना सुना हाँ, हाँ,
4: हाँ.
5: मछला
3: बोल गो का पकना पतरली बलाकाय पकना पतरली सुना ना पकना पतरली बलाकाय पकना पतरली ए गोट के सुन तो बीती मन तोका पाली मन के थोपना उतर
4: आए ना थोपना उतर ली ना सत्य आय सत्य आय सत्य आय
0: हाँ दादा कोचे पिका पिका बल्ला काय कोचे पिका पिका काय बले से कोचे पिका पिका बल्ला काय कोचे पिका पिका ए गांव चोले का मन के गडरी तले लिखा
4: मांतर देखा ना
5: हाले ना
4: ये नोनी च गोट के सुनुन नहीं ठसा के मकबल गोटक सिड़ता ये ली
5: हाले
4: आठन डोली नौठन पार्टी दुलुम बीती घर आठन डोली नौठन पार्टी दुलुम बीती घर दस जान पिला च माय हुली केवल नहीं आए सोर
3: किरकी कुड़िया मजूर जाल सुना ना किरकी कुड़िया मजूर जाल दग समी मचो चाल
4: चाल आय आय आय आय सत्य
0: यदि सरगी पत्र पलायला बूटा आलायला सरगी पत्र पलायला बूटा आलायला ए गांव चोले का मन के केने कालायला
4: आय ना आय ना
5: आय ना आय आय
4: मांतर दका
5: आले
4: आमासे तेतरासे
5: हाँ
4: आउरासे जाम
5: जाम
4: आमासे तेतरासे आउरासे जाम लेका मन देते रहोत लेकी मन के पान
5: पान पान चे हिसाब ने
4: रखा
5: ये लेकी पंडरी निकट सुंदरी तुचो काजे धरु नेंदे तुचो काजे धरु नेंदे
4: सत्य आय ना सत्य
0: चोलनी आना चोलनी आना कोंडा चोलाइबू चोलनी आना कोंडा चोलाइबू ए गांव चोले का मन के कोंडा रोकाइबू
5: देखा ना करम रले करमंगा करम रले करमंगा नहाले भंग भंगा
4: अबूज के कुकड़ा पूजा
5: हाँ
4: अबूज के कुकड़ा पूजा
5: हाँ
4: पढ़ के दुई थापड़
5: हाँ पढ़ के दुई थापड़ आय आय आय आय
4: हाँ तो दा दीदी मन ए रैली ठसा आरु मैं मिनेश कुमार पानीग्राही मच संगवारी रामलाल कश्यप बंसी कश्यप आरु मंदरा बघेल आमी ठसा के धरु नीलू तो केबे दिना फेर आमी असने ठसा के धरु नेवा आमी सफाई करू से
6: जुहार
7: अले पीटो पीटो ले राम इंगो आयो मारा के वाले गुत्तो इंगो राज दरबार तुर सयान कुदी दूर ले राम इंगो राजा नाम उन्ने तब पीटो ले गुत्तो इंगो गायता कुंदस राधिया के इंदूर ले राम इंगो बच्चों पर गाना चोन पर

0: तोन तोलोन हंजिन वहीन
1: तोलरा
0: येन बातांग मिट्टी आतुरा गायताइन और गायतान पुच्चे मान तोरा
1: गो
0: परगान तोर माने ले गो तो
1: गो
0: चोन तो गायता।

तो लोन हंजीन वहीन तोर ले रहा ये बातांग मिट्टिंग आ तुरा गायता इन गायतान पुच्चे मान तोर रहा पर गान तोर मान ले गो तो गो तो गा

0: दसरा हंजीन वास ले रा
1: गो
0: अचो तो मावा रीति तुन विड़ चोर ले गोतरा
1: गो
0: कहे मूला पुना विड़चिन दूसरा बुद्धिन कीन तोर ले रा
1: गो
0: मावोर कोई तोर माने यदा माय वाड़िंदा ना ले रा
1: गो
0: अपू ना परगान परगान ते वहना ले गोतो
1: गो
0: आयो ओ बारा के वाड़ ले रा
1: गो
0: गायता हरा नियाम ले रा
1: गो
0: अचो तो अचो तिहारी मारी तंग।

रुजा मार्तिक तो बात आए बागिर दवांतरा अचो तोर बात उन नार उपी तुलरा वेर बिच बाचू नड़ते वासिन बात आई चुन कमाई कीन तोरी जोर बोर तो कई

0: आप सुन रहे थे लोक साहित्य पत्रिका का कार्यक्रम मोचो माटी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।

0: 4242 पर।
1: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। अब पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1999 में प्रदर्शित फिल्म दिल क्या करे के गीत। सुनते हैं फिल्म का पहला गीत अभिजीत और साथियों के स्वर में।

दिल क्या करे। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, काजोल, उमा चौधरी और चंद्रचूड़ सिंह ने। प्रेम त्रिकोण पर आधारित इस फिल्म की कथावस्तु एक बच्ची पर भी केंद्रित है। फिल्म में कुल 7 गीत हैं। इन्हें लिखा है आनंद बख्शी ने, जिनमें संगीत दिया है जतिन ललित ने। फिल्म का अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में।

फिल्म दिल क्या करे में आनंद यानी अजय देवगन और कविता यानी महिमा चौधरी एक खुशहाल दंपति हैं, जिनकी एक गोद ली हुई बेटी नेहा है। इनके जीवन में तब मोड़ आ जाता है जब नेहा की मुलाकात नंदिता यानी काजोल से होती है। बाद में पता चलता है कि नंदिता ही नेहा की असली माँ है। इस जानकारी के बाद बच्चे की कस्टडी को लेकर भावुक संघर्ष शुरू होता है। अगला गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म है दिल क्या करे। इस फिल्म के निर्माता हैं वीरू देवगन और फिल्म का निर्देशन किया है प्रकाश झा ने। फिल्म की पटकथा लिखी है विवेक आप्टे और मंगेश कुलकर्णी ने। संवाद लिखे हैं जावेद सिद्दीकी ने। फिल्म के गीतों में पार्श्व गायन किया है उदित नारायण, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, अभिजीत, कविता कृष्णमूर्ति, कुमार सानू, सुखविंदर सिंह और जसपिंदर नरूला ने।

फिल्म दिल क्या करे एक भाव प्रधान फिल्म है जो संगीत निर्देशन संवाद अभिनय और संपादन सभी दृष्टिकोण से उम्दा फिल्म बन पड़ी है जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। विशेषकर काजोल ने अपने अंतर्मन के संघर्ष को जिस कुशलता और दक्षता से अभिव्यक्त किया उसे दर्शकों ने खूब सराहा। चलते चलते सुनते हैं फिल्म का अंतिम गीत अलका याग्निक की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए दिल क्या करे फिल्म के गीत। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। 9:55 होने को है। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और

0: सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकासपरक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना का लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि एक महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 200 सीटर छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार तथा अन्य आवासीय परिसरों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन आज किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री अरुण साव कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। नए छात्रावास और आवासीय परिसरों के निर्माण से विद्यार्थियों और चिकित्सकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कैंसर भवन के विस्तार से प्रदेश में कैंसर उपचार सेवाएं और मजबूत होंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉ तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉ तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉ तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इस बीच कल राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में रूक रूक कर बारिश हुई। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। जुलाई में छत्तीसगढ़ को 46,500 टन डीएपी की अतिरिक्त आपूर्ति भी मिली है। अब तक किसानों को 7,27,000 मीट्रिक टन से अधिक खाद वितरित की जा चुकी है, जबकि लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडार अभी भी उपलब्ध है। सरकार ने कहा है कि खरीफ सीजन में किसानों को नहीं होने दी जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश जारी किया और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुलशन। गुलशन कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं पुराने फिल्मी नगमे। पेश है कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म बावर्ची से। गीतकार कैफी आजमी, तर्ज मदन मोहन की थी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए। शब्दकार मजरूह, संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, आवाज आशा भोसले।

छाया। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का है जिसे संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने। दो बदन फिल्म से शकील बदायूनी ने गीत लिखा है, धुन बनाई है रवि ने, इसे गाया है आशा भोसले ने।

बुढ़ा मिल गया। इस फिल्म का गीत पेश है मन्ना डे और अर्चना के स्वरों में। मजरूह के बोलों की धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: आनंद बख्शी की रचना अब सुनते हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल सुरों में। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में ये गीत हमने लिया है, मैं सुंदर हूँ फिल्म से।
1: मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा, मुझको

0: लता मंगेशकर और साथियों के गाए फिल्म प्रिंस के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गुलशन अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पुराने फिल्मी नगमे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में अभी आप गोंडी गीत सुन रहे थे। गायक थे दशरू और साथी।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी,
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
3: वो कहा है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमें न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने पर्दे पर अभिनय से जितना प्रभावित किया उससे कहीं अधिक अपनी लेखनी से फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी। आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी, शानदार अभिनेता, लेखक, संवादकार और शिक्षक कादर खान की।
7: धर्म रक्षा परम धर्म, वक्ष बाहुबल अति सक्षम, गदा पाश थामे हरदम, प्राण हरण नित्य करम, यम है हम है यम।

22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में जन्मे कादर खान का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। उनका परिवार बाद में मुंबई आ गया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कई वर्षों तक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापन भी किया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कॉलेज में एक नाटक के मंचन के दौरान उनकी अभिनय प्रतिभा पर महान अभिनेता दिलीप कुमार की नजर पड़ी। दिलीप कुमार इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निर्माता निर्देशकों से कादर खान का परिचय कराया। यही वो मोड़ था जिसने उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचा दिया।

फिल्मों में आने से पहले ही कादर खान के लिखे नाटकों की धूम चारों ओर थी। उनके संवादों की गहराई और लेखन की सादगी ने उन्हें रंगमंच पर एक अलग पहचान दिला दी थी। ये भी कहा जाता है कि उनके नाटक में सुपरस्टार राजेश खन्ना ने भी अभिनय किया था। यही वो दौर था जब कादर खान की लेखनी फिल्मी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने लगी। बतौर लेखक उन्हें बड़ी पहचान वर्ष 1972 की फिल्म जवानी दीवानी से मिली, जिसकी कहानी कादर खान ने लिखी। इस फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसा लेखक मिल चुका था जो साधारण दृश्यों को भी अपने संवादों से यादगार बना सकता था।

निर्देशक मनमोहन देसाई अपनी फिल्म रोटी की कहानी को लेकर उलझन में थे। कहानी बार बार अटक रही थी। ऐसे समय उन्होंने इस नई प्रतिभा पर भरोसा जताया और कादर खान को कहानी और संवादों पर काम करने का अवसर दिया। कादर खान ने अपनी कल्पना शक्ति और लेखन कौशल से कहानी को ऐसा रूप दिया कि मनमोहन देसाई बेहद प्रभावित हुए। फिल्म रोटी सुपरहिट साबित हुई और यहीं से दोनों की सफल जोड़ी की शुरुआत हुई। इसके बाद मनमोहन देसाई की लगभग हर बड़ी फिल्म के संवाद कादर खान ने लिखे। अमर अकबर एंथनी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि इस फिल्म के संवाद लिखना उनके लिए आसान नहीं था। फिल्म में एक ओर अमिताभ बच्चन थे तो दूसरी ओर विनोद खन्ना, दोनों अपने समय के बेहद लोकप्रिय सितारे। ऐसे में कादर खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कहानी और संवाद इस तरह लिखे जाएं कि दोनों कलाकारों के किरदार समान रूप से प्रभावित लगे और किसी भी अभिनेता या उसके प्रशंसकों को ये महसूस न हो कि दूसरे को अधिक महत्व दिया गया है। कादर खान ने इस चुनौती को शानदार ढंग से निभाया। उन्होंने तीनों भाइयों के किरदारों को अलग अलग पहचान दी। संवादों में हास्य भावनाएं और प्रभाव का ऐसा संतुलन बनाया कि फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। ये कादर खान की लेखनी का ही कमाल था कि हर किरदार दर्शकों के दिल में अपनी अलग जगह बनाने में सफल रहा।

कादर खान अपने दौर के उन चुनिंदा कलाकारों में थे जिन्होंने लगभग हर बड़े सितारे के साथ काम किया और हर बार अपनी अलग छाप छोड़ी। 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। कादर खान ने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, फिरोज खान, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और गोविंदा जैसे कई सुपरस्टारों के साथ दर्जनों यादगार फिल्मों में काम किया। विशेष रूप से गोविंदा और कादर खान की जोड़ी ने 1990 के दशक में हास्य फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी। कभी वे सख्त पिता बने, कभी भोले भाले चाचा, कभी चालाक वकील तो कभी मजेदार पड़ोसी। दोनों की जगह सहज टाइमिंग और लाजवाब संवाद अदायगी ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया।

तो अपने सधे हुए अभिनय से दर्शकों की आंखें भी नम कर देते थे। चरित्र अभिनेता के रूप में उनकी फिल्मों की सूची इतनी लंबी है कि उसे कुछ नामों में समेटना आसान नहीं। हर दशक में, हर शैली की फिल्मों में और लगभग हर बड़े बैनर के साथ उन्होंने काम किया। जिस फिल्म में कादर खान होते थे, वहां उनकी मौजूदगी कहानी को एक अलग ही मजबूती देती थी। 1989 की फिल्म जैसी करनी वैसी भरनी, इस फिल्म में उनके अभिनय ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वे भावनात्मक और पारिवारिक फिल्मों में भी उतने प्रभावशाली हैं। फिल्म की कहानी रिश्तों, संस्कारों और कर्मों के फल का संदेश देती है और कादर खान का अभिनय इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है।

कादर खान ने दक्षिण के एक से बढ़कर एक निर्देशकों के साथ ऐसी फिल्में लिखी जिन्होंने सिनेमा में एक अलग इतिहास रच दिया। मकसद, मवाली, होशियार जैसी फिल्मों ने अपने गानों और कहानी के दम पर खूब धूम मचाई और इनकी स्क्रिप्ट कादर खान की ही लिखी हुई थी। इसी दौर में उन्होंने मास्टर जी, धर्माधिकारी, घर संसार, नसीहत, लोहा, खून भरी मांग, शेरनी और इंसाफ की पुकार जैसी फिल्मों को लिखा भी और अभिनय भी किया। कुछ फिल्मों में कादर खान लीड रोल में भी निभा रहे थे, जैसे बीवी हो तो ऐसी और बाप नंबरी बेटा दस नंबरी। ये वो समय था जब कादर खान अभिनय में अपनी छाप छोड़ रहे थे। उनकी लेखनी ने हास्य, भावनाओं और संवादों को ऐसा रंग दिया कि ये फिल्में आज भी याद की जाती हैं।

कादर खान को उनकी बेहतरीन पटकथा और संवाद के लिए दो बार फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म मेरी आवाज सुनो और अंगार के लिए सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 2019 में मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी नवाजा गया है। कादर खान ने 300 से अधिक फिल्मों के संवाद और पटकथाएं लिखी और तकरीबन 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 31 दिसंबर सन 2018 को कनाडा में उनका निधन हो गया। वे इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी लिखी पंक्तियां, उनका अभिनय और उनकी मुस्कान आज भी करोड़ों सिने प्रेमियों की यादों में जीवित है। कादर खान का योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।

0: एक ही कलाकार। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित था प्रसिद्ध लेखक, संवादकार और चरित्र अभिनेता कादर खान पर। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। पाटा केंजा कार्यक्रम में प्रस्तुत है गोंडी लोकगीत। गायक कलाकार हैं गणेश मंडावी और साथी।

0: लोकगीतों के कार्यक्रम पाटा केंजा में अभी आप गणेश मंडावी और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 11:55 होने वाले हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे और मौसम विभाग ने आज रायपुर दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहलें सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के रूप में लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कल विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई को उनके गृहग्राम गनियारी में श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल का नामकरण डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय के नाम पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर तीजनबाई ने अपनी कला के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई। प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए रासायनिक खाद का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। 30 जून तक 13,16,000 मीट्रिक टन से अधिक

0: से मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रायपुर में 154 मिलीमीटर, दुर्ग में 181 मिलीमीटर और भिलाई में 115.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुंद, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बस्तर संभाग के युवाओं के लिए कल 7 जुलाई को जगदलपुर के शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज आड़ावाल में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिंतन शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे और मौसम विभाग ने आज रायपुर, दुर्ग सहित प्रदेश के 10 जिलों के लिए भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला और कलाकार। दात्र, दात्र, दादा, दा। दात्र, दात्र, दादा, दा।

जुहार दादा दीदी मन, जुहार। कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सप्पा कलाकार दादा दीदी मन के मैं दसरी करें से जुहार और नान नानी पिला मन के मुच बाटले खुबे खुबे माया। तो दादा दीदी मन देखा समय होले तो अमी तुम मन संग भेंट करते आज अमरु से और तुम मन का एक ठन सन ज्ञान चुगोट मन धरुन अमरु से कमानी धमाने चुगोट आए ज्ञान चुगोट आए सप्पा के धरुन बाते अमरु से। और तो दादा दीदी मन अमी देखू से कि हम चो जो कलाकार दादा दीदी मन आते मन जसन कई बल्ले काज के कर सोत नाल कई बुता कर सोत तो उन मन सबले पहले तो आप लोग मन में सोच सोच की असन बुता कर ले असन हो दे बोलते ने तो असन मन में हमके सोच विचार करूँ भाते जोन करूँ से काम बुता के होने के हमी रचनात्मक सोच बोलो से। तो उसने दादा दीदी मन देखा हमी देखूँ से कि हम जो जो उन कलाकार दादा दीदी मन आत उन मन पुरखते दाले चलते ऐसे असन काज मन के हन मन कष्ट करते सोत अरे भी काय हन काज किए हन मन आगे बढ़ा तो काजे हन मन सोच विचार करूँ भाती आगे बढ़ाला सोत और संगे संगे काम ने बाढ़ती करला सोत। तो असन मन के हमी रचनात्मक सोच बोलो से बल दुर्गुटी आए कि हम के हम जो जो काम बुता करूँ से तो हम काम बुता ने हमके बाढ़ती करतुर हो से तेबे हम जो जीवना बल नंगत रह देने। तो दादा दीदी मन बलतर गोटे आए कि हमके काई बल काज करूँ से तो हमके एक हिंदू सोच विचार करूँ हम जो बात करतुर आए जस ये जो शिल्पकला ये थान बोले हम देखूँ से कि हम चो जन दादा दीदी मन कितरू सुंदर जिनिस मन बना सोत और संगे संगे तक आगे युग में तो जिनिस मन बनते रहे मानतर उतलो बोलो ने रंग रंग चो नहीं रहे मानतर ये समय हिसाब ने हम देखूँ से कि हम चो जन कलाकार दादा दीदी मन नाथ उनमन का सुंदर सुंदर बोलो ने जोन शिल्पकला है गढ़वा कलवा कला है ये सब पाए कि बोलो ने उनमन काम कर सोत और उनमन चो जो जिनिस मन बने से उन बल कितरो मोल बिकते जा से। तो यही बहुत प्रगति है कि हम के हम जो जो काम है हूँ नी थाने हम के निरत रहा कि आगे बढ़ाते हम के मन ने सोच चुन विचार उन करतो रहे। तो उसने देखा हम जो जोन पढ़ा लिखा करतो पीला मन बला सोत तो हुन मन बल जैसन हुन मन आप लोग पढ़ाई लिखाई नंग तो एचो का जो हुन मन कापी मांगे लिख सोत लिखुन भाती फिर चित्र मन बल बनाऊ संगा सोत तो असन कर ले का है हुन मन के पढ़तो बल खिंडी अच्छा हुए से बल सुविधा हो जाए और हुन मन के पढ़तो लिखतो ने झटके

0: हनुमान के खोजुक नहीं लागे कहें जटके काफी खुलन बात ली हनके देखो हनुमान पढ़ा लिखा कर सो तो बलतर गोटे या दादा दीदी मन के हम के जैसे कहीं चवल काम बुता करूँ से तो हम के खिंडी सोच विचार उन करूँ अच्छा ले और नगद ले नगद करते रहे ते भी हम जो जैसे काम बुता नगद रहे थे हम ही नगद नगद करूँ तो हम के हम जो फल नगद मिरे देने और हम जो आजकल ही देखा सास की कहीं चीवल जिन्हें सो खूबे मोल हो से उन कलाची हो कि बेड़ा खड़ा हो कि कहीं जिन्हें हो सब पाँच मोल खूबे हो से तो उन हिसाब ने दादा दीदी मन हम के बोले आप लोग काम ने बाढ़ते करते रहे और संगे संगे दादा दीदी मन असन बल हुए से कि हम जो लगे कहीं जूना जैसन जीनिस बला से जैसन उनके पकड़ से तो उन जीनिस के बल्ले दादा दीदी मन हमें काम ने अनुक सकूँ कसन बल्ले ने आजकल तो बढ़ते जुग है बढ़ते जुग हिसाब ने हमें देखूँ से कि हुन कहीं चीबल जीनिस हो हुन जबकि मतलब हुन बने से और बना उन भाती हम ही हुन जीनिस के और दूसरा काम ने बोले लगा सकूँ तो दादा दीदी मन एक गोट मन तो होली मानतर हम जो संगे संगे एक गोट मन संगे संगे और मुझे लगी कई ठन ज्ञान चो गोट मन बुला से तो अल एक ही बल्ले सुनो
1: क्या बात है उमेश आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ
2: हाँ यार पत्रकार जो हूँ
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो
2: सुधीर मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ
1: उमेश स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो
2: क्यों
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है
4: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता
5: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस
6: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना उम्मीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता GST तक कोंडे पूना मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयनाद मिंदे
0: तो दादा दीदी मैंने गुड मन के तो सुन लास तो दादा दीदी मन दिखाई भी हमी मुर ने उठिया रूँ कि आप लोग कला के हमी कसन बाढ़ती करूँगा तो उसने दादा दीदी मन भेंट वार्ता भितरे तो मन मन का जी आज ही आन ले से ये घड़वा शिल्पकार तो दादा दीदी मन तो उन्होंने तो सब पाए जाना सा से घड़वा शिल्पकार काय हुए से ये जो पीतल ले या गिलट ले जो जीनिस मन मूर्ति मन बने से ये सब आए ये कि हमें घड़वा शिल्पकार बनू से और दिखाई भाई हम चल गए जो कला के बना सो ये भाई हम आज श्री फूल सिंह सागर और एमन संगे गुड बात कर सोत बलबीर सिंह कच तो आले एमन चो गुड बात के आमी बोले सुनो
7: गांवकारी भाई भिनमन आज मैं फिर गुटुक कलाकार भाई संग गुड बात करे से सब ले आगे तू चो नाव और गांव चो नाव सांग ना
8: मैं चो नाव फूल सिंह सागर है और मैं कोंडा गांव चो रहे से
7: अच्छा फूल सिंह सागर
8: जी
7: हाँ हाँ तो फूल सिंह ये सांग ना जसन की ये जो पीतल चो जो सामान है घड़वा कला जो बनाते बीती काम आए बोलू वे तु पाछे सीख लीस कि तुम चो बाप दादा बेराल चलते है ना
8: हम चो बाप दादा बेराल ले आए
7: अच्छा
8: मैं पढ़ाई करते रहे पढ़ाई छान ले तब मैं सीख ले
7: असन
8: हाँ
7: अच्छा कित लो सन पढ़ाई कर छान ले चले
8: आठवीं पढ़ून भाती छान तो के मैं ही काम में ध्यान दिले
7: अच्छा कित लो बरख असन होली
8: मचो उम्र तो अभी 50 साल हो से
7: अच्छा
8: मैं 20-22 साल जो उम्र में काम के अच्छा, स्टार्ट कर ले
7: अच्छा तू दक फूल सिंह बल्ले सीख तो हिसाब ने बल्ले तू घरे से सीख ली
8: हाँ
7: अच्छा कि कोनी बाहरी दूसर थाने
8: बोल नहीं मैं घर ले सीख ले और हम जो एक जन आजा सियाना से सुखचंद पोयाम बोलून हम मास्टर टाइप जो आए और अच्छा। राष्ट्रपति पुरस्कार आदमी आए उन जो जगह ले मैं ज्यादा
7: सीख ले
8: बेनिफिट मेरे लिए सीख तो जो
7: अच्छा हाँ बोले सीख तो हिसाब ने काय चीज के सीख उकलाए पड़े से ना काय चीज की जान उकलाए पड़े से
8: अब शुरू में तो बेड़ा चो माटी के आनुन भाती भूसा मिला उन पिचकुन भाती उनके शांत हुआ है और जोन सामान बनाता है उनचो हमके मॉडल तैयार करता है
7: अच्छा
8: उनचो ऊपर फिर नदी किनारे चो माटी आनुन उनचो लेप करुन भाती सुखाता है सुखा लो चो बाद फिर मैन ये ऊंडार मैन हो से उनके गारुन भाती आगे में सेकाउन भाती हो धागा निकराऊ से
7: अच्छा
8: धागा निकराऊन भाती मॉडल में एक अक्ठन धागा लगाऊ से जोन मॉडल हमके बनाता है हम तैयार करूँ से
7: अच्छा
8: हाथी आए घोड़ा आए और अभी आदमी चो मलसो तो मारिया मुंडी और सन देवी देवता चो समाना ये सब बनाऊ से
7: अच्छा बोले ये सब चीज बना तो काजे ये सिर्फ आगे जानो के लिए पड़े से बोले उन्हें तो सामान अगर ये सब चीज बना तो काजे सामान काय चीज लागे से ना
8: सामान हम जो जसन पीढ़ा आए बनुवे और हथौड़ा आए चिमटा आए सब लागे से
7: अच्छा
8: मैन
7: मैन
8: गंजी कपड़ा लागे से छान तो काजे और हम चोल भी भाषा में फिर मठनी बलसोत पतिया बलसोत उन सब चीज लागे से तब काम हो से।
7: अच्छा अच्छा ये काम के कर तो काजे बल्ले ने पूरा परिवार चो लोग लागे से एकलाय बल बनाओ को ऐसे ना
8: नहीं एक जन भी बनाओ को लाय हो से और परिवार चो लोग भी साथ दे सो तो ज्यादा बने से
7: अच्छा बल्ले निकलान बल्ले काम हो

0: मोम बल मिले से और पीतल बल मिले से।
1: हाँ
0: हाँ, तो ये पीतल के बल ने कसन उनके पूरा गला तो काज कसन कसन करो पड़े से ना।
1: पीतल जैसन गंजी बर्तन छोटे छोटे नल चोप नल टोटी उटी मिरे से हुन जसन हम जो एक ठन कुर्सी बेल होए से पीतल गला तो भी थी हुन में हम छोटे सामान के डालू से पीतल के और जसन बड़े भी थी होली जाल गंजी बर्तन उनके आगी में गरम करुन भाती तोड़ून भाती जहाँ पीतल गला से उतर डालू से और गलाऊ से।
0: अच्छा, गला तो जैसे पीतल गला का कहीं दूसर अलग किस्म जो बर्तन रहे से।
1: हाँ हुन चीनी मिट्टी चो बर्तन हुए से।
0: अच्छा, चीनी मिट्टी से।
1: हाँ
0: हाँ,
1: जहाँ मतलब सोनार मन पीतल उतल गलास होत
0: हाँ
1: हुता हुन हम चुका जे बड़े मात्रा में ऐसे
0: हाँ अच्छा
1: जैसन 10 किलो 15 किलो पीतल गला तो गा जे।
0: अच्छा
1: हुन
0: हाँ बड़े विधि ठान रहे से बोले बोले।
1: हाँ
0: हाँ, तो फूल सिंह ये सांगना जैसन कि
1: हाँ
0: तुम ये जोन मूर्ति वगैरह जोन बनाए सास बोले हुए,
1: हाँ
0: तो कोनी ऑर्डर दिन ले बनाए सास कि बंदसन तुम खुदे जो हिसाब ने बनान बिक सास ना।
1: आगे तो असन रहे कि खुद बनाऊं और जसन कि गांव में धरो देवी देवता छ मूर्ति आरती बनाऊं लेकिन अभी ज़्यादा डिमांड होली मूर्ति आरती छो और व्यापारी भी जुड़ला बाहर बाहर ले हनुमान ऑर्डर दे सो तो अनुसार में हम बनाऊं से अभी
0: अच्छा
1: और बीच बीच में कोई गांव चो बाजार उजार में बोलने उन भाती बिकूँ से।
0: अच्छा हाँ, बोले ने ये भी कि आर्डर अच्छा मेरे से बोले भी।
1: हाँ ऑर्डर तो मेरे से लेकिन थोड़े रेट उट सही दाम नहीं मिले
0: अच्छा,
1: क्योंकि पीतल उतल चो रेट बढ़ ली
0: बढ़ ली से। हाँ,
1: पीतल मैन लकड़ी उकड़ी चो साटेज हो से उन सब दाम बढ़ ली तब रेट थोड़े नहीं पोसाए।
0: अच्छा हाँ, बोले ने जोन बोले थोक ने घेन तो लोग आते उन मंचो बोले ने कहा कि जोन तुम चाहे सास उन रेट ने नहीं मिल दे उसको पैसा।
1: नहीं मिले
0: हाँ, अच्छा, तो ये सरकार बाटले बोले घेन तो वाट मन संस्था मन आसे थे मन धरसोत।
1: सरकार बाटले वाट मन तो आसे घेन तो चो दुकान आसे एम्पोरियम वगैरह बन ली से अब आगे धरो तो अभी लेकिन उतरूनी ध्यान दे होत हम चुकोंडा गांव में आसे दुकान एम्पोरियम सबरी एम्पोरियम बोलू ना से अब बना तो लोग ज्यादा होला अब धरो तो नहीं।
0: अच्छा
1: अभी बीच में मुख्यमंत्री साहब बोले रहला नाले कोंडा गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा कलाकार आसोत हुन मन का जे कोई सुविधा नहीं कर
0: अच्छा, सुविधा बल
1: नहीं
0: करला। हाँ, तो ये भी जैसन की बिकते रहने बोले कहाँ जुगे तुमने तुम जो सामान के बिक सास ना।
1: अभी हम जो कोंडा गांव में ज्यादा रायपुर में आ सही जन सुधाकर नाव छो हुन ज्यादा मात्रा में धरे से
0: अच्छा
1: और ऑर्डर दे से और थोड़े बहुत जगदलपुर बले चले से लुकड़ उकड़ मन जगह लुकड़ बल धरुआ है और अच्छा जान पहचान आदमी आए शुरू ले जुड़ लो से
0: अच्छा
1: हन बल धरुआ है रायपुर और कहाँ कहाँ
0: अच्छा
1: बिकुआ।
0: हाँ, तो ये जो तुम जो आज कहीं कहीं दुकान असन बोले कहीं खोलला सा होता कोंडा गाँव ने।
1: और जो थोड़े ज़्यादा कमाई उमाई करला सो थन मन अपना अपना दुकान खोलला सो और जो छोटे पूंजी बीता मना थन मन थोड़े
0: अच्छा,
1: कमजोर आसोत
0: कमजोर आ सको।
1: हाँ उन मन के थोड़े बहुत सरकार उकार बाटले सात वात मिर्ती जाले तो उन मन आगे था।
0: अच्छा हाँ, बोले तुझो बोले घर ले ची तुझो बिक तो बीती है कहीं दुकान वगैरह नहीं आया
1: नहीं आए हाँ
0: हाँ।
1: अब
0: अच्छा
1: घरे मैं खुद करें से
0: हाँ,
1: एक जन और एक दू जन मस्थाने के रुख लाग सो
0: अच्छा
1: रोजी हिसाब में।
0: हाँ, तो ये चुका जे बोले कहीं सरकार बाटले पैसा कोड़ी कहीं मदद बोल धर लीस ना बैंक वगैरह ले।
1: मदद एक बार धरू रहे मैं 25,000 रुपया देव रला उन मन पैसा हाथ में नहीं देवत
0: अच्छा
1: पैसा नहीं देवत जसन पीतल मैन हुन मन डायरेक्ट घेरुन भाती देसो
0: अच्छा
1: हुन में हमके नहीं पोसाए
0: हाँ
1: हुन मन अपना रेट में देसो
0: हाँ
1: ज्यादा आई।

0: काम आया अगर हमके जानू को लाइनी अगर हमके डायरेक्ट पैसा देता तो हम थोड़े बहुत कम ज्यादा करुण भाती दुकान मोल भाव करुण भाती हम धरतू हम चे हिसाब में
1: अच्छा
0: है
1: हाँ तो है बोले ने हन मंच बाटले सामान घेन दिले ने ज्यादा महंगा पड़े से
0: महंगा पड़े से
1: अच्छा जैसन की 25,000 थी इधर ये सब पूरा पटाऊ दिली सोती ना
0: हाँ
1: अच्छा वो उंचल पासे भी कहीं नहीं धरिस बोलो
0: नहीं धर ले से
1: हाँ हाँ बोले ये भी तुझो खुद चो पूंजी ने ही बनाए से बोलो
0: हाँ हाँ
1: हाँ हाँ हाँ तो ये भी जैसन की बिक्री बांजरी बल्ले जोन बल्ले बनाए से सुन सामान पूरा बिक्री हो से
0: हाँ बिक्री तो है से लेकिन अभी हम जो काम लगभग 100 में 30-35% ही बाचली कोरोना काल में खत्म होली क्योंकि पीतल में इंचुरेट एकदम ज्यादा होली
1: अच्छा
0: और घेन तो लोग बहुत कम होला,
1: कम होला
0: आना जाना बंद होली उन हिसाब में लोग बना तो खूब कम करला और रोजी रोटी काजे मजदूरी कर खूब जा कम
1: अच्छा
0: होले।
1: हाँ हाँ बोले कोरोना बेरा ले बोले तुम चो जन कलाकृति आए घेन तो लोग बोले कम होला
0: हाँ
1: भाव बोले कम होली
0: कम होली
1: सामान चो रेट बढ़ ली
0: बाढ़ ली
1: है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ तो बोले ने भी जैसन कि ये काम तो आसे जी भी कर सा जी भी ना
0: हाँ अब हम जो परंपरा काम है हम तो असन बीच में इलू कि ये काम के हम छांडो की सकू ना
1: हाँ तो आए
0: है नहीं
1: हाँ आए हाँ बोले ये संग संगे बोले तुमके दूसरा जो काम आए हन बाट बोल जाओ कुलाए पड़े से बोलो
0: हाँ
1: ना
0: हाँ
1: है कि नहीं। हाँ हाँ तो आल्ला प्रेम फूल सिंह सागर तुझ संगीत लो अच्छा तुझो कला कृति चो गोड बात होली ना हल्को खूब जुआर ना
0: जुहार जुहार
2: तो दादा दीदी देखाई हम तो सुनते रहूँ भेंटवार्ता भित्री घड़वा शिल्पकार भाई के और ये भाई रहो श्री फूल सिंह सागर देखा कितरो अच्छा है मन आप लोग कला जोन बना सो थुन के कितरो अच्छा हमके सरसरा सांगला बल्लो ने कहा नंदी खटल ने माटी आन सो और संगे संगे उन मन मूर्ति चो आकार दे सो और पीतल के पिघला उन भाती बना सो बोले कितरो अच्छा है मन आप लोग जोन हुनर के कला के हम चो पूरे सांग

0: দাদা দিদিমানে গীতকে শুনলাস আর এই গীতকে গান রহত বিপিন বিহারী দাস এমন চ সাংবারী মান তো দাদা দিদিমান আর গীত কে ডেন থেবা আর এই নাগাদ গুড মান আছে আর লিখে বলে শুনো
1: বধাই হো সেঠ জি আপকি কোম্পানি কি ইস নই আগরবত্তি কি খুশবু তো লাজবাব হ্যায়
2: আরে ভাই সাহেব আপ দেখতে যাইয়ে আব তো ইয়ে আগরবত্তি ঘর ঘর মে মহকেগি মানে পুরে শহর মে ইসকে বিজ্ঞাপন বটওয়ায়ে হ্যায়
3: কিউ ভাই সিরফ শহর মে আরে গাঁও মে নহি মহকেগি ক্যা
2: মহকনা তো গাঁও মে ভি চাহিয়ে মগর গাঁও কে লোগো কো হামারি নই আগরবত্তি কে বারে মে পতা কাইসে চলেগা
3: আকাশবাণী সে
4: গাঁও হো ইয়া শহর अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए
5: पुलिस
6: मिस सीमा
5: जी
6: अभी पुलिस स्टेशन आई है रुकिए वरना घर आ जाएंगे
5: क्यों लेकिन मैं
6: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
5: डिजिटल अरेस्ट
6: 1,00,000 बन जाओगे
5: इतने पैसे
6: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
5: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
7: हेलो मम्मा
8: आरबीआई कहता है
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए
10: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे और हाँ ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा आमचो फोन नंबर आय 07782226666 फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने
0: तो दादा दीदी मन दखाई गोट मन के तो सुन लस मन तो दादा दीदी मन आमी देखो से कि आजकल पानी बल कसन मारे से ने 2-3 होली छाणी चे नहीं तो हम क्या सुनने घर ले बाहर निकल तो काज बल खूबे परेशानी हो से तो दादा दीदी मन दखा सुन ने कहा हमको काम धंधा बल खिंडी हमके खूबे फर्क पड़े से कसन बलो ने चमाज बेरा खिंडी काम धंधा बले जुगे नीचे ले से तो असन और इचो संगे संगे दादा दीदी मन आमी देखो से कि हम चो जोन घरे पीला झीला मन रसो तो हुन मन पढ़ा लिखा का स्कूल जा सो तो हुन मन केवल स्कूल जा तो ने भी खिंडी के खूबे तकलीफ है से तो दादा दीदी मन तुम ये सफाई गोट के ध्यान दिया तभी हम पानी बरसा ले बाचुक सकू तो दादा दीदी मन दखा दाए मचो जा तो बेरा है से तो आले विदा दियास कला और कलाकार कार्यक्रम सुन तो सब पाए कलाकार दादा दीदी मन की मैं दसरी करे से जुहा
11: दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दादा दाद

कला और कलाकार। अभी आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

जुहार दीदी मन, जुहार। घर दुआर कार्यक्रम संतोर सब पाए दीदी मन और संगवारिन बहिन मन के मैं दसरी खन से जुहार। और नन्ना ने पीला मन के मुच्छ बाटली रोजी देना सन खूबे खूबे मया। तो दीदी मन देखा समय होले तो मैं तुम मन संगे गोट बात करतो का जमरे से और संगे समय तुम मन के कई ठन ज्ञान जो गोट मन के सांगते रहूं से। तो उसने दीदी मन आमी देखूं से कि हम जो जन बहन दीदी मन आत हुन मन तो सब पाए जाने सोत की बिहान पाहोली बल्ले ने हुन मन उठ सोत और संगे संगे काम भूता ने भीड़ उन चिरा सोत हुन काम भूता। तो असन हो से दीदी मन की हमके दिन भर करते रहे बल्ले हुन काम भूता निसरे। तो दीदी मन हमके खिंडी के ए लेख करते रहे कि हमें घर तो काम होता तो करूँ से संगे संगे हम जो जन घरे से आंसा जान रसोत पीला झीला रसोत हुन मन के बल हमके खिंडी समय दे तो रहे कसन बल्ले का हमी भूता चने भुरलू रहे पीला मन जसन का गोट का जो बल सोत नहा कहीं पढ़ा लिखा जो गोट के पूछ सोत तो हमें हुन मन के बलन चिड़चिड़ फटफड़ हूँ से और हुन मन के नहीं सांगू। तो असन ने बल्ले हुन का पीला मन चोपरे खूब प्रभाव पड़े से कसन बल्ले हुन मन ये सोसोत कि हम जो का जे माए बाप जो समय नहीं आए असन बरसो। तो एक अजय दीदी मन हमके एक खूब भी ध्यान देते रहे कि हम घर जो बुता भाना तो करूँ से और उन जो संगे संगे हमके दूसर काम काज वाले समय निकरात रहा है कसन बोले हम घर जो काम धंधा के जसन सारून से हम जो पाछे हमके पीला मन काज बोले खिंडिक समय देते रहा है हुन मन के पढ़ा लिखा जो गोट मन के बल हुन मन के दखते रहा है संगे संगे हुन मन संग बस उन खिंडिक।

0: एक बेले हमके खिंडी समय देख लागे से तेबी हुन मन के बोले नंगत लागे थे और हुन मन संगे बठन भाती हमके खिंडी दुख सुख चो गोट गोठिया पुराए तेबी हम चो जन परिवार ने एकता बोले रहे दे और संगे संगे हम चो परिवार ने जैसन हंसी खुशी चो हुन माहौल बोले रह दे। तो असन कर ले दीदी मन का हम चो जन मन ने कहीं तनाव नहीं रह दे, कहीं टेंशन कहीं परेशानी नहीं रह दे। कसन बल्लो ने हम ही सफाई काम के हम ही हंसी खुशी ने और समय ने करूँ से। तो असन ने कहा हमके बोले हम चो मन ने कहीं असन चिंता फिकर बल नहीं रहे कि हम ही आज ये वो तक नहीं कर लूँ तो हम ही कल ये वो तक नहीं कर लूँ असन हम चो मन में नहीं रह दे। तो एक कहा दीदी मन हम ये कोशिश करते रहे कि हम चो घर और हम चो काम ने हमके खिंडिक हमके समय देते रहे तेबे हम ही हम चो परिवार ने हम ही सफाई हंसी खुशी रह सकूँ। तो दीदी मन दखाई गोट मन तो बोली मन तर मुझे लगी और नगद गोट मन आसे त्वाले की बोले सुनो
1: जीएसटी चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जनावर मन चो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। जीएसटी ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बना तो लोग और घेन तो लोग दोनों के लाभ मिले दे। ये नुआ जीएसटी दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाड एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 से 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने लिए जुड़ लो सपाए समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 से 4 बजे तक। तो आपन मन सपाए सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
5: सो बिड़किन बिड़िया राहत तिंदनत उंडाना सामान तलाय दरकता डबल रोटी आरी और छेना पनीर असित के इंजे जीएसटी लगे मायो। इदेन संगेन 33 जरूरी दवाई नद मोला वेंट कम की सित तोड़ अदेन के इलाज तलाय खर्चा वेंट कम लगे माता। जीवन बीमा तगवेंट इंजे जीएसटी छूट दोर किता अदेन के पॉलिसी पोईतनद इंजे सस्ता आंता। सुडला कार गाड़ी और 350 सीसी ता कोटरू गाड़ी ता पर्रो 28% जीएसटी मत्ता अद कम मास इंजे 18% अत्ता। इदेन मतलब इद की इंजे गाड़ी पोटरू गाड़ी असित के सस्ता दोर कीता।
0: तो दीदी मैंने गोट मन के तो सुन लास मंत्र दीदी मन देखा तो उन मन का जामी समय समय ने कई ठन असन कमानी कर तो दीदी मन संग भेंट कराते रहूं से उन मन काय काय कमानी कर सोते सब पाए के तो मन मन जो पूरे आनु से। तो उसने आज ही भले मैं भेंट वार्ता भीतरे तो उन मन का जी असन बहन से भेंट कराए से जो बल्लों ने बेड़ा खड़ा कमानी संगे संगे और बल का एक ठन कमानी थमानी कर सोत जैसन मुर्गी पालन पशुपालन और उसने वाट मन के करुण भातली आप जीवना के चला सोत। तो दादा दीदी मन एवं संग गोड़ बात कर सोत बलबीर सिंह कच्छ और हम चो ये जोन बहिनात ये याद बालमती कश्यप तो आली एवं काय गोठिया सोत। तो इन्होंने गोड़ बात के अम्मी बोले सुनो

0: आम्ही किसानवाणी कार्यक्रमने कई कसन महिला और पुरुष जोन किसान भाई बहन मन आसोत इमन संगे खेती बाड़ी संगे संगे पशुपालन चो गोड बल गोठियो से तो असनी आज में गोड बात करें से महिला किसान दीदी संगे एमन खेती बाड़ी संगे संगे पशुपालन ने बल करुआत तो सब ले आगे तो चुनाव आरो गांव चुनाव सांगुन देस
1: तो मुझे नाम बालमती बगेला है मैं चिंगपाल गाड़म गुड़ा पारा ले आए।
0: अच्छा तो बालमती जसन की तु बोले ने खेती बाड़ी बोल तो कर सी मानतर पशुपालन बोले।
1: हाँ।
0: अच्छा आरु पशु मित्र बोले आए बोले।
1: हाँ, पशु सखी बल कर।
0: अच्छा पशु सखी।
1: हाँ।
0: अच्छा ये पशु सखी काय बीते हुए से
1: ए पशु सखी बल्ले गांव में जसन के भी समूह मन जुड़ला था।

0: तो पशु सकी जैसन गांव मन में मुर्गी बकरी पालन करुआत मानतर जैसन साल में एक दो यार मरनी उन देवाय तो सब मरुन जावात तो दीदी दादा मन के घाटा हुआ है तो उनसे ऊपरे काम कर तो काजे जैसन महीना में टीकाकरण हुआ है कृमि नाशक हुआ है तो उनसे काम पशु सखी के द्वारा कर तो बीतिया दादा।
1: अच्छा तो ये पशु सखी बोले तुम के कौन बाटले पशु विभाग बाटले बनाला से
0: सबसे पहले तो समूह में जुड़ून उन्हीं बाटले शुरू कर ला लेकिन पशु विभाग ले ही जुड़ून बारी काम करवा मामी।
1: अच्छा।
0: पशु विभाग ले जोन जसन काई काई नियम नया नया योजना मन तिरुआ तो पशु विभाग ले डॉक्टर मन ले मिलून बारी उन योजना मन के आमी गांव तक पहुंचावा।
1: अच्छा जसन की तु पशु मन चो जोन बीमारी बोले इलाज बीती बोले काम बोल कर तो ये चुका जागे कहीं प्रशिक्षण वगैरह कहीं धरू पड़ ले
0: प्रशिक्षण मिली आम छो धरबा में 2017 में रजनीश अग्रवाल सर रहे उन नाम के 5 दिन छो प्रशिक्षण दिलो।
1: अच्छा
0: तो ताले सिकुन बारी आमी गांव ने काम शुरू कर लो।
1: अच्छा हाँ हाँ तो बोले ने हुन बाटले पूरा तू के सामान वगैरह बल मिरली होती पशु मन का जो बीमारी सीमारी पड़ लेने का ही के।
0: हाँ पशु विभाग ले मिरु आए दादा।
1: अच्छा मेरे से। अच्छा एवे बल मिर ये काम हुए से।
0: हाँ वैसे का है एवे बल चले से।
1: अच्छा
0: तो शुरू में दादा दीदी मन की समझा तो और परेशानी होली ये भी सब अच्छा ले समझ ला और जोन महीना ने टीकाकरण हुआ है कृमि नाशक हुआ है उन सब एवे चले से।
1: अच्छा बल्ले सांग लेन बराबर आंसर
0: दे। हाँ और दीदी मन बले मुर्गी बकरी अच्छा पालन करून उनसे पैसा बल कमावा।
1: अच्छा हाँ हाँ तो दक पशु विभाग ने बोले तो पशु पालन चो खूब योजना मना से।
0: हाँ।
1: तो असन कहीं तु गांव चो जो महिला दीदी मन के पशु पशु काज बोल कहीं अमरा तो असन सांग तो गोड बोलिया है क्या।
0: हाँ जोन विभाग बाटले 300 रुपया में 45 टन मुर्गी छुजा मिरुआ उन बोले साल में आम दिला तो डॉक्टर मन उन योजना इली बोले आम के फोन करुआ तो उन मन अच्छा जानो कि गांव मन में दीदी मन पशु से की काम करुआ बोलो।
1: अच्छा
0: तो और टीकाकरण हुआ कृमि नाशक हुआ या फिर गांव गाय बैला के सूजी दवाई कर तो बेरा डॉक्टर मन आम के फोन करून सांग बात की गांव में खबर करा बोलून।
1: अच्छा
0: तो ये सब हुआ।
1: अच्छा तो अब तक बोले तो कितलो असन महिला किसान बहन मन के पशुपालन जो योजना मन वाट मन के सांगली सार कर सोत।
0: हाँ ये गाड़म गुड़ाम 150 परिवार आस दादा। तो 150 परिवार में उनसे ऊपर मैं काम करूँ।
1: अच्छा तो बोले काय काय पशु मंचोसन
0: मुर्गी बकरी में टीकाकरण कृमिनाशक करावा मारू जसन बड़े जानवर हुआ है गाय बैला भैंसा तो उन मन के सुई लगात काजे आमी उन्हीं मन के याग दू हम डॉक्टर मन के।
1: अच्छा
0: बड़े जानवर काजे नानी बीती के आम की उन बारी दीवा आमी करवा
1: नहीं असन पशु पोस्तो काजे जसन की बोकड़ी आए कुकड़ी आए नहीं तो गाय भैंस असन चो योजना मंच बोले लाभ धरन बात कर सोत।
0: हाँ कर सोत
1: कर सो।
0: हाँ।
1: अच्छा आसन मतलब कितलो लोग आसन मन के
0: जसन गाय का जे गाय चु योजना मिरुआ 1 टन गाय गेन ले नुन चुका जे मतलब संगत का जे खोटा घर बना तोर एक गाय चु पीछे 1.5 लाख रुपया मिरुआ उन योजना मन के बल सांग लो। और बकरी चो जसन एक बकरा मादा बकरा गेन लेने प्रोत्साहन राशि 4000 मिरुआ उन चो बारे में बोले और गाय बछड़ा दिवाए तो बाछी पिलाई लेने उनचो ऊपर बोले उनचो देख रेख परवरिश का 20,000 रुपया मिरुआ ये बारे में।
1: अच्छा हाँ हाँ तो ये तो बोले ने कहा कि तु बोले ने योजना मंचो जानकारी गांव चो लोग के देसी मंत्र तु खुद बोले कहीं असन कर
0: मैं बोले करे से जसन मैं पहले मचो घर खुकड़ी नी पोसते रहे बकरी नी रहे तो गांव छो दादा दीदी मन संग करते करते मके बोले अच्छा लागली। मैं बोले खुकड़ी घर बना ले से अलग ले बकरी शेड अलग ले बना ले से आरो खुकड़ी बकरी दोनों पाले से मैं।
1: अच्छा
0: पशु सखी करते करते उन्हीं संग पशु उद्यमिक चो काम कर ले तो पशु उद्यमिक ले मके उन समूह बांट ले बिहान बांट ले दवाई पानी संगात का जे फ्रीजर डी फ्रीज बल मिरली से।
1: अच्छा
0: और टीकाकरण जात बेरा वेक्स जो डब्बा दरुन बारे डॉक्टर मन भूलुआ वैक्सीन डब्बा उन बल मक मिरली से।
1: अच्छा
0: और टीकाकरण जसन उन विभाग बाटली मिरुआ तो डी फ्रीज में दवाई के संगावा उनके ठंडा से जरूरत पड़ुआ।
1: अच्छा
0: और भूल तो काजे साइकिल मिरली से। अच्छा। शाम शाम के टीकाकरण कर रुक जावा तो टार्च मिरली से।
1: अच्छा
0: रजिस्टर दरुन जात काज बैग मतलब पानी बेरा काज रेनकोट सब सुविधा मिरली से मके।
1: अच्छा बोले ने ये गांव चो सेवा काज। हाँ। अच्छा जसन की तुई बकड़ी और कुकड़ी खुद बोल पोसू है बोलसी।
0: हाँ।
1: तो किठाना से नास होता है
0: एवे मस्ताने 7 टन

0: आधा बकरी आसत और एक टन बकरा आसे और दुई टन खसी के बिकले 12,000 में।
1: अच्छा।
0: अरे गोटोक खसी आसता और पीला मन आसत 4-5 टन नानी नानी 5-6 महीना।
1: अच्छा बोले ने ये
0: गाभिन में आसत
1: गाभिन में आसत। हाँ। ये खुद असन पशुपालन करते भी कितलो बरक असन होली तुचो
0: मछो जानत नहीं होली से मैं पशु सखी में जुड़ लो 6 साल हो से तो 4 साल असन होली से।
1: अच्छा
0: मैं हर साल 3-4 टन बिकुच आरो खुकड़ी में ही बोले मतलब साल में 7,000-8,000-10,000 तक बिकुच आए खुकड़ी वाले
1: असन। अच्छा बोले देसी आए कौन सरकारी
0: देसी आए
1: देसी आए। अच्छा कोन जसन बिकतो असन बोकड़ा बोकड़ी जसन होय सो तेमन बोले कितलो बरक ने नाल कितलो महीना ने बिकतो असन होय सो
0: जसन गांव में डगरा हुआ तो जसन उन मन छो आप लो लायक छो उन मन के जरूरत पड़ो आई उसन बिकु आए नाइट पर खसी बनान बारी उन 15,000-20,000 उसनी खसी बनान।
1: अच्छा तो उन कितलो बरक असन लागे से बाढ़ तो काजे
0: बाढ़ तो काजे 2-3 साल।
1: अच्छा 3 साल
0: 3 साल ची मैं बिकले से।
1: अच्छा बोले 3 साल जो होय से उन कम से कम 15-16,000
0: 15-16
1: जाए से बोले। अच्छा तो देखे तो अच्छा है। अरे चे संग संगे और जसन खेती बाड़ी बोले आए
0: हाउ ये चे संग संगे समूह ने जुड़न दीदी मन खेती बाड़ी करुआ तो उनके देखुन मैं कुकड़ी बकड़ी संग संगे मैं खेती बाड़ी जबल काम करुआ खेती बाड़ी करुआ यार साल में 1-2 यार असनी ठंडा समय में मैं मशरूम उत्पादन बल करुआ।
1: अच्छा
0: तो साल में 1.5-2 लाख रुपया मैं सब की मिसा उन बारी मैं कमाऊ।
1: अच्छा बोले ने सब चीज खेती बाड़ी मशरूम कुकड़ी बोकड़ी ये सब
0: बकड़ी टीकाकरण कर ले उताल बल मक बनवाए पैसा।
1: अच्छा
0: पशु सखी बाट ले तो मिरुआ और पेर घर घर बुलुन बारी आम करू आम तो उन छो बल अलग ले बनवाए आम के।
1: अच्छा तो बोले ने इतलो बरन बानी काम बूता कर सी पशु सखी बोली आस है कि नहीं दवाई दारू दुनकाय का डब्बा सफाई साइकिल मिरले से बोल सी तो कहीं झंझट नहीं लागे तो कितलो काम
0: नहीं नहीं दादा मके तो खूबे अरिक लागू आए काम कर तो काज
1: जन
0: पहले समूह में नहीं रहू घरे ची रहते रहू नहीं घर चो खाना पीना बनातर पीला जिला दखतर बूता करतर उन्हीं काम नहीं रहू समूह ने जुड़ो नून छुपरे मैं इतलो आगे तक कर ले तो मके खूबे अरिक लागू आए
1: असन। अच्छा
0: लोग सिका तोर बले उन संग काम करतर।
1: तो ये सब चीज ट्रेनिंग वगैरह धर तो काजे कहीं प्रशिक्षण काजे बोले ने कोई गाँव ने कोई बाहरी असन होली से प्रशिक्षण वगैरह ट्रेनिंग।
0: हाँ होली से सबसे पहले गांव में ही होली और आम के तो खूब दूर दूर बल नीला झारखंड नीला से।
1: अच्छा झारखंड
0: झारखंड बल नहीं धुआर नहीं झारखंड।

0: करेंगे,
1: हाँ
0: है कि नहीं?
1: हाँ
0: तो बोले ने सीखू कुलाय मिरली बोले
1: हाँ
0: उन।
1: सीखू कुलाई मिरली
0: अच्छा
1: आरु ए बार छो उन बार ले सीखू नीलो बीती के आप लोग गांव में सीखा ले तो हम छो उतलो दूर जाऊं सीखू नीलो बीती कई काम दे दे।
0: हाँ, उन तो आए ची
1: हाँ
0: दक वालमती बघेल तू इतलो अच्छा बल्ले काम बूता कर सेस बल्ले कई किसम छो बल्ले ने पैसा कोड़ी बल्ले जसन के भी बोल साल ने कम से कम 2 लाख असन होए से बोलते बल्ले ने कहीं घर चो उदिम हिसाब ने बोलू बे
1: हाँ
0: अच्छा है आसे
1: हाँ
0: परिवार।
1: घर में दादा जसन पहले मैं काई नहीं कर तो बेरा मैं खूब परेशानी में रहे तो समूह ने जुड़ ले उन जो संग संग पशु सखी फिर पशु उद्यमिक में गेले उन संग संग साग सब्जी सब में इले तो मच पीला मैं के भी सोचुन बल नहीं रह ले कि मच पीला जिला ची अतलो अच्छा परवरिश कर सकेंदे
0: हाँ
1: अरे अच्छा स्कूल में डालेंदे और पीला जिला जसन बल दे उन मन परेशानी की मैं के भी हल कर रुक नहीं सकें दे असन मैं खूब दुख में रह ले
0: अच्छा
1: मछपति बले असन नौकरी बितानु आए लेकिन एवे आम अच्छा जीवन जिंदगी
0: जिंदा
1: जीवन यापन करूं से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: हाँ। तो बले ने असन दक पैसा कोड़ी होली बले ने हरी कुदिम तो आई छी
1: हाँ
0: तो बले ने कई कसन बले ने चीना बाना होय से बले
1: हाँ
0: घर बोले बोलू आए महिला मंचो कहीं सोना
1: हाँ
0: चांदी बोली बोले कहीं असन बले काम होली से।
1: एबे आमी उताल खर तो बेराले एबे घर बल बनालू से सीट भी है लेकिन अच्छा ही बनालू से और उन खेती बाड़ी ये सब करते हुए आम के रोज दूसरा के तैयार तोर बोलू नामी ट्रैक्टर बल दरलू से।
0: अच्छा ट्रैक्टर बोले
1: हाँ
0: अच्छा
1: ट्रैक्टर दरलू आरु पेर म इसको गाड़ी बाइक तो आसे उन संग
0: हाँ
1: संगे भी स्कूटी बल दरलू से एबे ये
0: अच्छा
1: बाट उन बार जातर साइकिल में बल तो परेशानी हो दे
0: हाँ हाँ
1: तो मच का जी स्कूटी वाल दर ले दादा मैं।
0: अच्छा बोले ने खुद बोले चलन बते
1: हाँ
0: जाऊ आसने।
1: हाँ
0: हाँ, बोले ने सपाय सुविधा तू के दाए होली बोलू बे
1: हाँ
0: बोले ने खूब अनुभव बोले होली बाटून बाट जातो के करते करते करते ही तो अनुभव हो ऐसे।
1: हाँ करते ही करते उली अगर नहीं करूँ तो आम की कहाँ ले अनुभव मेरे दे।
0: हाँ। तो ये तो अच्छा घोट के सांगलीस बालमती मांतर दक कई कसन गांव ने बोले महिला हो ना तो पुरुष हो बोले ठग असन रह सो कहीं
1: हाँ
0: काम नहीं करो तो
1: हाँ
0: असन भाई बहन मन का तुझे बाटले कहीं बल से।
1: हाँ तो दादा मैं बोलू चाहे देखी जसन आमी काई चीज तो कर तो काजे आमी मन एक हार सोचो सोचुन कर लेने सब चीज वैसे पहले आमी असनी रलू आम बल दोनों पति पत्नी तो ये भी दोनों सोच बिचारो ना आमी काम दाम के शुरू कर लू गुने ये भी आर मैं यही चाहे से कि दादा दीदी मन सब मतलब अस नहीं करो ताम के जमीन बाड़ी खूबे नहीं आए हम खेती बाड़ी नहीं करूँ असन दादा दीदी मन सोच बले रुआ
0: हाँ
1: जसन मुर्गी पालन काज बल नानी असन सेट बनात रहे बकरी काज बल नानी असन खूबे बड़े जमीन चु जरूरत नहीं आए और खेती बाड़ी बल्ले आमी खूबे बड़े मतलब बड़े जगह में बना तो उतना बल
0: जरूरत
1: जरूरत
0: बोली
1: नहीं आए
0: हाँ
1: हम नानी असन ने बोले हमेशा गोंदाई गोंदाई किनी किनी बल करते जाऊं तो उतायल बोले आमी उन्हीं संग संगे कुछ कर।

ले तो हमके सुनते ज रासन लागत रहे ने बोलो नुनमल देखा कितरो अच्छा कई ठन काम बुता के कर सो तार अपलो जीवना के कितरो अच्छा बनाला सो। तो दीदी मैंने देखा तुम मन बोला असने घरे रहु आज घरे रहुन भाती असने कोनी कोनी बहन मन जो काम बुता तो झटके हुए है तो हुन मन असने दिन भर बसुन भाती गप मारते हुआ तो असने समय ने दीदी मन तुम मन असन का एक काम कर सका कुगड़ा चिमड़ा पोसुक सका बोकड़ी पोसुक सका नाले अब लो बाड़ी खिड़ी ने साग डार चबले कमानी कर सका। और दीदी मैंने देखा ये बालमती कश्यप चो जसन जीवना कितरो हरी किन्यासे कितरो हरी कुदिम नैन मनासो तो उसने सपाए हम जो बहन मन पर रहुक सको मंत्र बहन मन खिंडी खाम के मेहनत मशागत करुक लागे दे बसुन बसुन रले तो नहीं होए ने। और देखा दीदी मन ने मन जो गुड बात के तो दीदी मन तो मन सुन ला सा सुन भाती आप लोग जीवन बल धरा। तो दीदी मन एवं जो संगे गोठ यात्रा हो बलबीर सिंह कच्छ तो एवं जो गुड बात के तो अमी सफाई सुन लो मंत्र संगे संगे गुट गीत बल सुन ले नंगत रहती ने तो आले गीत के सुनो।

तो दीदी मैंने तो कहा सुंदर गीत रहे और एक गीत के गान रहो बसंती अरे मंचो संगवारी मन। तो दीदी मन दखा समय आसे तो मैं बोलते रहे और गोटो गीत सुन ले कसन रहती ने। तो दीदी मन दखा गीत सुन के तो सुन ले थम के भाग गीत सुनू भाजती ने। तो आले गीत के सुनू फिर गीत कुरिया मंचो ना के मैं पाछे के सांगे दे। तो सुनू ये गीत के।

0: घर द्वार। अभी ग्रामीण महिलाओं के इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की

0: बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
3: खेतिहार भाई बहन मन, किसान जो कमानी हुंचे नगद फसल उपरे रहे से कसन बल्लो ने फसल नगद गुण बीती होलो ने हुंचे कीमत हाट ने नगद मिरुआ। नगद फसल का जे मशीन मंचो उपयोग करुआत असन तो खेती कमानी ने कैक मशीन मंच उपयोग हुआ है। जसन जोताई बुनाई दाएं, खत और दवाई खत दे तो दाएं, सिंचाई कर तो दाएं, फसल कटाई और ढुलाई दाएं, कैक मशीन मंच उपयोग हुआ है। मानतर खेती कमानी ने ट्रैक्टर गोटक प्रमुख कृषि यंत्र है, जोन बेड़ा मन के नुआ उटले जोड़ तो काम करुआ है। ट्रैक्टर के कैक नानी नानी मशीन मन के मिशन बनावा एक आचे ये दखा रखा नंगत नहीं होलो ने ट्रैक्टर नंगत नहीं रहे और खेती ने खूबे असर हुआ है। जसन ट्रैक्टर जुगे काम नहीं करे, ईंधन तेल जुगे लागू आए, तेल लीकेज और बले कई परेशानी हुआ है। यही काजे समय समय ने मैकेनिक के दखा तो रहा, संगे संगे नंगत तेल नंगत स्पेयर पार्ट्स जो उपयोग कर तो रहा, नंगत दखा रखा खूब जरूरी है। ये चुकाजे आमी तुमके कई गोठ मन के संगू से जसन रोजे दिन इंजन ने तेल के दख तो रहा,

0: रेडिएटर चो पानी के दखून फिर पानी भरतो राय, असने एयर क्लीनर के साफ करते रहतो राय। हफ्ता ने ट्रैक्टर चो टायर चो हवा के चेक करतो राय, हफ्ता ने बैटरी चो पानी के चेक करतो राय, हफ्ता ने गियर बॉक्स चो तेल के बदलतो राय, क्लच सॉफ्ट और बेयरिंग, ब्रेक कंट्रोल, पंखा चो वाशर, पूरे चो चक्का चो हब, टाई रॉड और रेडियम क्रॉस सब ने ग्रीस लगातो राय। 15 दिन ने डायनमो और स्टार्टर ने तेल लगातो राय, धुआं ट्यूब ने कार्बन के साफ करतो राय, इंजन तेल के बदलतो राय, एचो पाछे डंडी ट्रैक्टर के चालू संगातो राय, जेचो ले सफाय तेल तपे दे, एचो पाछे नाली प्लग ले तेल के बाहर निकरातो राय और सही ग्रेड चो ताजा तेल भरतो राय। तेल फिल्टर कागज कपड़ा और दूसर जिनिस ले बनली से आले हुनके बदलतो राय। क्लच और ब्रेक फिल प्ले के चेक करतो राय, एक एक महीना ने ये सफाय के फिर दखते रहतो राय और ट्रैक्टर संगे मैनुअल ने प्राथमिक डीजल फिल्टर के साफ कर तो सलाह आसे तो एके साफ करतो राय, नहाले बदलतो राय और एक महीना ने बैटरी ने पानी के चेक करतो राय। 2 महीना ने डीजल फिल्टर और दूसर जिनिस मन के बदलतो राय। नंगत मैकेनिक ले वॉल्व, इंजेक्टर और डीजल पंप जो जांच करातो राय। डायनेमो और सेल्फ स्टार्टर के चेक करतो राय। 4 महीना ने गियर बॉक्स जो तेल के बाहर निकरातो राय और इथा नंगत ग्रेड चो साफ तेल के भरतो राय। असने बैक एक्सल चो तेल के बाहर निकराउन साफ तेल के भरतो राय। हाइड्रोलिक पंप चो फिल्टर के बले साफ करतो राय। स्टेयरिंग आयल के बदलते रहतो राय। असन हिसाब ने ट्रैक्टर चो दखा रखा करलो ने ट्रैक्टर नंगत रह दे और खूबे दिन तक चले दे।
1: अभी कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का पुनः प्रसारण किया गया। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
3: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज आपकी कहानी आपके खेतों की जुबानी।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता सुमन। फरमाइशी गीतों के पत्रों के साथ स्वीकार कीजिए मनिंदर सिंह देवगुण का प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर, ईला अरुण और साथियों की आवाजों में अभी आपने फिल्म लम्हे का गीत सुना। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और धुन बनाई थी शिवहरी ने। गीत सुनने की फरमाइश आप सबने की थी। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झाड़ावाड़ा राजस्थान से हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल मीनाक्षी सत्यनारायण मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी ने। आप हैं यमुनानगर बुलंदशहर से धीरेन्द्र सोलंकी, सुनीता मौर्य और मून सोलंकी। बलोतरा राजस्थान से कृष्ण कुमार डाबी, भूपत कुमार, राधा देवी, विक्रम अर्चना और साक्षी डाबी। डोंगरगांव राजनांदगांव के श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजबी है, राधिका बेबी अनिष्का और तन्मय गजबी है। इसी गीत की फरमाइश गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिक्का, बलदेव वीर, जयदेव वीर और मिक्का वीर की थी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से थे दिनेश कुमार वर्मा, करुणा देवी वर्मा, प्रियंका गौरव बंछोड़ और भागवत वर्मा। आप पल्लारी के श्रोता हैं प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस यशस्वी और वीरेंद्र साहू। देवरी भाडापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश और मुरली छत्री। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से इस गीत को सुनना चाहा था पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविन्द्र सेन के साथ रौनक सेन। नेहरूवाड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत साहू, राघवेंद्र और तेजल साहू। मोहनपारा अकलतरा से अभिनव, अभिषेक और उमा देवी साहू। मेचका नगरी से भूपेंद्र नाथ, पूर्णिमा, निखिल और तरुणदीप नाग। आप रोहांसी से हैं डगेश्वर राम साहू, घनश्याम साहू, नूतन और गौरव साहू। कंडला बंदरगाह से जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और जेनिश। गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन और गजेंद्र कुमार चंदन। ग्राम सौंगा मगरलोड जिला धमतरी के आप श्रोता हैं। आप हैं मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्य, नीलेश और नियति कुमार। जमशेदपुर झारखंड से हैं सुपाही गांव के श्रोता देवेंद्र तांती, राकेश प्रकाश तांती, निश्व कुमारी और केविन जी। रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास। तेलीपारा बिलासपुर से हैं, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, ईशिका यादव और तीजल यादव। पीपरपारा पालचुआ मुंगेली के श्रोता उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी, योगीता, नितिन, वंशिका और भानुप्रिया दिवाकर, विष्णु साहू, पूरव, वीरा, योगेश्वरी, कुमकुम और हर्ष साहू। आप सभी बलौदा बाजार के श्रोता हैं। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मट्टाई, राकेश मट्टाई, उमेश शहजवानी, हनी अमीता, जिम्मी दियाना और जियांशु मटाई। आप हैं हिंदराज रेडियो श्रोता संघ कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला पोपलघट, देवीदास पोपलघट। श्रीरामपुर भोकर से हरिभाव बिड़वे, श्रावण अनीता बिड़वे, विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा और कुश मुड़त। आप सभी बोरखेड़ा पीरामल के श्रोता हैं। ये श्रोता हैं बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदार आनंद और हीना कौसर। कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। बहमहर चांटी डी से हैं गंगा देवी देवांगन, पूनम, धनेश्वरी, महेश्वरी,

0: खिलाड़ी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन, विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलमपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, रमापुरी और आरएसपुरी, ये सभी श्रोता फतेहगढ़ लुधियाना से हैं। आप हैं बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। आप रायगढ़ के श्रोता पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु और ऋषभ सिंह हैं। धरसीवा से हैं छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा, अल्पना यादव, छन्नूलाल, अनुराग, अलका, नमिका, बलदाऊ, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण और सीएल यादव। आप सभी दुर्गापारा रायपुर से हैं। शीतला नगर दूर से हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर। और आप जगदलपुर बस्तर के श्रोता हैं शंकर सलाम, नरसिंह थापा, चैत राम नेताम, शिव राम जैन, रामथर कश्यप, डोमन लाल कोठारी और ललित नागवंशी।
1: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम श्रोता सुमन। अगले गीत की फरमाइशकर्ताओं के नाम उत्तर बस्तर कांकेर भानुप्रतापपुर से प्रकाश, तिरसुनिया, विकास, नैतिक, मुकुल, दिव्यांश, धैर्य और आराध्या। पीपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा और रिमझिम गुप्ता। दंतेवाड़ा बचेली से बलराम सेन, इंदू सेन, पुष्पराज सेन, प्रीतिका और भुवनेश्वर सेन। आप हैं वाशिम महाराष्ट्र से विट्ठल सुरोशे, सुषमा, परिधि, निधीश और मायरा सुरोशे। डोंबिवली मुंबई से भावना यादव, आधीश, स्मित और श्रेयांश गोरे। संजय पाटिल, लुषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर, संजय कुमार चौहान, नसवाला चौक, मलकापुर के ये श्रोता हैं। फरसगांव से हैं फागेश्वर मंडावी और हेमराज भारद्वाज। समडील नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश, बोरगांवकर, सुषमा, प्रोजक्ता, सोहम।

पिता खुशी लल्लू पांडे और भूषण सोनी बेरवड़ी से हुकुम कर्मकर, सुनीता हार्दिक प्राची और तनु कर्मकर गांधीनगर गुजरात के श्रोता हैं। सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल के साथ निशा राठौर आप ग्राम बगबुड़वा पथरिया से हैं। नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम पारुण विश्रामपुरी के श्रोता हैं। प्यारी दास मानिकपुरी, शिव कुमारी खिलेश नमिता और डिम्पी मानिकपुरी आप बुजगहन के श्रोता हैं। रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकला और शशि कांता प्रजापति महाराष्ट्र बीड शहर से हैं। प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल पाकुड़ झारखंड से हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद आप हैं। टेलर रामचंद्र, डोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रम्माबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूषा, नामदेव शिंदे, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े ये सभी श्रोता पांगरा शिंदे तहसील वसमत हिंगोली से हैं। अशोक नगर वसमत हिंगोली के श्रोता हैं। दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम, सुरोहित सोनमुनु ठोके हिंगोली जीजा माता के श्रोता हैं। लक्ष्मी उत्तम कामले आप हदगांव से हैं। श्यामराव पड़घड़े, बेबी और बिट्टू पड़घड़े मुरादाबाद से, जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी केशकाल के श्रोता हैं। सुनील यादव, शिव कुमार, बेबी तनिष्का और नौबत यादव आप हैं। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानु पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ और नीरज रावत चारमीना चौक गणई पंडरिया से हैं। दरियानमल, अनिता मोटवानी, राजेश, मुकेश मोटवानी गांधीबाग नागपुर, सियाको अशोक कुमार सावलानी झूलेलाल चौक तिलदा के श्रोता हैं। हरीश कमल सेतपाल, भूमिका और सुशीला दादी आप हैं। करणवीर हाउस भटिंडा से पंजाब के श्रोता हैं। परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, कुलदीप, एकम दमन और अभिज्योत पोटिया कला दुर्ग से संजय, सुजाता, शशांक और सीमा साहू आप हैं। वी पूनम नायडू, साजन, के मास्टर शिवांशु, रीशु, वी चैतन्या, दुर्गेश कुमार, अक्षय कुमार और अभिषेक नायडू ये सभी श्रोता हैं। धनोरा बस्तर से हैं और अघनपुर धर्मपुरा बस्तर से हैं। डी वनीता नायडू, डी कृष्णा राव नायडू, डी ईश्वर राव नायडू, डी रोजा, मास्टर शिवांशु, डी सोमशेखर राव नायडू। गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले हैं। आप हैं महेंद्र सरकटे, विजय सरकटे और मिलिंद सरकटे जरूर जरूर लका के श्रोता और ये श्रोता हैं। बोरागाछी से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत, बुलंदशहर से पंकज सिंह चंचल, रशिका आकृति और वंशराज सिंह आप सबने सुनना चाहा है। प्रसन्न जोशी का लिखा गीत, संगीतकार हैं जतिन ललित, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में ये गीत हमने फिल्म फना से लिया है। आप सबकी पसंद पर पेश है ये गीत।

चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। छत्रपति संभाजीनगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। बिलाईगढ़ के श्रोता हैं रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल देवांगन। गांव जाखोद राजस्थान से हैं पूजा खटक, बिमला देवी और शंभुदयाल खटक। बागबहार भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल सेन और खुशबू सेन। कस्बा नौहर राजस्थान से हैं नरेन्द्र सुथार, मनोज सुथार और हिमांशु सुथार। आप हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगाहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी। हीरावाला फजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। गोरबा बिलाईगढ़ से हैं देवलाल कर्ष, कामिनी कर्ष और यश कर्ष। यवतमाल विदर्भ से हैं संतोष खड़से और विनोद खड़से। आप हैं चंडीगढ़ से शेफ अली, अरुण कुमार, शेफी और हिमांशु सेठी। गुमला झारखंड से एसएम जावेद, शाह गुप्ता, अंजुम और जेल रोड रायगढ़ से हैं भाई नरेंद्र कुमार तिवारी। डोंडी लोहारा बालोद, आप कबीर रेडियो श्रोता संघ के श्रोता हैं। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, राधिका, तुषार तामुरिया, डॉली, पोता अलकबीर, बेबी पूजा तामुरिया और प्रभा देवी तामुरिया। ग्राम

डॉ मदनलाल वर्मा, किकिरमेटा बेलहारी पाटनदुर से संतोष शर्मा, रुकमणि शर्मा, गुरामी लोंडी लोहारा बालो से हैं पीयूष नेताम, जोहत्रीबाई नेताम, जलगांव जंक्शन से हैं डॉक्टर दिनेश काले, आप हैं नयापारा बेमेतरा से ईश्वर प्रसाद साहू, बाजार पारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार, लक्की सिन्हा, मुरली मनोहर पटेल और भगवान सिंह राजपूत, शाहूनगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी, नागर कोहरा जिला राजनांदगांव से हैं छग्गर राम साहू बबलू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दोषियंत प्रांजल, समीक्षा बेबी आराध्या साहू, तीन महुआ खापरखेड़ा जिला रायसेन से हैं तुलसीराम साहू, मुकेश कुमार साहू, हेमंत कुमार साहू, आरती ममता और गोमती साहू, भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी लक्सर हरिद्वार से हैं, पोषण बंछोड़, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोड़, आप सभी पहरा हिरवार दुर्ग से हैं, अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बीबी काव्य और भाई सुच्छा पाठक, डून लोंडी गुड़ा बस्तर से हैं चंदन नाग, हरीश नाग, मोतीलाल मौर्य, दुखुराम मौर्य, रामधार बघेल, दल्ली राजरा से ललित यादव, श्रीनिवास, सुरेश नागवंशी, दरभा बस्तर से हैं रामधर कश्यप, सोनू राम ठाकुर और

और कृष्णा केवट लच्छनपुर से हैं, रामजी साहू जीवन लाल रजक, निमेश शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू, रोहन से पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज साहू, बिंदु और वर्षा साहू, धुर्राबांधा से हैं प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू और युवराज साहू, श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित मोहित और बीना आर्य, गोलबाजार बक्सर से हैं आप हैं, पलारी जिला बलौदाबाजार से नीतेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन, भटेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, चटोदा सारागांव के श्रोता सुजान वर्मा, सुहद्रा और आयुषी के साथ कृत वर्मा है, रायगढ़ के श्रोता रोहित जयलक्ष्मी, अंश लक्ष्मी और ऋषभ लक्ष्मी, ये श्रोता हैं रानीगांव से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा, शुभम सेजल, इंद्राणी, रोहन भरो साहू, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हीना और खुशी गोस्वामी हैं, और बंगला मटिया बालोद के श्रोता शिव कुमार अंगारे, अंजनी त्रियंबिका, लीनांशु माला, आशुतोष अंगारे, ग्राम भर्री टोला डोंडी बालोद से हैं नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू प्रियंका और मुरली गौतम। आप सबके अनुरोध पर प्रस्तुत है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म तीसरी आंख का गीत। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में ये था फिल्म तीसरी आंख का गीत, और इसी गीत को सुनना चाहते थे उमरगांव नगरी से दीपक कुमार साहू, अश्वनी बाई, उमाशंकर और ठामेश्वरी साहू ने, बुलंदशहर से पंकज, चंचल ऋषि काकृति और वंशराज सिंह, कुंडलवाड़ी नांदेड़ से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी और राजेश राकेश और रक्षित सावनकर, आप चुड़ी लाइन मुंगेली के श्रोता मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और अल्ताफ, मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी तुषार और समीर खांडे। अगले गीत की फरमाइशकर्ताओं के नाम फिल्म अनाड़ी का गीत आप सबने सुनना चाहा है, देवरी भाटा पर से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, जालना महाराष्ट्र से विजय पाटिल, पद्माबाई, ज्ञानेश्वर और तेजिस वनी, दतरिंगी से मनोज कुमार साहू, सूरज कुमार साहू, सागर कुमार साहू, आप हैं रेडियो श्रोता रामेश्वर नगर भानपुरी रायपुर से, भनपुरी रायपुर के श्रोता हैं प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता, बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, सैया जैन, सौरभ शौर्य और शुभम जैन, हटोत बाजार लाहौत के श्रोता हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर राजकुमारी पटेल, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप और अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, जरूर वरूर महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी जरपे, रजनी कनीरे और कार्तिक के साथ युवराज, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानन घायल, आप सभी मालेगांव के श्रोता हैं, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया हैं, भंवरपुर बसना के श्रोता हैं राधेश्याम देवांगन और चंपा देवांगन, आप हैं एकता कॉलोनी रोहतक से हरियाणा के श्रोता सीताराम कांगड़ा, मेघापारा लोरमी से कृष्ण कुमार साहू, धनंजय सत्यम, कुमारी गायत्री और मनोज कुमार साहू, कुल्हारी कोट पांडुका से नरोत्तम कश्यप, नीतू कश्यप, मोहनीश कश्यप और अनुराग कश्यप, ग्राम छिदही पुजारीपारा कोंडागांव से सेतुराम चक्रधारी, मंगती नाशीष और अस्तिका चक्रधारी, आप हैं शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव, गावना थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, गीत, सीता और गीता, घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, मोहाली पंजाब के आप श्रोता हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, वासुदेव वोदवड़े, माधुरी वोदवड़े, आकाश कुमार वोदवड़े, ग्राम वड़गांव बुल्ढाना महाराष्ट्र से हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र, संत गागड़े नगर से हैं अनीता, रमेश राव और लोकेश कुमार काठोड़े, मोटक्का माफी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आप हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल, ये श्रोता हैं कंवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई गायकवाड़, आप सभी कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, ये श्रोता हैं नांदुड़ा महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, विजया तायड़े, अमोल और सरिता तायड़े, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, आप सभी पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं, नांदुरा जी गांव से हैं बसंत राव भोजने, सुनंदा भोजने, राजू सोनू भोजने के साथ, निवृत्ति आड़ोकार बुरसुंदा से चंद्र प्रकाश, चिराग सेन, संतोषी और नेहा सेन के साथ, भगवानी और राजेंद्र सेन हैं, सतीश वाघमारे

आतिश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रवण वाघमारे और शिमेन वाघमारे आप सभी चंदन नगर सतारा से हैं। विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत चौहान, मैं चौहान और उनके साथ ही आप सभी कोल्हापुर से हैं। चीतलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा और उनके साथ ही। साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में आप सबने सुनना चाहा है फिल्म अनाड़ी का गीत। बोल समीर के हैं और तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने। तो प्रस्तुत है आप सबकी फरमाइश का ये गाना।

बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गमनेकर और धीरज सब्बासेरे। वरुण जामटी से हैं मुकेश कासलेकर और विशाखा बोबड़े। आप मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश और प्रणीता गवहाणकर। आगरा हाइट्स बहादुर नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और कुमारी ध्वनि गवहाणकर। गीदम रोड जगदलपुर से हैं टी राजू राव, टी सुनील राव, शिवानी राव, कृष्ण तुलसी राव, भाग्य लक्ष्मी राव, आनंद राव, मनीषा, नानू, साक्षी, काव्या, राशि, राधिका और श्रवण कुमार राव। महामायापारा ग्राम दरचूरा से हैं फिरंता साहू, दुलोरिन साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। दरचूरा से ददुआ, भूरी, रेखा और मोतीलाल साहू। आप हैं सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर, मयंक और तन्वी गौहर। धाम मोहल्ला मध्य प्रदेश के श्रोता कौशल किशोर, संगीता हर्षिता और वैभव मट्टू। ग्राम लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, रिया, राघवेंद्र, वंशी, रागिनी और रोनिका यादव। परसाटोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओमप्रकाश मसिया, सिलोचनी, खुमेंद्र और तुषारनी मसिया। यहीं से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। हथखेरा भाटापारा से हैं पंचू यादव, दादू यादव। बावली से कमलेश, हरेंद्र और सुशील बेलसपुरिया। नारायणपुर बाबा पटिया कोटवा से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। आप हैं शेरपुरा कला से अवधेश, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर।

मिथिलेश और तारिणी ठाकुर के साथ सूरज सुजला ज्योति और रियांश ठाकुर भी हैं। बाटापारा के श्रोता द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा हैं। सपना रोड संगीता रोड, सपना संगीता रोड इंदौर से, लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी और मनन तानिया हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया हैं। ग्राम बेलरगांव सिहावा से है मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। आप हैं नांदेड़ से प्रभाकर झोनले और आरती झोनले। और ग्राम मामड़पाल दरभा बस्तर से हैं गणपत बघेल, मनीष बघेल, अनंत बघेल। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म अपराधी का गीत। आवाजें हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

इस गीत की फरमाइश आई है धाड़ी नादुरा महाराज से, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे की। लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी की थी। सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगरदेवी, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगरदेवी ने भी किया था।

फिल्म अपराधी का गाना आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। आप आनंद लीजिए आपकी पसंद के इस गीत का। और अब कार्यक्रम श्रोता सुमन से अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए आपके दोस्त मनिंदर सिंह देवगुण को अनुमति। नमस्कार, हैव ए नाइस डे।

0: ओवो सुवियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने

0: अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
1: जगन्नाथ दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
4: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज

0: सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियोलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलिजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलत

0: डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष श्रीवास शिवकुमारी और रामदुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं। सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
0: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया

0: बाद आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटे के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है। इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से, कई बार अभिभावक भी

0: तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुन करके, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी।
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक

0: तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल
1: है।
0: बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी

0: देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: आप थोड़ा आराम कर लीजिए।
0: इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें, क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल बढ़ता है।
0: जी, जी। और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन

0: गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है या ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो। जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
0: जी,
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से।

0: अच्छा ठीक है, मोबाइल बंद कर लीजिए। अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है,
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है,
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी।
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी

0: में दें, और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल पे भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं।
1: जी,
0: 8440432, 8448440632, ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय दोपहर के 3 बजे हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब हम विविध भारती के कार्यक्रम रिले करेंगे। शाम 5 बजे हम सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में सबसे पहले लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार हल्बी बोली में। युवा साथियों का अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:10 पर। शाम 6:30 पर सुनेगा बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाय हल्बी लोकगीत। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7 बजे। ग्रामीण कार्यक्रम आमचो गांव आप सुन सकते हैं शाम 7:21 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम नानोली में आज रात 8 बजे सुनेगा हड़माराम मरकाम और साथियों के गाय गोंडी लोकगीत। कार्यक्रम

0: मन का जिगूट रात 8:30 पर। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मीनेश पानीग्राही। रात 9:15 पर जीवना चुसूर कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता। इसमें महिला स्व सहायता समूह की सदस्य गोमती कश्यप से भेंट करेंगी बलबीर सिंह कच्छ। कार्यक्रम भेंट घाट में रात 9:30 पर सुना जा सकेगा श्री बलदेव मौर्य से बलबीर सिंह कच्छ की ली गई भेंट वार्ता। और रात 10:00 लोक गीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में होगा जैनू सलाम और साथियों का गाया गोंडी लोकगीत। ये थे हमारे आज के सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 8:30 पर छत्तीसगढ़ साहित्य पत्रिका मोर भुइयां और सुबह 10:00 प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर, इन दोनों ही कार्यक्रमों को हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:05 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन सुबह 6:20 पर। आलेख और स्वर होगा मेघराज पारख का। श्री रामचरितमानस का गायन आप सुनेंगे सुबह 6:25 पर। स्वर ए हरिहरण का। संगीत संयोजक होंगे सतीश भाटिया। कृषि सामयिकी की बेड़ा खड़ा चुगोट सुबह 6:35 पर, जिसका पुनः प्रसारण हम करेंगे दोपहर 1:05 पर। हुलहुली कार्यक्रम में सुबह 6:40 पर सुनेगा रणबीर देवपाड़। वादक कलाकार होंगे पाकलू और साथी। हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर सुबह 7:05 पर। इसके आकर्षण होंगे कथालोक और कविता पाठ में शशांक शेंडी से कविताएं। साथ ही होंगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। सुबह 9:00 सुनिएगा रूपक शानी का रचना संसार। लेखक होंगे गर्जन सिंह वरकड़े। प्रस्तुति और वाचन स्वर होगा एम ए रहीम का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर। कल की फिल्म होगी प्यार किया तो डरना क्या। सुबह 10:30 पर होगा लोक गीतों का कार्यक्रम गुड़दुम। इसमें सुनेगा नीला और साथियों के गाए भद्री लोकगीत। कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा सुबह 11:00। कल का हमारा कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रवि पर। लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में कल दिन के 11:30 पर सुनेगा रामदास और साथियों का बजाया दुलार दई माता पाड़। कार्यक्रम कला और कलाकार दिन के 12:00। ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार होगा 12:30 पर। दोपहर 1:10 पर हम लेकर आएंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुना जा सकेगा दोपहर 2:30 पर। हमारी सांध्यकालीन सभा में कल शाम 5:05 पर होगा समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार गोंडी बोली में। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकेंगे शाम 5:10 पर। कल शाम 6:35 पर सुनेगा हल्बी लोकगीत। कलाकार होंगे लखेश्वर खुदराम और साथी। हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर शाम 7:00। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी सुनेगा कल शाम 7:21 पर। कार्यक्रम शिक्षकों के लिए, इसमें कल रात 8:00 सुनिएगा वार्ता आदर्श अध्यापक के गुण। वार्ताकार होंगे CS बघेल। कार्यक्रम पीला मन का जिगोट रात 8:30 पर। प्रस्तुति होगी नंदिता की। कल रात 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे पुरानी फिल्मों से गीत मोछो मंचो गीत। पत्रों पर आधारित फरमाइशी लोक गीतों का यह कार्यक्रम होगा कल रात 9:30 पर। और कल रात 10:00 लोकवाद्य धुन के कार्यक्रम पाड़ में सुनेगा पाकलू और साथियों का बजाया डूमा देवपाड़ और डोकरा देवपाड़। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष और कल के सभाओं के कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: रेडियो सुनतो सफाई लोग मन के मैं माधुरी यादव करें से जुहार। आज आमी एक कार्यक्रम बलो ने इस समयाचो गोट भीतरे गोट करवा छत्तीसगढ़ संगे पूरा देश ने 1 जुलाई ले मूर होलो विकसित भारत जी राम जी योजना चो बारे ने। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार अरु आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी योजना छत्तीसगढ़ संगे देश भर ने 1 जुलाई ले लागू होली से। ये योजना मनरेगा चो ठान ने इली से। मनरेगा ने सोझे 100 दिन रोजगार गारंटी रहे। मांतर जी राम जी योजना ने साल ने 125 दिन चो रोजगार चो गारंटी आसे। विकसित भारत जी राम जी योजना ने भूतियार मन के काम मांगलो 15 दिन चो भीतर काम दे तो जरूरी आए। अरु काम देउक नि

0: तकलों ने काम मांग लो भूतियार के बेरोजगारी भत्ता देऊ पड़े दे। भूती देतो ने बेर बना ले ब्याज बले देऊ पड़े दे। यह योजना ने केंद्र चो हिस्सा 60% और राज्य चो 40% रह दे। ये अधिनियम भीतरे पानी बचातो सिंचाई सड़क बूटा मंडातो संगे कौशल विकास आजीविका उपरे जोर दिए गेली से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान गेलो 2 जुलाई के आंध्र प्रदेश चो तिरुपति जिला ले ये योजना चो शुभारंभ करला। ए मौका ने श्री चौहान बल्ला की विकसित भारत जी राम जी अधिनियम देश ने रोजगार सुनिश्चित करतो काजे ग्रामीण आजीविका के और पक्की करून गांव चो विकास ने सहायता दे दे। हुन बल्ला की ये अधिनियम लाखों झान गांवकारी भूतियार मन काजे आत्म सम्मान ले कमान खातो चो नुआ अध्याय आए। ये योजना चो मूर करतो मौका ने 2 जुलाई के छत्तीसगढ़ चो कबीरधाम जिला चो गंडई खुर्द ग्राम पंचायत ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम चो आयोजन होली। कार्यक्रम ने उप मुख्यमंत्री अरु पंचायत अरु ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि चो रूप ने शामिल होला। ये मौका ने श्री शर्मा बल्ला कि ये सोचे रोजगार दे तो योजना नो आए बल्कि विकसित गांव ले विकसित भारत चो अभियान आए। हुन बल्ला कि केंद्र सरकार चो ये योजना भीतरे छत्तीसगढ़ का जे 3,300 करोड़ रुपया चो प्रावधान होली से। श्री शर्मा सांगला कि योजना भीतरे 318 प्रकार चो काम मन शामिल आसे। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम भीतरे संशोधित भूती देश भर ने 1 जुलाई ले लागू होली से। ग्रामीण विकास मंत्रालय बाटले पहिल हार 300 रुपया रोजे दिन चो भूती तय होली से। अरु भूती एचो ले बिल्कुल भले कम नी रहे दे। मंत्रालय बाटले बल्लो रासे कि ये वाट गरीब कल्याण अंत्योदय अरु साल 2047 तक विकसित भारत चो सरकार चो संकल्प आए। ये योजना भीतरे छत्तीसगढ़ ने गांवकारी भूतियार मंचो भूती के 261 रुपया ले बढ़ान 300 रुपया रोजे दिन करतुर होली से। असन ने भूती ने 13% चो बाढ़ती होली से। एचोले गांव गांव ने काम करतो भूतियार मन के आगर लाभ मिरे से। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय बल्ला से कि विकसित भारत जी राम जी योजना सोझे रोजगार बढ़ातो काम नो आए। हुंचो पलटा ये आत्मविश्वास मान सम्मान अरु आर्थिक स्थिति के आगर पक्की करतो काजे बनालो उवाट आए। हुन बल्ला कि ये योजना चो लागू होले प्रदेश चो गांव मन ने रोजगार चो नुआ महका मिरे दे अरु विकास चो काम मन झपके झपके होए दे। संगे संग महरार मन बले सशक्त बंदे। श्री साय भरसा करला कि ये काम ले गांव संगे देश बले एबर समृद्ध अरु सशक्त बने दे।
1: हल्बी बोली में अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
0: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे। आगे ये 28% रहे। एचएस कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा कर लो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से। ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेनतो लोग अरु सप्लायर्स चो चिपा गुचे दे। एचई संगे कल पूजा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली ले चलतो बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर लागे दे। ए मन्ने काही बदलाव नी होली से। बिजली ले चलतो सपाय गाड़ी 2 चक्का बीती गाड़ी अरु 3 चक्का बीती गाड़ी ऊपरे 5% कर चो लाभ मिलते रह दे। असन ले ये मन सपाय कम जीएसटी दर बीती गाड़ी मंचो विकल्प बनू रह दे।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों का अपना कार्यक्रम युववाणी।

0: जुहार संगवारी मन, आप मन सुन साथ आप लोग मन पसंद कार्यक्रम युगवाणी। मैं आए आप मन चो कंपेयर दोस्त चांदनी पांडे
1: और मैं आए ममता साहनी। आमी दोनों करो से आप मन सपाए के
0: जुहार।
1: आज आमी गोठियामा गोटो असन

0: ताकत जो बारे ने जो इंसान के साधारण ले असाधारण बना सके जो ना है आत्मविश्वास
1: सत्य ममता आत्मविश्वास बल्लो ने खुद जो ऊपरे विश्वास जब इंसान आप लोग ऊपरे भरोसा करुक सिखवाए तो मुश्किल बाट बले आसान लागू मुरियावाए
0: नंगत बलिश चांदनी खूबे लोग सोचो आज कि सफलता पातो का जे खाली ज्ञान और पैसा चु पैसा ही जरूरी है मानतर असली ताकत तो आत्मविश्वास ने रुवा है
1: हाँ अगर इंसान खुद चे ऊपर भरोसा ची नहीं करे तो हुन पहला कदम बले उठाउ नहीं सके
0: हाँ चांदनी तू किस सुरता से
1: काय
0: पिला बेरा स्कूल ने कहीं बले कविता सुना तो बेरा कम नहीं डर लागत रहे ने
1: हाँ ना हाथ पाए थर थर ते रतो रहे आवाज बले इनाम धीरे धीरे निकलते रहे मानतर जसन जसन आमी खुद चे ऊपर भरोसा करुक मुरियालो हुनी मंच आमचो दोस्त बनुन गेली
0: हाँ मतलब आत्मविश्वास को कि जन्म ले नहीं मेरे बल्कि ये कि धीरे धीरे विकसित करूँ पड़ुआ है
1: हाँ नगद बल सिस एचो शुरुआत नानी नानी सफलता मन ले हुआ है जब आमी कई काम की मेहनत ले पूरा करुआ तब आम जो भित्रे विश्वास पैदा हुआ है
0: मानतर खुबे हार लोग सफलता मिले सफलता नहीं मिलो ने भीतर ले टूटन जावात ने
1: हाँ ममता मानतर असफलता चो मतलब अंत तो नुआ है असफलता तो सीख तो दूसरा नाम है जोन आत्मविश्वासी व्यक्ति रोवाए हुन घसरुन भाती बले फिर उठुन जावाए
0: खुबे नगद गोट के बलिश चांदनी तुझे गोट के सुनुन मके गोटो कहानी सुरता इले
1: तो फिर आमचो संगवारी मन के बले सुनाओ
0: हाँ आले सुना गोटो ले कर लो
1: हाँ
0: जोन के सफाय लोग बलतो राय तू काई करूप नी सकीस हुन पढ़ाई ने बले सामान्य रलो और खेल खुद ने बले ज्यादा अच्छा नी रलो धीरे धीरे हुन लोग मंचो गोट के सच मानुक मुरियालो मानतर गोटुक दिन हुन चु गुरु जी हुन के बोलो अगर तू खुद चो ऊपर विश्वास कर से तो तू के दुनिया चो कोनी ताकत नी थे बाग सके
1: फिर काय होली
0: हुन नानी नानी कोशिश करुक मुरिया लो और रोजे थोड़े अभ्यास थोड़े आत्मविश्वास और हुनी लेका अदा धीरे धीरे आप लोग स्कूल ने टॉप करुक मुरिया लो
1: हाँ एचो मतलब आए ममता कि दूसरा चुराए ले खूबे जरूरी आए खुद चो सोच
0: हाँ जब इंसान खुद के कमजोर मानुक मुरियावाए
1: तो हुंचो हार हुक मुरियावाए
0: हाँ
1: तो संगवारी मन आत्मविश्वास चो मतलब घमंड नहीं हुआ घमंड ने इंसान दूसर के छोटे समझुक मुरियावाए जबकि आत्मविश्वास ने इंसान विनम्र बनवाए
0: नगद बल्लीस आत्मविश्वासी व्यक्ति आप लोग गलती के डरुनुआ है बल्कि हुंचो गलती ले सीख धरुआ है
1: और गोटो गोट आय ममता।

0: जी कहीं आसान तरीका आसे।
1: हाँ ममता, सकारात्मक सोच संगा तो राय,
0: हाँ
1: आप लोग छोटी छोटी सफलता मन की सुरता संगा तो राय,
0: हाँ
1: डर के परातोर नु आए हुंचो सामना करतो राय
0: हाँ
1: और हमेशा सीखतो रहतो राय।
0: खूबे नगद गोट के सांगलिस चांदनी, आम जो वातावरण बले आम जो सोच संगे प्रभावित हुआ है ने।
1: हाँ संगवारी मन हमेशा सुरता संगा आत्मविश्वास कहीं जादू नु आए बल्कि रोज जो मेहनत और सकारात्मक सोचो परिणाम है।
0: और जब आत्मविश्वास संगे रहो तो इंसान बड़े बड़े चुनौती जो सामना मुस्कुरान भात्री कर सके।
1: तो आजी ले खुद के बला मैं सक्षमा से मैं प्रयास कर सके और मैं सफल बले हो सके।
0: हाँ तो संगवारी मन, ये तो रली आजी चो चर्चा अदाय बड़ू बे आगे चो कार्यक्रम बाटे जोन थाने आमी धरु नीलो से आप मन का जे नए तरह ने चो नुआ नुआ गीत सामान्य ज्ञान चो गोट सामुदायिक गीत और मार्गदर्शन भित्रे भेंट वार्ता।
1: संगवारी मन अंदाय आमी आगे बढ़ू आमचो नए तरह ने बाटे मंत्र हुंचोले पहले सुनू ये जहाला के।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: संगवारी मन आज जो पहला गीत आए फिल्म शादी में जरूर आना ले। एगो टोक रोमांटिक गीत आए जो उनके सुनून असन लागे से कि ये गीत चो कलाकार एक दूसरे चो मया ने जोगी होन गेला से।
0: ये गीत के सरदीला से यासर देसाई और आखांचा शर्मा, संगीतकार और गीतकार आर को। तो यह सुनो ये गीत।

0: काय सुंदर गीत रेली ने ममता मके तो मन के भावली।
1: हाँ चांदनी अदा तू बोलते सुना।
0: हाँ तो संगवारी मन अगला गीत सुना से फिल्म भारत ले ये गीत के स्वर दिला से अभिजीत श्रीवास्तव संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इरशाद कामिल। तो इया सुनो ये गीत के।

0: खुब्बे सुंदर गीत रली चांदनी, तू के कसन लागली?
1: मके तो एकदम चासनी असन मीठा लागली, और आम चो संगवारी मन के बले असनिच्चे लागली होती।
0: हाँ, तो संगवारी मन गीत गोविंद तो होते ची रह दे, मानतर आजे आमी आप मन का जे मार्गदर्शन धरुनीलू से, हुनके बले सुनू।
1: हाँ, संगवारी मन आजी चो मार्गदर्शन भितरे आसे भेटवार्ता सतीश कुमार चो, एमनाथ प्रौद्योगिकी संस्थान जगदलपुर चो सहायक प्राध्यापक, एमन संगे गोट बात करला सो चंद्रा ऋषि ठाकुर। तो या सुनू ये मार्गदर्शन के।
2: आकाशवाणी के आप सभी श्रोताओं को चंद्र ऋषि ठाकुर का ढेर सारा प्यार और नमस्कार। श्रोताओं, मॉनसून शुरू हो चुका है और साथ ही शुरू हो चुका है नया शिक्षा सत्र। जो हमारे युवा हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपने अपने कॉलेजेस में भर्ती ले रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे ही विषय के बारे में, एक ऐसे ही संस्थान के बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे कि आप उस संस्थान में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और किस तरह उस संस्थान को चुन आप आगे अपना भविष्य बना सकते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सतीश कुमार ठाकुर जी। आप छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान जगदलपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि इस संस्थान में किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ की जो फैसिलिटीज है उनका लाभ उठा सकते हैं। और चूंकि आप सभी जान रहे हैं कि ये संस्थान बस्तर संभाग में अपनी तरह का इकलौता संस्थान है, आइए हम जानते हैं उसके बारे में और स्वागत करते हैं सतीश कुमार ठाकुर जी का। आपका स्वागत है सर आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद मैम
2: जी। तो क्योंकि आप एक संस्था को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान जगदलपुर को, जिसे पहले छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाता था और CGIT अभी कहा जाता है। तो हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और साथ ही इस संस्थान में एडमिशन भी लेना चाहते हैं, लेकिन ये सारी जानकारी लेने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी इस संस्था के बारे में भी लेना चाहेंगे। आप थोड़ा सा इसका इतिहास बता दें या फिर अभी की रूपरेखा आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: जरूर जरूर, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि जिस संस्थान में हम प्रवेश लेना चाहते हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा जानकारी मिलना चाहिए। जो हमारा अभी छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT जगदलपुर बोलते हैं इंग्लिश में, इसका पुराना नाम झाड़ा सिरहा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर था और पिछले साल ही 2025-26 सत्र के समय में ही इसका नाम

0: करके सीजीआईटी किया गया है, तो वो इसीलिए बताना जरूरी है क्योंकि पिछले साल एडमिशन में कुछ छात्राओं को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर ये छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही है ना ऐसा करके, तो इसलिए हमको इसको क्लेरिफाई करना जरूरी है कि हाँ बिल्कुल ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही है, बस नाम अपडेट किया गया है।
1: सतीश जी, आपने बताया कि अब जो संस्थाने हैं जैसे आपकी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो भी सीजीआईटी में
0: जी
1: बदल गया है,
0: जी
1: तो सीजीआईटी सिर्फ आपकी ही संस्था है या फिर और ऐसी अन्य संस्थाएं छत्तीसगढ़ में खुली हैं? कितनी संस्थाएं, आप उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
0: जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल था, तो उन्होंने 2024-25 के बजट में इसके बारे में प्रपोजल दिया था और उसी के तहत 2025-26 में पिछले सत्र में चार संस्थानों को सीजीआईटी किया गया है, जिसमें एक हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर है और उसके साथ साथ तीन पॉलिटेक्निक कॉलेज थे जो कबीरधाम, जसपुर और रायगढ़ थे, उनको भी सीजीआईटी किया गया है। तो इस प्रकार पिछले सत्र में चार सीजीआईटी संस्थान ओपन हुए थे और अभी इस सत्र में फिर से दो नए, जो हमारे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर थे, उनको भी अपडेट करके सीजीआईटी रायपुर और सीजीआईटी बिलासपुर किया गया है। तो इस प्रकार इस सत्र में 2026-27 के लिए टोटल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से 6 संस्थान हैं जो सीजीआईटी की तरह एडमिशन जहाँ पे बच्चे ले पाएंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार में इस प्रकार तकनीकी संस्था में अगर हम देखें तो 6 सरकारी सीजीआईटी कॉलेज और टोटल जैसे 20 लगभग प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो लगभग 11,528 बीटेक की सीटें होंगी और उसी प्रकार लगभग 35 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और अदर कॉलेजेस भी हैं जो उनको मिला के 8,400 डिप्लोमा की सीटें होंगी। तो तकनीकी संस्थान में मोटा मोटा इतनी प्रकार की सीटें जो है इस सत्र के लिए अवेलेबल रहेंगी।
1: जी
0: उसके पीछे भी सरकार का एक तर्क है, सरकार भविष्य में इसको और अपडेट करना चाहती है, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संस्थान है जैसे NIT, IIT, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्टेट के लिए CGIT बना रही है ताकि हम उन लेवल को मैच कर सके।
1: तो उसकी तर्ज पर सीजीआईटी को बना रहे हैं, तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं?
0: मुख्यतः दो बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारे ब्रांच हैं उनको अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं वो कई सालों से पढ़ रहे हैं, उसमें पाठ्यक्रम जो है बीटेक का जो चल रहा है, बट अभी नए इमर्जिंग फील्ड्स आ चुके हैं, जैसे आपने बहुत सुना होगा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, तो वो पिछले सत्र से हमारे इस संस्था में जोड़ा गया है और उसके साथ ही साथ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जोड़ा गया है। तो इस प्रकार दो नए ब्रांचेस भी इस संस्थान में जोड़े गए हैं।
1: तो ये जो नए ब्रांचेस जोड़े गए हैं उनमें विद्यार्थियों की रुचि किस प्रकार की है?
0: हाँ, यही महत्वपूर्ण है मैडम, क्योंकि पिछले साल ही एडमिशन शुरू हुआ है और वो हमारी सीट तुरंत ही फुल हो गई थी, मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि पहली बात तो ये बस्तर का एकमात्र शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है और दूसरा ये ब्रांचेस भी पूरे छत्तीसगढ़ में एक दो जगह ही अवेलेबल हो पाए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो इसलिए छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली बस्तर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि है कि ये ब्रांचेस हमको बस्तर में ही मिल पा रहे हैं।
1: जी, जैसे कि आपने बताया कि रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और AI के ब्रांचेस आपकी संस्था में नए जुड़े हैं, तो ये जो ब्रांचेस है उसके लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी भी चाहिए रोबोटिक्स के लिए,
0: जरूर जरूर,
1: और इसके साथ साथ ऐसे प्राध्यापक भी हमें चाहिए जिनको इनके बारे में जानकारी हो, मतलब फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या इस तरह की सुविधाएं अभी सीजीआईटी में उपलब्ध हैं?
0: मैम, ये चूंकि अभी रिसेंट ही ओपन हो पाया है तो अभी इसमें कार्य किया जा रहा है, अभी नए बिल्डिंग्स भी बनेंगे साथ ही साथ नई भर्ती भी होगी और जो पुराने फैकल्टी हैं वो भी काफ़ी नॉलेजेबल हैं, कुछ फैकल्टी ने ऑलरेडी QIP PG सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जैसे भी प्रोग्राम अटेंड किए हैं कि वो नए टेक्नोलॉजी सीख सके, और हमको लगातार फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से भी नए नए इमर्जिंग ट्रेंड से अपडेट करना होता है, तो जो अभी अवेलेबल फैकल्टी हैं वो भी अपने आप में पर्याप्त हैं, वो उनको बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ सरकार भी नई भर्ती करने वाली है जिसके लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं।
1: जी, जैसे कि अभी एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है सभी
0: जी
1: जगह, सभी कॉलेजेस में चाहे स्कूल्स में भर्तियां हो रही हैं,
0: जी
1: तो जब भी ऐसी भर्तियों की बात होती है तो पेरेंट्स को बहुत सारे डाउट्स रहते हैं उनके मन में
0: जी
1: कि
0: जी
1: काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी या फिर कहें एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी,
0: जी जी
1: तो क्या आप अपनी संस्था में एडमिशन का और काउंसलिंग का प्रोसीजर बता सकते हैं कि किस तरह से होता है?
0: जरूर जरूर, काउंसलिंग जानने के पहले जैसे आपने कहा था कि इस संस्था का बेसिक हिस्ट्री कैसा है, तो वो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये संस्थान पिछले 44 साल से बस्तर में अपनी सेवाएं दे रही है और इसकी स्थापना 1 मार्च 1983 को सिर्फ सिविल ब्रांच के 20 सीट के साथ शुरू हुई थी, जो अगले साल 1984 में बढ़ के उसमें मैकेनिकल ब्रांच ऐड हुआ 30 सीट के साथ, फिर 2000 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ऐड हुआ 30 सीट के साथ, फिर 2005 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऐड हुआ 30 सीट के साथ, और 2010 में फिर माइनिंग ब्रांच ऐड हुआ 60 सीट के साथ, और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 सीट को अपडेट करके 60-60 सीट कर दिया गया। ये 2010 से लेके अभी 2025-26 तक हमारे पास 6 UG प्रोग्राम चल रहे थे। अब अभी के डेट में करंट में जैसे हमने बताया कि दो नए ब्रांचेस और ऐड हुए हैं, तो वो दो नए ब्रांचेस में से एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 60 सीट के साथ और रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60 सीट के साथ। तो

0: अभी की डेट में हमारी संस्थान में 8 यूजी प्रोग्राम चलते हैं और 2 पीजी प्रोग्राम भी चलते हैं, मतलब एमटेक के लिए। ये यूजी प्रोग्राम बीटेक का था और 2 पीजी प्रोग्राम एमटेक का है। उसमें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है जो सिविल ब्रांच में चलता है और थर्मल इंजीनियरिंग में है जो मैकेनिकल ब्रांच में चलता है। ये दोनों पीजी के सीट में 18-18 सीट होती है पीजी के कोर्स में। तो इस प्रकार अभी हमारी संस्था में 8 यूजी प्रोग्राम और 2 पीजी प्रोग्राम के साथ काफी बड़ी संस्थान है।
1: अभी संख्या क्या होगी विद्यार्थियों?
0: लगभग 1000 विद्यार्थी इसमें एट ए टाइम पढ़ते हैं, तो वो काफी बड़ी संख्या है और उनके हिसाब से सुविधाएं भी पर्याप्त है। और चूंकि आपने कहा दूसरा प्रश्न की काउंसलिंग
1: और एडमिशन,
0: हाँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी हमें जानकारी के अभाव में काउंसलिंग में दिक्कतें आती है और हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी काउंसलिंग चल रहा है, तो जैसे कि हमारा पहला फेज जो चल रहा है वो 30 जून से लेकर 6 जुलाई 2026 तक का है, जिसमें बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं आपको 3 स्टेप में बता देता हूँ कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले स्टेप में स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास वेबसाइट है सरकार की, cgdt.admissions.nic.in, और एक पुरानी भी वेबसाइट थी cgdt.rayapur.cgstate.gov.in। इन वेबसाइट्स के लिंक में जाके हम अपना एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसमें स्टूडेंट्स अपने मोबाइल नंबर और अपने बेसिक जानकारियों के साथ साथ रजिस्ट्रेशन करता है और उनको फिर आईडी पासवर्ड उनके मोबाइल नंबर पे मिलता है। इसमें मोबाइल नंबर को मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स खास करके रजिस्ट्रेशन करते समय अपना मोबाइल नंबर दे, क्योंकि हर स्टेज पे उनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। तो जब हम कभी साइबर कैफे में भी भराने चले जाते हैं तो हम मोबाइल नंबर ध्यान नहीं देते, पापा का दे देते हैं या वो साइबर कैफे वाले बोल देते हैं भैया आप ही भर दो, फिर बाद में हमको दिक्कत आता है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसका आप उपयोग करेंगे भविष्य में भी। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद दूसरे स्टेप में होता है शुल्क भुगतान, जिसमें हम रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। तो बीटेक के कोर्स के लिए 300 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस है जिसको हमको भुगतान करना रहता है। फिर तीसरा स्टेप होता है चॉइस फिलिंग, मतलब विकल्प भरना। जब हम ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको छत्तीसगढ़ के सारे संस्थानों का लिस्ट मिलता है और उन संस्थानों में उपलब्ध ब्रांच का लिस्ट मिलता है। तो जैसे उसमें हमारा संस्थान भी रहेगा और छत्तीसगढ़ अन्य संस्थान भी रहेंगे, तो हम एट ए टाइम मल्टीपल इंस्टीट्यूट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको प्रायोरिटी देना रहता है। जैसे मैंने मान लो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जगदलपुर को पहला प्रायोरिटी दिया और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पहला प्रायोरिटी दिया, फिर सिविल को दिया, फिर मैकेनिकल को दिया, तो उसी क्रम में ही हमको वो उपलब्ध कराया जाएगा। अगर वो सीट खाली है तो पहले प्रायोरिटी के हिसाब से हमको पहला मौका मिलेगा, अगर वो सीट भर गया है हमारे रैंक के हिसाब से तो फिर दूसरा चॉइस का ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस प्रकार भर्ती के लिए हमको ये 3 स्टेप में ऑनलाइन

0: दावा आपत्ति करने का ऑप्शन रहेगा 8 जुलाई को रात को 12 बजे के पहले तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं कि मान लो आपको लगता है कि मेरा रैंक इतना था लेकिन मेरिट सूची में इतना दिखा रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकते हैं, उसके लिए एक दिन और मौका दिया जाता है। फिर 10 जुलाई को अलॉटमेंट लेटर आता है, जो आईडी पासवर्ड आपको रजिस्ट्रेशन के समय मिला था आप उसमें भी जाके लॉग इन करके देख सकते हैं अलॉटमेंट में आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और आपके मोबाइल पर भी मैसेज आता है जो नंबर आपने डाला था उसमें। फिर 10 जुलाई को अलॉटमेंट शाम को 5 बजे तक आ जाएगा, उसके बाद आप जो भी संस्थान में जो भी ब्रांच मिला है आपको अलॉटमेंट में 11 जुलाई से लेके 15 जुलाई शाम को 5:30 बजे तक आप उस संस्थान में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं दस्तावेज जमा करके। तो ये हमारा फेज वन होगा, और जब 15 जुलाई 5:30 बजे फेज वन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 17 जुलाई से 21 जुलाई तक फेज टू शुरू होगा, जो सीटें रिक्त रह गई है उनके लिए।
1: जी, और इसके बाद फिर एडमिशन की प्रोसीजर शुरू होगा, जिनको जो जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं, मिले हैं,
0: जी
1: वो उन उन कॉलेजेस में जाके फिर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर
0: जी
1: सकते
0: जी जी
1: हैं।
0: 10 जुलाई को उनका अलॉटमेंट लेटर में पता चल जाएगा कि हमको कौन सा कॉलेज का कौन सा ब्रांच मिला है, तो वो 11 जुलाई से 15 जुलाई तक उस संस्थान में जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय लिखे थे उन सबका ओरिजिनल और एक फोटोकॉपी उनको लेके जाना होगा, तो वो वहां पे वेरीफाई होगा डॉक्यूमेंट में फिर से एक बार पुनः, और उसके बाद वो एडमिशन ले पाएंगे उसी समय ही।
1: वैसे क्या आप हमें दस्तावेज का लिस्ट बता सकते हैं कि
0: जी जी
1: कौन कौन
0: जी
1: से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
0: जी जी जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट कम रहते हैं तो फिर उनको दिक्कत होता है। तो सबसे पहले हमें दस्तावेज में चाहिए 10वीं का प्रमाण पत्र, मार्कशीट जो बोलते हैं हम लोग, फिर उसके बाद चाहिए 12वीं, और डिप्लोमा दो ऑप्शन है। चूंकि ये बीटेक है तो इसमें हम दो तरीके से प्रवेश ले सकते हैं, ये भी हमको जानना जरूरी है। हम 12वीं पास स्टूडेंट भी इसमें प्रवेश ले सकता है, और जो डिप्लोमा करते हैं 3 साल का पॉलिटेक्निक कॉलेज में वो भी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। तो 12वीं या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट टेस्ट जो हमने दिलाया था उसका हमको मार्कशीट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, कि छत्तीसगढ़ राज्य के आप हैं तो आपके पास छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो फिर आपके पास जाति प्रमाण पत्र या जैसे विकलांगता प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्रों की भी आवश्यकता होती है। ये मुख्यतः है।
1: जी, आपने तो बता दिया कि क्या एडमिशन प्रक्रिया होती है और काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है।
0: जी
1: अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो संस्था है उसमें किस किस तरह की फैसिलिटी है। जो बाहर से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, क्या उन लोग के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है, या फिर उनके लिए क्या कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, पुस्तकालय की क्या व्यवस्था है, इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में आप बताएं।
0: जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम, और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा संस्था जो है वो 69 एकड़ में बना हुआ है, तो फैसिलिटी पर्याप्त है। हॉस्टल फैसिलिटी भी है, गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, तो जो भी बच्चे बाहर से आते हैं या यहाँ के भी जो बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो उनके लिए पर्याप्त हॉस्टल है। लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है, लगभग हमारी संस्था में 50,000 से ज्यादा बुक्स हैं और सभी ब्रांच के लिए पर्याप्त बुक हैं, तो लाइब्रेरी की भी भरपूर व्यवस्था है। साथ ही साथ बच्चों के लिए वर्कशॉप भी है, स्पोर्ट्स भी कराया जाता है हर साल, स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है। हमारा बैडमिंटन कोर्ट तो आसपास के इंस्टीट्यूट के लिए भी फेमस है, वहां से भी बच्चे आते हैं कि सर बैडमिंटन कोर्ट यूज कर ले क्या करके। साथ ही साथ हमारी संस्था में एनसीसी और एनएसएस की एक्टिविटी भी रेगुलरली होती रहती है, और चूंकि सरकारी संस्थान है तो यहाँ पे भरपूर स्कॉलरशिप भी मिलता है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, उन सब का स्कॉलरशिप यहाँ के बच्चों को मिलता है। और साथ ही साथ बुक बैंक की भी फैसिलिटी है, जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, एसटीएससी के हैं, उनके लिए अलग से बुक बैंक फैसिलिटी मिलता है, जिसमें उनको बुक्स भी फ्री में मिलता है पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ स्पेशल कोचिंग क्लासेस भी हम रेगुलरली चलाते हैं, जिसमें जो कमजोर बच्चे हैं और एसटीएससी के जो भी बच्चे हैं उनको अगर रेगुलर क्लासेस के अलावा भी ऐसा लगता है कि अलग से उनको एक ट्यूटोरियल की जरूरत है तो उनके लिए अलग से स्पेशल कोचिंग क्लासेस भी चलाए जाते हैं। साथ ही साथ हाई स्पीड इंटरनेट भी है संस्था में, वाईफाई भी है, और मेडिकल फैसिलिटी भी है। हमारे पास एक डॉक्टर अपॉइंट रहते हैं जो रेगुलरली संस्था में उपस्थित रहते हैं, तो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ पे मिल सकता है। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि एक संस्थान में जो भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी अवेलेबल है।
1: जी, और जब भी कोई विद्यार्थी या माँ बाप अपने बच्चे के लिए कोई संस्था का चयन करते हैं तो वो हमेशा ये जानना चाहते हैं कि इस संस्था से पढ़कर आखिर हमारे बच्चे का भविष्य सुधरेगा या नहीं। और एक कॉन्सेप्ट भी है कैंपस सेलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं, या फिर कैंपस प्लेसमेंट भी बोलते हैं।
0: जी
1: तो कैंपस प्लेसमेंट की क्या कोई व्यवस्था है या फिर होती है आपकी संस्था से, या फिर आपकी संस्था से जो पास आउट बच्चे हैं उनका किस तरह का करियर स्कोप रहता है, आगे भविष्य कैसा रहता है, आप इसके बारे में बताएं।
0: जी, कैंपस प्लेसमेंट वाकई में कोई भी कोर्स हो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चूंकि हमारा कोर्स बीटेक का है तो हमारी संस्था में भी अलग से एक टीपीओ अधिकारी होता है जिसको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बोलते हैं। तो हमारी संस्था में एक टीपीओ सेल है, उसके लिए एक प्रॉपर टीपीओ कमेटी है जो उनको हर ब्रांच से एक फैकल्टी को उसमें अपॉइंट किया जाता है जो अपने अपने ब्रांच के बच्चों को बेसिक सारी जानकारियां देते हैं। तो चूंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो हमको राज्य स्तर पर भी प्लेसमेंट का मौका मिलता है, जो डायरेक्टरेट से हमको निर्देश मिलते हैं वो भी, जो कुछ हमारी इंडस्ट्री से एमओयू है उनका भी प्लेसमेंट होता है। साथ ही साथ कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर कहीं पे प्लेसमेंट होता है तो हमें उसकी भी जानकारी मिलती है, तो हम अपने बच्चों को उसके बारे में भी बताते हैं। तो प्लेसमेंट की भी सारी व्यवस्था ध्यान में दी गई है।

0: और हमारे बहुत सारे बच्चे ना केवल तकनीकी क्षेत्र में बल्कि नॉन टेक्निकल फील्ड में भी वो बहुत आगे हैं। जैसे 2 साल पहले CGPSC 2024 में जो फर्स्ट रैंक थे देवेश साहू मैकेनिकल के थे हमारे, वो डिप्टी कलेक्टर बने हैं। उसके पहले जो हमारे एक दास सर हैं जो बहुत ही सीनियर है, जो बहुत ही शुरू के पास आउट हैं, वो इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर भी बने थे। और बाकी हर साल जैसे जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट आता है, तो ऐसे कोई भी पोस्ट जिसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर हो तो हमारे बच्चे जरूर उसमें क्वालिफाई करते हैं। और वो स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें वो क्वालिफाई करके भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंचते हैं।
1: जी, जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये तो आप कॉलेज खत्म करने के बाद दिलाते हैं
0: जी,
1: तो क्या इस तरह की भी तैयारी कुछ दी जाती है, फिर गाइडेंस दिया जाता है बच्चों को कि आप अपने कोर्स खत्म करने के बाद इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, कुछ करियर गाइडेंस की भी व्यवस्था?
0: यस यस, ये फाइनल ईयर के बच्चों पे फोकस करके किया जाता है। जैसे ही बच्चे फाइनल ईयर में पहुंचते हैं, एक तो पहले उनको फर्स्ट ईयर में जब इंडक्शन प्रोग्राम होता है जिस समय एडमिशन लिया जाता है उस समय भी एक बेसिक जानकारी दिया जाता है, और फाइनल ईयर में जब वो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं उस समय भी उनको सारी जानकारियां दी जाती है कि क्या क्या हमारे पास स्कोप है। जैसे आगे भविष्य में जो बीटेक करने के बाद और हायर स्टडीज करना चाहते हैं, एमटेक करना है उनको मान लो किसी अच्छे संस्थान से, तो उसके लिए गेट क्वालिफाई होना पड़ता है। गेट क्या होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग होता है, जो बीटेक पास आउट बच्चे दिलाते हैं, तो उसकी तैयारी भी हम फाइनल ईयर में उनको कराते हैं। मतलब उसके लिए सरकार की तरफ से अलग से कोई क्लासेस नहीं लिया जाता है, बट जो फैकल्टी होते हैं वो अपने क्लासेस में ही समय निकाल के, और जो सब्जेक्ट हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट अगर गेट से संबंधित सब्जेक्ट है तो उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है कि इस सब्जेक्ट से हम गेट की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम उनको मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि फाइनल ईयर के बच्चे ना केवल बीटेक फाइनल ईयर का काम करें, साथ ही साथ वो आगे हायर स्टडीज़ के लिए, और गेट से दोनों फायदा है, हायर स्टडीज़ में भी गेट के रैंक से एडमिशन होता है, साथ ही साथ जो बहुत सारे PSU हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी वहाँ पे भी गेट के रैंक से डायरेक्ट जॉब लगता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि बीटेक के फाइनल ईयर के बच्चे गेट का भी तैयारी साथ में करें, तो इससे उनका दोनों तैयारी हो जाता है, बीटेक का भी कंप्लीट हो जाता है और वो एमटेक प्लस पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं।
1: जी जी, आपने बताया था कि आपकी संस्था में एमटेक के भी कोर्सेज चलते
0: जी,
1: हैं
0: जी।
1: तो उसकी जो एडमिशन प्रक्रिया है, पहले गेट का एग्जाम आपको देना है, फिर उसमें जो रैंकिंग आएगी उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी
0: जी,
1: और जो भी ब्रांच आपके कॉलेज में अवेलेबल है
0: जी,
1: वो उन्हें मिलेंगे, तब जाके उनका एडमिशन यहाँ पे होगा।
0: यस,
1: तो आप ये बताएं कि एमटेक की जो पढ़ाई है वो यहाँ पे हो रही है, तो एमटेक के बाद उनका क्या भविष्य है?
0: देखो, एमटेक के मेन दो फायदे हैं, एक तो ये हायर स्टडीज में काउंट होता है तो आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो आप भविष्य में प्रोफेसर जैसे आपको बनना है, जैसे अभी हम जिस पोस्ट पर रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, इन सब पोस्ट के लिए भी मास्टर्स कंपलसरी है, तो आप एमटेक कंप्लीट करके असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिसर्च करना है या आपको PhD करना है तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो अभी हमारे संस्थान में 2 MTech के कोर्स चलते हैं, एक सिविल ब्रांच में स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच में, तो इन दो ब्रांच से जो एमटेक करते हैं वो आगे इन दो ब्रांचेस के बाद जो भी इनके फील्ड से रिलेटेड है उसमें PhD भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें मास्टर्स अनिवार्य होता है तो वो इसमें भी एलिजिबल हो जाते हैं।
1: जी, तो क्या इनकी भी अभी काउंसलिंग या एडमिशन प्रक्रिया चल रही है?
0: जी जी जी, इनकी भी साथ में चल रही है। अभी छत्तीसगढ़ में तकनीकी संस्थान में सभी जगह पर एडमिशन चालू हो गया है, जिसकी जानकारी वो मैंने जो पहले मैं बताया था CGDT.admission.nic.in में वो उनको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो वो अभी एट अ टाइम डिप्लोमा कोर्सेज, बीटेक कोर्सेज, एमटेक कोर्सेज सभी के एडमिशन प्रक्रिया चल रही है।
1: जी सतीश जी, आपने तो बहुत सारी जानकारी दी है और मेरे ख्याल से जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनको इन जानकारी से फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई बात अगर छूट गई हो और आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाह रहे हो तो बताएं।
0: जी मैडम, इसमें हमको एक चीज और ध्यान देना है, जो बीटेक में एडमिशन होता है उसमें 2 क्वालिफिकेशन चाहिए, एक तो 12वीं पास जो बच्चे होते हैं वो फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेते हैं, साथ ही साथ जो डिप्लोमा 3 साल का कर्स के आए हैं उनको लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो ये बात सबको जानना जरूरी है कि डिप्लोमा पास आउट जो है वो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन आ सकते हैं, तो उनका जो बीटेक है वो 4 साल की जगह 3 साल का हो जाता है, और जो 12वीं पास से जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं उनके लिए 45% मिनिमम क्राइटेरिया है कि वो 12th में कम से कम 45% हो, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं ST SC OBC से हैं तो उनको 40% मिनिमम उनका होना जरूरी है। तो ये जो 2-3 बातें बेसिक हैं जो पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें एडमिशन के लिए प्री इंजीनियरिंग टेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ जो दूसरे राज्य से अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है तो JEE जो होता है हमारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE मेंस, उसके रैंक से भी संस्था में प्रवेश मिलता है, बट पहले प्रायोरिटी PUT वालों को दिया जाता है फिर JEE वालों को भी मौका मिलता है, तो दोनों तरीके से यहाँ पे एडमिशन हो सकता है।
1: जी, तो सतीश जी आपने अपना समय दिया और हमारे श्रोताओं से बातचीत की और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत
2: संगवारी मन एवे आप मन सुनते रलास मार्गदर्शन भित्रे भेटवार्ता जोन थाने सतीश कुमार चंद्र ऋषि ठाकुर संगे गोड़ बात करू रला
3: चांदनी ये तो रली मार्गदर्शन ने
2: हाँ
3: अदा सुन

0: कुटुक जहाला।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: संगवारी मन, अगला गीत आए सामुदायिक गीत जो आप मन सुना से ओडिया भाषा ने, और ये जो बोला है केन बीमाधारी और रचनाकार काली चरण पानीग्राही। तो ये सुनो ये सामुदायिक गीत की।

0: संगवारी मन एबे आप मन सुनते रला सामुदायिक गीत ओडिया भाषा ने अने आमे फिर बढ़ू आमचो कार्यक्रम बाटे। तो ममता
1: हाँ
0: गीत मन चे सुनते रलो ने नी होई ने
1: हाँ।
0: तो संगवारी मन असनी ची आजी बली आमी आप मन का जे सामान्य ज्ञान चो गोड बात धरो ने लुसे
1: हाँ। जोन थाने आमचो सामान्य ज्ञान चो टॉपिक है समय। पृथ्वी ने एक दिन हमेशा ले 24 घंटा चो निरली। करोड़ों साल पहले एक दिन सिर्फ लगभग 22 घंटा चो रहे।
0: हाँ और दुनिया ने कई जगह असना से जोन थाने गर्मी बेरा खूबे दिन तक सूरज डूबुच चेनु आए जसन की नार्वे जो के लैंड ऑफ मिडनाइट सन बले बलुआत।
1: हाँ इंसान समय के थेवाव नी सके मात्र वैज्ञानिक मंचो अनुसार तेज गति ले हिंडलो ने समय थोड़े धीमा महसूस हो सके। एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ले बले जोड़ला से
0: हाँ घड़ी चो टिक टिक सबू देश ने गोटकी जसन नी रुआ अलग अलग भाषा ने लोग अलग अलग तरीका ले बलुआत।
1: दुनिया जो सबले चलतो पुराना घड़ी लगभग 600 साल ले बले ज्यादा पुराना माना जावा है और ये भी बले हुन घड़ी काम करे से।
0: तो संगवारी मन ये तो रली सामान्य ज्ञान चो गोट अंदाय आमी फिर बढ़ू आमचो गीत गोविंद बाटे। तो अगला गीत आए संगवारी मन फिल्म सिंग इज किंग ले स्वर दिला से राहत फतेह अली खान और अमी सब चो फेवरेट सिंगर श्रेया घोषाल संगीतकारात प्रीतम और गीतकारात मयूरपुरी। तो इया सुनू ये गीत के

0: चांदी आज का सुंदर नुआ नुआ गीत मन की सुना दिलीस।
1: हाँ और ममता आमचो गीत मन संगे संगे आमचो चर्चा भितरी आत्मविश्वास चो महत्व बले तो रली।
0: हाँ
1: और नुआ नुआ गीत मन बले तो अच्छा अच्छा रली ने।
0: हाँ और हूँ चीज संगे गुटुक मार्गदर्शन बले रली और सामुदायिक गीत मन रली ने उड़िया भाषा ने।
1: हाँ और हूँ चे संगे आमचो लगे सामान्य ज्ञान चो पिटारा बले रली।
0: हाँ
1: तो संगवारी मन अंदाय आमचो जातो समया बले होली अंदाय आमके दिया विदा। मैं आए आप मंचो संगवारी दोस्त चांदी पांडे
0: और मैं आए ममता साहनी।
1: शुभ संध्या जुहार, जुहार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष

0: कोविंद ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह केहन के सहकारी आंदोलन सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के पांचवा स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुईं। ए मौका मा उमन किहिन के सहकारी आंदोलन सुधार, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश कर रहे। श्री शाह किहिन के राष्ट्रीय स्तर के 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाए गए है। उमन किहिन के सहकारिता मंत्रालय पाछू 5 साल ले सहकारिता के माध्यम ले समृद्धि के मंत्र के पालन कर रहे, जिखे से मंत्रालय डहार ले लाखों लोगन के जीवन में बदलाव आए है। केंद्रीय मंत्री ह किसान मन ले जैविक कृषि उत्पाद के उत्पादन बढ़ाए और रासायनिक उर्वरक के संग्रह कीटनाशक के उपयोग कम करे के अपील करें। श्री शाह किहिन के पाछू 5 बच्छर में सहकारी प्रणाली ल आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाए के दिशा में सराहनीय काम करे गए है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में राखे गए एक दिन कार्यक्रम में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास कार्य के भूमि पूजन करें। इमा छात्र छात्रा मन पर आधुनिक छात्रावास, कैंसर भवन के विस्तार और चिकित्सक मन के संग्रह, कर्मचारी मन के आवासीय परिसर समेत आने आने निर्माण काम शामिल है। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हकीन के स्वस्थ छत्तीसगढ़ ही विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण करी। ये परियोजना प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा ला नवा ऊंचाई दी और मरीज, विद्यार्थी और चिकित्सक मन ला एक हर फायदा मिली। कार्यक्रम ला उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो संबोधित करें। बता दें कि परियोजना के पहली चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास बनाए जाही, उन्हें दूसरिया चरण में कैंसर भवन के विस्तार करे जाही। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जयंती में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है डॉ मुखर्जी के जयंती में ओमनला श्रद्धांजलि देवत ओमनला साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा के शाश्वत प्रतीक बताए हैं। श्री मोदी है एक दिन आलेख मकहीन कि डॉ मुखर्जी के जीवन अखंड भारत पर उखर अटल प्रतिबद्धता के प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका आज लोकभवन में डॉ श्यामा

0: प्रसाद मुखर्जी के जयंती माँ और खचित्र माँ पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि दिन। राज्यपाल यकीन है कि डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र के एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्य पर समर्पण जम्मू देशवासी मन पर प्रेरणा स्रोत है। उन्हें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी ला श्रद्धांजलि अर्पित करें। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए गए रद्दा में अग्रसर होवत हमन विकसित और सशक्त भारत के निर्माण करबो। रायपुर में रखे गए 2 दिन के चिंतन शिविर 3.0 काली सिरागे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन कि शिविर ले मिले सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन ला नवा दिशा दीही। उमन कहिन के पाछू चिंतन सिवन के सुझाव के आधार में मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसे पहल सफलतापूर्वक लागू करेगे है। मुख्यमंत्री कहिन के इहुदारी मिले सुझाव ला जल्दी ही नीति और प्रशासनिक सुधार के रूप में लागू करे जाही। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकास परक राजनीति जैसे विषय ऊपर विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी मन विचार विमर्श करें। गनियारी के शासकीय हाई हायर सेकेंडरी स्कूल के नाव अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी हुई। ये घोषणा काली स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव व विश्वविख्यात पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में रखे गए अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान करें। ए मौका में उमन कहिन कि डॉक्टर तीजनबाई अपन कला के माध्यम ले छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में नवा पहचान दिलाए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माझे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हां मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना के अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाए के आदेश जारी कर दे है। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, BPL और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ता मनला बिजली बिल के मूल राशि और अधिभार में नियमानु

0: बाकी लगभग 5,89,000 मीट्रिक टन उर्वरक के भंडार अभी भी मौजूद है। सरकार ह कहे है कि खरीफ सीजन में किसान मल्ला खाद के कोनो कमी नहीं होए दे जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ह राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG के आवेदन फीस लहुटाए बर बैंक खाता विवरण अपडेट करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जुलाई कर दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ह बताइस कि जौन उम्मीदवार मन अपन बैंक खाता विवरण के पुष्टि कर दे है उमन बर रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुके है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवार मन ही अपन बैंक विवरण में सुधार या अपडेट करीन है। नगरीय प्रशासन विभाग ह प्रदेश के जम्मू निकाय में बल्क वेस्ट जनरेटर्स के पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल में कराए के निर्देश दे है। विभाग इस संबंध में जम्मू नगर निगम के आयुक्त नगर पालिका और नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मल्ला परिपत्र जारी करे है। प्रदेश के अधिकांश जिला मन में पाछू 2 दिन ले होवत सरलग बारिश के सेती सामान्य जनजीवन प्रभावित हुए है। उन्हें कई ठिन नदियां नरवा उफान में है। दुर्ग जिला में शिवनाथ नदी के जलस्तर बाढ़े के सेती महमरा एनिकट के तीर 5 फीट ऊपर पानी बोहा थे जिखा सेती नदिया तीर के जगह मन में सतर्कता बढ़ा दे गए है। सुरक्षा ला देखत प्रशासन है महमरा गांव जाने वाला रद्दा और पुलगांव स्थित छोटे पुलिया ला अवई जवई बर बंद कर दे है। उन्हें थनौद ले लेके अरसनारा तक नदिया तीर बसे गांव के लोगन मल्ला नदिया ले दूर रहे बर चेताए गए है। कोनो भी आपात स्थिति ले निपटे बर SDRF की टीम तैनात है। उन्हें रायगढ़ जिला में पाछू 36 घंटा ले रुक रुक के हुवत बारिश के सेती कई जगह मन में सड़क मन में पानी भरे के संगे संग निचला बस्ती मन में स्थित घर में पानी भर गए है। पानी भरे के सेती प्रशासन हा केलो बांध के 4 गेट खोल दे है जेखर ले नदी के जल स्तर बाढ़ गए है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में काली 7 जुलाई के संभाग स्त्री रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। ई मेला के माध्यम ले निजी क्षेत्र के आने आने कंपनी के लगभग 1500 ले ज्यादा पद ऊपर भर्ती करे जाही। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन करके जरूरी दस्तावेज के साथ मेला में शामिल हो सकत हैं। कोरबा पुलिस पाछू 1 जुलाई के छुरीकला स्थित सोनार दुकान में हुए लूट के मामला में 2 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। उन्हें 1 जिन दूसर आरोपी अभी भी फरार है जेखर तलाश करे जाते। जिला के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी है आज एक दिन पत्रकार वार्ता में बताएं कि तीनों आरोपी पहली हत्या दुष्कर्म और दूसर गंभीर मामला में जेल की सजा काट चुके हैं। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कहिन के सहकारी आंदोलन सुधार डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम ले विस्तार के एक नवा चरण में प्रवेश करत है। मुख्यमंत्री आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपया ले ज्यादा लागत के आने आने विकास काम के भूमि पूजन करें और राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में खरीफ सीजन पर रासायनिक खाद के पर्याप्त भंडार मौजूद। इखरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी जगदलपुर है। शाम के 6:20 हुए हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिलीज।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां संप्राप्तवान्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबन्धनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात कोंकण गोवा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे

0: अस्य एस्टेका क्रीडांगणे मेक्सिको देशस्य विरुद्धं नाटकीयतया 3-2 इत्यंकैः विजयं प्राप्य इंग्लैंड देश फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रीय द्वन्द्वे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: मीडियावेव एफएम बैंड और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए बलबीर सिंह कच्छ और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे बलबीर सिंह कच्छ और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 6:45
1: अपनों के लिए सबसे सही RPL Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर

0: गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दो दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कम करने की अपील की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
4: कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में

0: निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ होगा, क्योंकि मेकाहारा एक ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पर पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए आते हैं। तो यहां पर छात्रावास का भी आज भूमि पूजन किए हैं और कैंसर के लिए ये मेकाहारा बड़ा फेमस है और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बाहर से भी लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं।
1: कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री अरुण साव और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। गौरतलब है कि परियोजना के पहले चरण में 200 सीटर आधुनिक छात्र छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, वहीं दूसरे चरण में कैंसर भवन का विस्तार किया जाएगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के दिखाए पथ पर अग्रसर होते हुए हम विकसित और सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग मुख्यालय और सभी जिलों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 10 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर 3.0 का कल समापन हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिविर से प्राप्त सुझाव विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण और सुशासन को नई दिशा देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चिंतन शिविरों के सुझावों के आधार पर मंत्रालय में ई ऑफिस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और सेवा सेतु जैसी पहले सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी प्राप्त सुझावों को शीघ्र नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के अनुरूप लागू किया जाएगा। शिविर में सुशासन, तकनीक, कृषि, पर्यटन, नेतृत्व विकास और विकासपरक राजनीति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों ने विचार विमर्श किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई नदी नाले उफान पर हैं। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण महमरा एनीकट के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे नदी किनारे के क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने महमरा गांव जाने वाले मार्ग और पुलगांव स्थित छोटे पुल को आवागमन के लिए बंद कर दिया है। वहीं थनौत से लेकर अरसनारा तक नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। वहीं रायगढ़ जिले में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कों में जल जमाव के साथ ही निचली बस्तियों में स्थित घरों में पानी भर गया है। जल भराव के कारण प्रशासन ने केलो बांध के 4 गेट खोल दिए हैं, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इधर बलौदाबाजार जिले में महानदी पर रोहासी और अमेठी गांव को जोड़ने वाले एनीकट में 2 से 2.5 फीट ऊपर पानी बह रहा है, जिसके कारण अमेठी और वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का पलारी क्षेत्र और बलौदाबाजार से संपर्क टूट गया है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान बिलासपुर संभाग के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है और उत्तर छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बिलासपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा होने की चांसेस है। अति भारी वर्षा के साथ साथ सीमांत भारी वर्षा भी होने की चांस है, मतलब लगभग 200 mm से ऊपर भी 1-2 स्थानों पर होने की चांस है। बिलासपुर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे के पश्चात येलो अलर्ट जो है वो सरगुजा संभाग में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जारी किया है।
1: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। योजना के तहत निम्न दाब घरेलू, बीपीएल और कृषि श्रेणी के पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि और अधिभार में नियमानुसार छूट दी जा रही है। पावर कंपनी ने पात्र उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक योजना

लाभ लेने की अपील की है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना की अवधि 1 महीने बढ़ाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन कल 7 जुलाई तक किए जा सकते हैं। इस योजना के तहत एमटेक, डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रवेश लेने वाले चयनित विद्यार्थियों को प्रतिमाह 50,000 रूपये फेलोशिप दी जाएगी। ट्यूशन फीस का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री आईटी फेलोशिप कार्यक्रम नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी एनआर में संचालित की जा रही है। जगदलपुर के आड़ावाल स्थित शासकीय लाइवलीहुड कॉलेज में कल 7 जुलाई को संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के विभिन्न कंपनियों के लगभग 1500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ मेले में शामिल हो सकते हैं। कोरबा पुलिस ने बीते 1 जुलाई को छुरी कला स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तीनों आरोपी पूर्व में हत्या, दुष्कर्म और अन्य गंभीर मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं। जेल में ही उनकी दोस्ती हुई और रिहाई के बाद उन्होंने चोरी की मोटरसाइकिल और देशी कट्टे की मदद से लूट की योजना बनाई। नगरी प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों में बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीयन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को परिपत्र जारी किया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन टिकर ने आज भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित प्रणवानंद अकादमी में रोबोटिक्स लेबोरेटरी का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता वितरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। और गनियारी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम अब डॉक्टर तीजनबाई शासकीय हाई हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी होगा। यह घोषणा कल स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने विख्यात पनवानी गायिका डॉक्टर तीजनबाई के गृहग्राम गनियारी में आयोजित अंतिम संस्कार और श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर के चिकित्सा महाविद्यालय में 103 करोड़ रुपए से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से राज्य के अधिकांश जिलों में जनजीवन प्रभावित, कई नदी नाले उफान पर। और समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: चलो।
1: कहाँ?
0: एडमिशन कराने। आता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

0: राम राम ना पनकू राम राम
1: राम राम चेतमन दादा राम राम
0: अमरलीस ने
1: होय काय
0: अले आपलो आनलो आनलो मोरा गड़रा के लगी उतरा उन्हें
1: हाँ हाँ
0: दादी मन संग बल जुआर भेट करू
1: हाँ तो बस्तर के स्वर कार्यक्रम सुन तो जम मैं संगवारी मन और रामचो दादा दीदी मन सबके मैं पनकू
0: और मैं

0: मन
1: आम्ही दोन करून से
0: राम राम
1: राम राम
0: और रेडिओ सुनतो नन्नी पीला मन बले आम्ही दोन चो बाटले खूबे खूबे
1: माया
0: तो पण को
1: हाँ
0: दख मान लो मोनरा की आजी चो बल्लो ने दिन हिसाब ने आम्ही मोनरा जोडून भाते रानू रहू से
1: हाँ, दादा
0: तो वसनी ची दख आम्ही गाँव पारा ने रहू से ने
1: हाँ, हाँ।
0: और आमचो जो ने बस्तर आय नहीं
1: हाँ।
0: इथाने तो कैक प्रकार चो ना ने
1: हाँ हाँ
0: ना गीत गोबी ने खेल असनी कई प्रकार चो बल्लो ने आमचो देसी जो हिसाब ने खेल मन होय से
1: हो सत्य बल सिद्ध दादा आमचो नाचा डगा बल बरन बरन चो रहे से असनी आमचो खेल मन बल कई किस्म चो आसे
0: रहे से
1: हाँ
0: दक्षित आगे जुगे दख कितरो आमचो पारंपरिक खेल बल्लो ने नहीं दख झार बेंद्रा आय ने खो खो आय बारा डांडी आगे जो अभिनंदन रलो बेरा खेलते रहू कसन
1: हाँ सत्य बल सीत एबे तो हाजते जाए से एबे जो पीला मन उतरो नहीं जानत
0: आगे हाओ दखुनी छेरी बाग बोलते ने असी बोसुन भातेर जहन पानी बरसाए बोले कुन लग बोसुन भातेर उन गोटी मन के धरून आगे दख लेखी उन बल नानी जो चीनी गोटी खेलोत की नहीं
1: ने सत्य आय
0: बाटी आय पीला बेरा मी दख गर्मी छुट्टी होलो ने बाटी मन खेलते रहू मात्र ये बे दख ना खिंडिक नहीं पीला मन आगे से जो नाम छो पारंपरिक जो खेल मन आए नहीं
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ,
0: मन के खिंडिक भूलकते जासो
1: भूलकते जासो सत्य बल सिद्धता आगे बोलो ने आमी नहीं बाटी नाले गिली डंडा बिल्ला बोलूं से
0: हाँ,
1: गोबर डंडा बोलूं
0: गोबर
1: असन
0: डंडा
1: खेल मन के खेल तो आज खूब हरी कहूं
0: हाँ और दख आगे देखू की दख गांव पारा जो पीला झीला मनात नहीं गाय बैला बल चरोक नीले नहीं
1: हाँ,
0: संगे संगे उन भाटा थाने गाय बैला चरो चरो नहीं ई बाग खेलोत
1: हाँ सत्य बल से
0: ने
1: हाँ
0: के खो के खेलोत
1: हाँ
0: कबड्डी खेलोत असनी आमचो कितरो पारंपरिक खेल मनासे ने
1: हाँ
0: मातर आमके एबेच पीला मन के हुसन खेल मन के आमके सिखातो रहे
1: सिखातो रहे सत्य
0: ने
1: दादा हाँ
0: और सिखाऊ रलो ने काय है कि हुमन बले जान दे के आगे जुग ने कसन खेल मन आगे तो दख इतरो एबेच महा मोबाइल ने टीवी ये
1: हाँ
0: सब बानी तो नहीं रहे
1: हाँ
0: आगे गर्मी छुट्टी होले तक कोनी गच छाए ने कोन बक्चा लगे पीला झीला मन रूंडा होत ने
1: हाँ हाँ
0: और संगे संगे लेका मन लेकी मन जन बारा डांडी आए खो खो आए असन जो नाम चो पारंपरिक खेल मन के खेलो
1: हाँ सत्य बल से चेत मन दादा बोलो ने कि नहीं आगे आगे जो पीला मनात नहीं तो
0: हाँ।
1: बाहरी जो खेल के खूब खेलोत
0: खूबे खेलोत
1: एवे घर भीतरे अगर फोन के खेल तो नाले असन भी ते मन के जीत ली से एवे
0: हाँ आगे शो जहन खेल मन बोले नहीं आमचो देह पाए का जे खिंडे का नगद बल रहे
1: हाँ
0: हैं एथाने कूद तो डोगा तोर ने बारा
1: हाँ
0: डंडी खो बोलो ने थाले खिंडे का लागे से खिंडे काम के ताकत बोले
1: हाँ शरीर ने ताकत बले से
0: लागे से पसना बोले फुटून जाए ने
1: सत्य आए और
0: तो
1: असन हिसाब ने नहीं देह पाए के झपके बीमारी बल
0: नी जोटे तो सन खेल मन के आई नहीं खिंडिक ताकत भी थी खेल मन के बीच पीला झीला मन खिंडिक भूलकते जासोत
1: हाँ
0: मात्र आमच गांव पारा ने सियान सजन मन असन पीला झीला के आगे जुग जो हो तो भी थी ये जो आम जो पारंपरिक खेल मन होय से ये मन के सांग तो राय मन के बल स्किन सीखा तो राय ने
1: हाँ और उन मन के आम के लेख करुन भारी नहीं आगे बल
0: ने तो राय तो दख ये गोट के तम दादी मन के अमराउ दिलू
1: हाँ
0: मातर मोनरा ने और बल असनी नगत नगत गोटा से आले ये गोट मन के बोले सुनाओ
1: आले आले सुनो
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
5: जीएसटी परिषद कमर्शियल बिजनेस के और सरल बनाली से बस ट्रक एम्बुलेंस ऊपरे एवर एक समान 18% कर लागे दे आगे ये 28% रहे। HS कोड क्लासिफिकेशन चो गिरधा करलो बिना ऑटो पार्ट्स ऊपरे एवर एक समान 18% कर होली से ये काम ले कल पुर्जा बनातो कंपनी अरु घेंतो लोग अरु सप्लायर्स चो चीपा गुचे दे। एचई संगे कल पुर्जा चो अमरातो काम बले सरल होए दे। बिजली

0: तो रहा है उन पैसा मिरे से। फिर ऊपर ले गोठान में जसन ईटा सीमेंट ईटा बना तो काजे सांगवा उन्हीं समूह बितामन के उन समूह बितामन के ईटा चूटा पैसा बल मिर हुआ है नरेगा बाटले उन मन के कूली बल दे बात।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो ये कितलो भर कसन होली तुम जो ये स्व सहायता समूह
0: एता जुड़ून में साल एक हो थे एक एक साल होली का अंजाम।
1: अच्छा
0: एक साल हाँ
1: तो ये सर मतलब उनके कहीं प्रशिक्षण होगा सिखा तो बोल कहीं काम कर साथ होते
0: प्रशिक्षण मैं कर ले से रायपुर में करूँ ले से एवं फिर ये मन के आम चो मोसो मोसो खा ले आस होता नहीं उन मन के जमा के सिखाऊँ मैं आमी।
1: अच्छा
0: सिखाऊँ फिर उन मन समूह में तब मन के जमा के सिखाऊँ।
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो मन ये बोल सांगना कि उन मन के कहीं सरकार बांट ले जो योजना मन है
0: हाँ
1: उन मन जो लाभ अमरात का बोल कहीं काम कर सकते
0: करूँ जसन कि भी आमन मन गवर्नमेंट बांट ले पैसा मिल रहा है 15,000 फर्स्ट उना के आर एफ राशि बोलो फिर उन आज पाठ को 6 महीना होलो में 1,00,000 रुपये मिल रहा है उन पैसा ले नानी असन दुकान नाई जाले होटल काई काई बीती बन चलाऊन उन पैसा के लोन बीती के पटा तो रहा है फिर बाचलो पैसा ले फिर उन पैसा ले बढ़ बढ़ तो रहा है।
1: अच्छा
0: बढ़ दे उन मन
1: हसन तो ये जैसन की कसन तुम चो जन सांग सास तेचो बले सलाह कसन धर सो तो गांव चो किसान भाई बहन मन
0: ए बे तो मैं सांग ले बीते जमाए तो पतिया सोत और करवाच बोल सोत और कर सोत बले बे मैं इले साल भर में ये ता कम कम से कम 3 कोड़ी 5-6 एकर ले से समूह
1: समूह।
0: जी
1: अच्छा बोले तुम चो पूरा ये ब्लॉक नहीं है
0: ब्लॉक नहीं गोटो कलस्टर से पांच पंचायत दिला सोत मुके कलस्टर। अच्छा। में उन पांच पंचायत में एबे इतले उतलो कर ले छे 3 कोड़ी 10।
1: अच्छा।
0: दस एक सात है जल
1: कितलो बोले कलस्टर हिसाब में
0: कलस्टर हिसाब ले।
1: अच्छा
0: ए ब्लॉक में 5 कलस्टर आसे।
1: अच्छा
0: जी
1: ये जो स्व सहायता समूह कौन बाटले बन लिस जालना कहां ले कसन बन ली
0: ए जनपद पंचायत ले गोटो शाखा आसे एनआरएलएम।
1: अच्छा
0: एनआरएलएम मन बोलतो के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हाँ उना अंतर्गत आमचो भर्ती होली से जिला पंचायत ले।
1: अच्छा
0: उताले फिर एक चालू करता है बोलला फिर चले पूरे तो पंचायत ले रली समूह मन जसन की आंगनबाड़ी समूह मध्याह्न भोजन समूह असन बीता मन रला ए भी उसन नहीं उता तो 2 जन चला त्रोत ए भी ए मन असन नहीं जमाए 10 जन आसो तो 10 जन चला दे।
1: अच्छा तो बोले ने समूच माध्यम ने रोजगार बोले काय काय रोजगार
0: समूच माध्यम में रोजगार बोल तो के आमी फर्स्ट खिंडिक पढ़ तो लिख तो बीती लेकी होलो में 10वीं 8वीं 10वीं पढ़ लो बीती होलो में बैंक सखी बनाऊ दे।
1: अच्छा
0: उना के बैंक सखी के 1500 रुपया ना जल 2000 दे दे और गोटो बीसी सखी बनावा जो गांव में पेमेंट करे दे जैसे गोदी होली काय काय बीती पान पानी चुबल पैसा आओ ये उन्हों आए उन पैसा उताले पेमेंट उन्हें उनके पेंशन उनसन पैसा मन उताले पेमेंट कर सके दून।
1: अच्छा
0: और दूसरा केडर बनाऊ खिंडिक पोलो लिख लो बीती लेकी रोल में उन्हें कि हमी केडर बनाऊ दे सक्रिय महिला उन सक्रिय महिला का करे तो बोलते के लगे लगे जो मेहरा मन जसन समूह बन ली से 5 समूह बन ली से उन 5 समूह में सप्ताह में एक हर बहुत सत्र बैठक कराते रहे ये सप्ताह सप्ताह में बैठक करा दे उन आज का 1500 रुपये उनक दे।
1: अच्छा
0: सप्ताह में एक दिन जी।
1: अच्छा बोले ने स्व सहायता समूह बोले गांव ने लोग मन के पूरा सिखाते रहे से बोले।
0: हाँ सिखाते रहे से।
1: अच्छा
0: सिखाऊ से बोले
1: सिखा सा बोले। तो गांव चो लोग स्व सहायता समूह बनान कहीं असन रोजगार चो कहीं काम कर सो जसन सब्जी भाजी आए ने तो और
0: कर सो कर सो एबे सब्जी भाजी जमाए गोठान मन में आसे।
1: अच्छा
0: ईटा बना सो जमाए गोठान मन में पंचायत पंचायत में गोटो गोठान दिला सोत एबे आन मन उता बोगड़ी दिला कुकड़ी मन दिला सोत और ए बे तो हंसा हंसी यही तो बोल सोत बनाओगर एबे तो नी अमर लिस्ता अमरलो में पेरून बल होए दे और भाजी भाजा डारला सो ए मत जमाए के तब बेचुक बल अनुवाद भाजी भाजा के।
1: अच्छा
0: हाँ एता ए मंडिया से पटना में होता बेच सोत और उसने रोजगार ऐसा नहीं बोली उन मन के काम तो नहीं रेली से फर्स्ट एवे समूह में जुड़ लो पार्ट उतने चे मन के पुत्र काम नहीं रेली से।
1: अच्छा
0: हाँ।
1: तो बल्ले ने दखुन बात कसन रुचि धर सो जानना
0: एवे तो एक दूसरे के दखुन तो एकदम हरिक होला सो।
1: अच्छा।
0: हाँ पहले तो हम जा तो रहा खा तो रहा पी तो रहा उतली काम रही उन मन चो एवे तो कमक सीखला सो। हाँ खिंडी उन मन चो भविष्य बदल लो आसन होली से मैंने
1: बल्ले जीवन स्तर निखे परिवर्तन
0: परिवर्तन अली।

0: पनको
1: हाँ चितमन
0: दादा दख काय मजा गीत रली और गीत कुरिन के बले दादी मन पक्की चिता ला ने
1: हाँ
0: फिर बले आमी हर एक फिर सांगु दिवा आई गीत के गावला सोत गेल मनी देवी और मंचो संगवारी मन और रेची संग संगे आमचो जातो समिया होली हाँ। अले बीदा मांगो
1: तो बस्तर किशोर कार्यक्रम सुन तो सपाए गांव कारी दादा दी सियान सजन और संग जोहरिया संगवारी मन के मैं पनकू
0: और मैं चेतमन
1: हमी दोनों करूं से
0: राम
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम आम चुगांव।

0: जुहार ना पनकू जुहार
1: जुहार ना चेत मंदा दादा जुहार
0: अमरलीस ने
1: अमरले का है
0: अले मुर्रा गड़ा के ए लगे मंडा और दादी मिन संगे जुहार भेट करू
1: अले तो आमचो गांव कार्यक्रम सुन तो जमा गांव करी दादा दीदी सियान सजन सगा संग जोहरिया मन के मैं पनकू
0: और मैं चेत मन
1: आमी दोनों करूं से
0: राम राम और
1: जुहार
0: जुहार और दक अमीन अन्ननी पीला मन के कहन भूल को आने
1: नी भूल कुं का
0: है पीला मन भूल कुं दिले रिसो दे
1: समय होले हम के सुन तो कष्ट कुन रसो
0: जरा कुन रसो तो रेडियो सुन तो नन्नानी पीला मन बोले हम दोनों जो बाटले खूबे खूबे
1: माया
0: ए ना पन को
1: हो ना
0: तू ई आजकल ई गोटो गोट के दक्षिण ना जान सी
1: काय भी ठीक बोल सी ना
0: एना गांव पारा बाटे नहीं आजकल देखुन बड़े बीती डबा महा के पाटकुटी ओरौन भातिर नहीं
1: हां हां
0: ए पारा पारा नि बोलते रसो
1: हो सते बोल सी
0: ने
1: हो
0: डबा थाने कितरो जिनिस मन के हुन थाने कपड़ा लता ने बूट चप्पल असन मोबाइल असन कितरो जिनिस मन के धरू रसत ने
1: हो रामी देखो से घर घर हम रहौं देसो
0: हम घरे घरे हम रहौं देसो और नहीं गांव गांव ने बोले सब लापी दूर दूर बोल ना मैं ये बाटून बाट बोल जाए से नहीं लापी दूर दूर ने बोले डबा मन धरून भातिर पारा पारा बाटे बोल सो
1: हाँ सत्य बोल ने उन पिता मन के जान सित का
0: हाँ उन मन के तो सब लोग जान सो ची ने बोल तो गोटे आई की आमचो की आजी काली तक आगे अमी कई बार घेन तो राय बोलने नहीं शहर बाटे जाते रहलो
1: हाँ सत्य बोल
0: ने हाँ शहर जाते रहलो ए दुकान नी मिरले हुन दुकाने हुन थाने मोने नी मिरले हुन थाने ने
1: हाँ सत्य आए
0: ने बस बोले किराया लागे और बस दख समय हिसाब ने नी मिरलो ने बेरा बोले हुन जाए
1: हुन जाए सत्य बोल सी दादा
0: नहीं और दख आजकल तो ना दख मोबाइल थान ले नहीं तो पीला मन ले दख बड़े बड़े मन के बल दखे

0: मोबाइल थाले मंगाऊं देसो, चाहे तुचो कपड़ा लता हो, ने बूट हो, चप्पल हो, घड़ी हो, रेडियो हो, मोबाइल हो, आय कि नहीं
1: काई चीबल जिनिस हो,
0: काई चीओ जिनिस के मन मन छाउन थाने दक्ष होत ने, और उनके फिर मन मंगा सोत और फिर दख उनी मंगालो पाछे फिर उन सप्ताह दिन दस दिन ने हुमन चो जोन बुला तो भी तमन घरे धरुन भाती रह सोत।
1: हाँ सत्य बल से
0: तो बोल तो गोटे आय कि दख आगे गाँव पारा ने जो ने ऑनलाइन बोलू नहीं मोबाइल थान ले जोन खरीददारी बोलू ने शहर बाट चो लोग मन जानते रहला
1: है ना
0: मातर ये भी दख ना आम चो जोन गाँव पारा आए नहीं ये बोले पाटकुटी नहीं है ना
1: सत्य बल से ए तो इंटरनेट बलून से जाए
0: हाँ।
1: ये तो सपाई गांव मन ने बल अमरुक
0: मुरियाली से और मोबाइल ने दखुन भातिर मन मन के मंगा सोत
1: हाँ।
0: और तक मन ही नहीं ले नहीं फिर उनके बोहड़ा उन दे सोत
1: बोहड़ा उन दे सत्य
0: अब बोहड़ा उन दे ले उन बीता फिर उनके आनुकलाए घरे जाए से
1: हाँ।
0: तो कितरो बोलो ने नहीं है मन के सुविधा हो से ये बोलो ने घर भीतर ले मन के घेन ले आनंद दे सोत और उनके फिर मन ही नहीं ले उनके बोहड़ा उन दे लो ने नहीं फिर उनके उमन आनुकलाए सोत
1: सत्य
0: पैसा बोले नहीं देख उमन के उनथाने मोबाइल भीतर उमन चो खाता नंबर देव रथ नहीं हुन थाने अमरे से
1: हाँ सत्य आए आओ इतलो सुविधा होलो थान नहीं कौन बीता दंड उमन करे दे
0: हाँ सत्य बोली मातर ना पनकु ये देख ये तो जो ना ऑनलाइन खरीददारी बोलू से नहीं ये नंगत गोट तो आए
1: हाँ,
0: ने
1: हाँ,
0: अच्छा जिनिस मंगालो महातर दक के भी काय होय छे ठगा फारसी मावल होय छे ना
1: सत्य आए ये गोट तो सत्य आए
0: कई भी थी हम दूसर अच्छा ए नगद दख है सुनता ने फोटो दखाए से नगद जिनिस के हमी उनके मंगाऊ से मोबाइल थान ले और दख घर ही ले नहीं उनके पैसा दे उन भातिर खोल लो पाछे हूँ
1: दूसर रहे से सत्य आए
0: ने
1: हाँ।
0: असन दख ये थाने बोले नहीं जो ऑनलाइन खरीददारी ने असन एप मना से बड़े बड़े ने
1: हाँ।
0: जो नगद आए बोलो ने हुंचो खिंडी का मान आसे और हुन थाले मंगा लो उनको तो नगत ऐसे और कोनी कोनी नहीं असनी बोले मंगा उन देसो
1: हाँ,
0: ने
1: हाँ।
0: जेचो नाव पता कई चीज नहीं आए मंगा उन देसो और मंगा लो पाछे मने नहीं ले बोले हुन आपस बल नहीं होए
1: आपस नहीं होए सत्य आए
0: तक ऑनलाइन खरीददारी अच्छा तो है ना पनकू मतलब ये सब गोट के बलाम के आमी कौन थान ले आमी मंगाऊ से ने कसन थान ले मंगाऊ से जोन थान ले आमी मंगाऊ से हुन नगत आए की नू आए है कई कॉलेज दिने कई होले हुनचो आमचो पैसा आपस करे दे नहीं करे तो ये सब गोट के पहले हम के लेख पारी करते।

0: नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई GST नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह GST छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 cc तक की बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है, जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: GST काउंसिल तोरु वाणिज्यिक कारोबार तगा टैक्स तुन और वेंट सरल बना कित्तोड़। बस, ट्रक और एम्बुलेंस गाड़ी की नगा इंजे ओंडोई लेकिन 18% टैक्स की सित्तोड़ मुन्ने अद 28% मत्ता। HS कोड क्लासिफिकेशन किन परवा की वलेवा गाड़ी न सामान तपोर्रो इंजे ओंडोई 18% टैक्स की सित्तोड़। इत बुताते यू सामान पाड़नोर और सामान तच इयनोड़ा तिप्पाल कम आता और सामान तत्ता ओयन बूता सरल आयना उम्मीद मिंदे। इलेक्ट्रिक गाड़ी न पोर्रो मुन्नीटा लेकिन 8% टैक्स मंता। नेलत माटा इद मिंदे की इलेक्ट्रिक गाड़ी नगा बाताय बदलाव आयो। कोंडे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक मूंड चक्का ना गाड़ी 8% GST मोला देने दोरकिता। अदेन के और सोबेर कम टैक्स त गाड़ी बने मास मंता।
4: पन को
5: हाँ दादा
4: देख नगद नगद गोट मन क्या मिता दी मन लगे हमरा दिलु ने
5: होय ना
4: समय हिसाब ने नगद गोट मन असने गीत मन गोविंद मन असन अमी दादी मन के मोरा ने अनु रहु से और रेडियो भी तलु मन के हमरा
5: सत्य बल से
4: ने तो असनी और कई मोटा देखना टामट सित तो हुन बट
5: मच मोडरन गोट का नाटक आसे ना
4: असन ने
5: हाओ तो नाटक लिखला सो सदन सिंह नाग एक आमचो लगे हमरा सो बलवीर सिंह कच्छ अरे चो भागधरु लोग के नहीं पाछे सांग वहाँ
4: हाँ तब दादा जी मन बोले चीता होत ने कौन कौन आते हैं नाटक ने जोन भाग धर ला सोत
5: हाँ
4: आले तो आमी समय के नहीं गमाऊं और दादा जी मन लगे ये नाटक के हम रहूं दे
5: हाँ आले आले

0: कमला दीदी, घरे आसी श्री, कहाँ गेलीस?
1: ओय, ऐसे ऐसे घरे आसे। आओ आओ मन की के बेलीस
0: एबे तो
1: मास्टर इन होतो के ए बाटे एक भूलकलीस नोनी। आ आ बस
0: हाँ काय दीदी, सुरता है तो के बल्ले जाऊं दखे दे दीदी लगे बलु।
1: अच्छा कर लीस
0: कसन सपाई लोग ढंगता सुत का?
1: हाँ नोनी, सपाई लोग नंगता सुरी। तू बस नोनी बस, ये दे लक्ष्मण जो बाबा हाट बाटे जा दे।
0: हाँ
1: हाँ होनी काजे भाजी तुला तो काजे हरबर होन गेले से मैं। तू बस है।
0: हाँ।
1: मैं यही लगे भाजी के आनू तू लाइन दे। एबे होता है आशीष ने नोनी?
0: हो दीदी होता है चेसे का है? अच्छा साग के रान से दीदी
1: ओके
0: आन यही लगे आन मैं बल कर रुक लागे दे आन।
1: रोबे नोनी ए दे एबे होए दे झटपट तुला ते तुला आए दे का
0: मानतर दीदी एबे तू ही भाजी के तो आन लीस।
1: हाँ
0: काट तो काजी ने
1: ओके
0: धो तो काजी पानी जे
1: ये नोनी धोद लो नहा ले का है कोनी साग के रांधु आतरी काट तो पाछे फिर धोए दे भी जानो।
0: नहीं दीदी मैं हुनके नहीं बले री।
1: हाँ
0: काट तो पाछे तो धोचे अस्का
1: हाँ
0: मैं काट तो पहिल धो तो के बले से
1: काट तो पहिल बले भाजी के धोवात। आमी तो के बे काट तो पहिल नहीं धोलू से और पहिल धो के पाछे धो काय फेर फरक पड़े दे तनोनी रान तोर ची तो आय।
0: ए दे दीदी तू ही फेर बल से
1: हाँ
0: कि ले कि मास्टर इन होली गुनक मौके समझाए से
1: नाय नाय
0: मानतर दीदी
1: हाँ
0: काई बले ज्ञान चो गोट होलो ने उनके सांग तोर चाय मने
1: ये भाजी तुला तोर बोले ज्ञान चो गोट सना जाले सांगुन देख लो नी मैं सुनुन देखें दे।
0: हाँ दीदी एदे सुन
1: हाँ
0: भाजी ने खुबे बल बुपू गुण जिनिस मन भीतरे रहे से
1: हाँ हाँ
0: आमी जसन हुन के कार्टून पानी ने धो से उदल दाय आदो बाग उन सकत बीती जिनिस मन पानी ने जाय से
1: भोरे से ने
0: हाँ और हुनके ही नहीं आमी जसन आगे धो से काय मजा लगड़ून भाती फिर पाछे काटू से जाले हुन बल बुपू बीती जिनिस मन फोखा नी जाओ
1: हाँ हाँ
0: साग ने चित रसो
1: रहे से ने
0: हाँ
1: असनाय।
0: असनाय
1: जाले मैं एक गोट के नी जानते रहे नोनी खुबे नगद गोट के सांगलीस नोनी मानता नोनी।
0: हाँ दीदी का है
1: आमी तो दूसर साग जसन की आलू कुंदरू बांगा करेला ये सब पाए के आगे काटू से ने फिर पाछे धोऊ से
0: हाँ
1: काय ये साग मन के बले आगे धो तो रहा है फिर पाछे काट तो रहा है।
0: खुब्बे नंगत गोट के बल लीस दीदी सब पाए साग के आगे धो तो राय फिर
1: हाँ,
0: काट तो राय असन कर लो ने हुंचो भीतर चो बल बपू तो फोखा नीचे जाए
1: हाँ
0: संगे संगे और बोले गोटक फायदा आए।
1: थेब नोनी मैं पानी आने से ता है धोन तुलाते तुलाते तुझ गोट के बोले सुने दे।
0: आले आन
1: ए दे काय नोनी काली गोटक नुआ नखी घेन ले से ए थाने पानी आने से
0: आन अच्छा तो आसे आन आन
1: ए दे ए नखी तो आए।
0: हाँ
1: अबर सांग साग के आगे धो तो राय ने और दूसर फायदा का आया हुंचो।
0: ए दे दीदी दक
1: हाँ
0: ए भाजी कहा है नहाले कहा है मंडाउन रला
1: रला
0: कसन हाथे छिवला कसन नहीं बेड़ा ले निकराउन एता हुता बुला लावे कौन लगचो माटी और कौन लगचो चिखल काई जाई हो रहे आगे धो तो के हुन सब पाए निकरुन जाए से
1: जाए रे पे
0: कसम
1: हाँ
0: कार्टून भाती धोलो ने हुत्रो सफाई कहाँ ले निकरे दे कसम दीदी तू इच विचार कर और सा
1: हाँ नोनी सत्य बोल सी नोनी तू
0: और नहीं दीदी
1: हाँ
0: कोनी कोनी बेड़ा ने दवाई बले छितु रसो
1: छीत सोत का है?
0: हाँ हाँ बेड़ा ले आनून बीक सोत उदल दा एक के हार काट लो ने साग ऊपरे पड़ लो दवाई बले तो एक के हार नी निकरे
1: हाँ तू सत्य बोल सी नोनी अदा मैं कहीं ची साग हो आगे धोएं दे पाचे फिर काटें दी।
0: हाँ। ए दीदी तू चो पारा चो दुई चार झन मेहरार मन के मनुख मन के संज बेरा खंडी हाँक दे से
1: काय काजे
0: मैं असनी गोट मन के नहीं सांगू ऐ दे।
1: हाँ अच्छा गोट सांगलिस नोनी
0: आले। हाँ, तेबे हाँ। एबे मैं जाए से
1: पानी बोले तो पीतीस नोनी
0: काय नहीं हो दीदी पाछे के तो ऐन दे चे।
1: हाँ, हाँ।
0: तेबे पिए दे
1: ऐसे नोनी। हाँ ऐसे ऐसे।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: हाँ।

0: buat.
1: Ha.
0: Kosong. Janas.
1: Janun.
2: Kosong.
3: Kosong ayal ni.
0: Hunasan. Hunke mai sangge se.
1: Ha.
0: Ami sa kaatu se nahi. Paache to dhou se. Hai? हुन्ने साग चो बल्ब फुबीति जिनिस मन पानी ने बहुरुन जाए से हुनी का जे आगे साग के धो तो राय मने पाछे काट तो राय ए गोट के आजी मके मन की नो निसांग ली
4: अच्छा गोट
1: हाँ नोनी आमी जाले असन नी जानुरलू जाले असन नानी सुनी गोट मन के सांग काई
0: एदे मन किसान
5: एदे सुन बड़े आया
1: हाँ।
5: और सपा सुना
1: हाँ।
5: कमला दीदी तो गोटक गोट के समझ ली
0: हाँ।
5: असनी आमी सपा के समझुक लागे दे
1: हाँ। हो काय नोनी अल समझाओ काय
5: देखा ए तो रहे साग काट तोर गोट
0: हाँ।
5: अदाए भात चो गोट के बले सांगुन दे
0: भात चो गोट के बले सांगु
5: हाँ।
0: हाँ।
5: भात रांदू से आमी
0: हाँ।
5: हुन के पसिया गारू से
0: हाँ।
5: हुन्ने बले हुताचो बल बुपू जिनिस फोखा जाए से
0: हाँ।
5: यही काजे पसिया नी गारून हुनके असनी आटा तोरा हाँ
1: उन चुआ भात बोलू आजे उसने बीतिया
5: हो बड़े आया
1: आगे जुग ने तो रानते रला
5: हुन्ने बले देहे के आगर सकत मीरे से
1: हाँ।
0: हो तो काजे तो रोज जे दिना चो गोट है नोनी मानतर असन बले आए ने
5: हाँ दीदी हाँ एबे और सुनाता
1: और रास्ता मने
0: आले आले सांग ते बे
5: राना बाड़ा करू से हाथ तो बले साफ सफाई रतर चे आए कसन मानतर दखा आमी काके ही बले देतो काजे पानी निकराऊं से कसन निकराऊं से काय ने निकराऊं से
0: फिर गिलास ने नहले
1: नाले उन कसन ने ढबक कनाए बुढ़ाऊं से कसन
0: उसके कसन लाने
1: हो
0: सुस्कत
5: हाँ हाँ उनके ही तो जानुक लागे से दीदी हैं गोटक बेला नहाले गोटक मगा महा नहाले डांडी बीती डूमनी कसला मेरे से
1: हाँ।
5: सुन ला उनके
1: हाँ।
5: केवे ही बले पानी निकरा तोर काजे
0: डूम तो राय बोले
5: डूम तो
0: हाँ।
5: सुन ला
0: हाँ।
5: असन कर लो ने हुन पानी ने हाथ चोबरी नहीं होए डुबुक करते
1: हो सत्ते पल्लीस भाई
5: और पानी बले छुक छुक का रहे से
1: हाँ।
5: और पियो तो लोग मन के बले छुक छुक का पानी नहीं रहे से
1: सत्ते सांग दी आश्चर्य तो आज ने
2: मानता रतुई पक्की गोट के सांग लीस नोनी एदाय हार गेलो ने मैं बोले डांडी बीती कसला आने देना
6: ओय मैं बोले आने देना मान तो और गोट गोट तो आए
5: काय गोट है
0: काय गोट है
6: ये दे ये बे स्वच्छ भारत अभियान चले से जे
5: हुन
6: ने सफाई के सांग सोत साफ सफाई रहा घर द्वार के नीको संगावा गांव खोर के नीको संगावा झाड़ा खोली बनावा बाहरे बाटे झाड़ा नी जा बोलून झाड़ा खोली ने जा बोल सो ने ये सफाई तो नंगत गोट है मानतर साफ सफाई बोले सफाई बाटे लागे से रांदा सार ने बोले साफ सफाई लागे से ये गोट के जाले मन की नौनी सांगली मके मन के भावली
0: मास्टर नी होली
2: होय ना बोंडका मन की नोनी मास्टरिन बनून बाती खुबे ज्ञान चो गोट के सीख ली समझ ली ना और आम के बोले सिखाए से कितलो नंगत गोट आए ना आले ए कमला इलो लोग मन का जे एक खिंडिक चाह हो लेने अच्छा नहीं होती
0: चाह का जे बल ले का मानतर आजी मन की चो मन कर लो गुड़ बना के तो पीऊं देखा
1: आलो आलो बना बना अच्छा बना लिसनोनी
0: आले पिया
5: अच्छा होली दीदी
0: हाँ।
5: देह पाए काजे असनी नंगत सीतर जिनिस मन तो नंगत रहे से
0: हाँ।
5: आले सपाए के मैं वाले बाटुक लागे से आले आना
1: तू ही बस नोनी आमी डोकरी लोग देव को लागूं दे तू ही तो आम चो मास्टर नी आसकाय आम के नंगत ज्ञान के सिखाईसी तू ही बस आमी बाटूं दे
0: मैं बाटे से बस
5: आले बड़े आया आले

0: पण कु
1: होय दादा
0: दख नाही काय म्हणजे अजून चोर आहे नाही नाटक
1: हो हो
0: बोलून तर घेता नाही कितरो ज्ञान चो गो ठरली ने
1: हो हो
0: नाटक भित्रे कविता भित्रे कहानी भित्रे बोले हम दादी मन के काही नल काही असं सोर चो गोट मन के अमराते रहू से
1: हो
0: तो पण आहे तू बोलते रहलीस ना दख दादी मन के जोन लिखलो भैया सदन सिंह नाग और आमचे लगंबो रोत बलबीर सिंह कच महातरे थाने भाग धरल भाई मन नाव के पाछे सांगू हा बदली
1: हो तो मैं सांगू दे
0: आले आले
1: ए श्री विक्रम कुमार सोनी श्री रमझम कच श्रीमती लक्ष्मी मंडल भूमिका दास निषाद और सुश्री सरस्वती रायकवाल
0: हाँ तो दखित्रो दादी मन थाने काय मंजा सोर नाटक ने भाग धर रोत ने
1: हाँ
0: तो दखना ये तो होली मात्र दख नाटक संग संगे नहीं गीत होलो ने फिर तो निसांग ना खिंडी
1: सत्य बल चितना गीत होले काय मन के खिंडी नंगत लागती
0: लागे से दख मन के अस्थिर लागे से और कई असन दुख कष्ट बोले रलोन नहीं खिंडी कबूता भय न कर लो दुखा पाका बोले खिंडी गीत सुन सुन परौन जाए
1: हाँ सत्य बल सी दादा
0: तो आले आन लो गीत के दादी मन लगे अमराउन देऊ फिर गीत कुरिया चो नाव के पाछे सांगवा
1: आले आले सुनो ता आगे

0: तो पनकु
1: चेत मन दादा
0: देख काय मजा आई गीत रली ने
1: हो
0: और गीत कुरिया के तो दादी मन पक्की चिताला ना
1: चिताला हो तिमान तर आम्ही सांगू देऊ ये मनात शिवराम नागावरूंचो संगवारी मन
0: तो देख कितरो ये आया छ सुमर ना गीत रली ने असनी देख ना गीत सुनते रलो नहीं मन हरिक लागे से ने दुखा पाका बल पराय से और देख आजकल तो भर बूता भयना छ समय आए ना दादी मन बोले देख अपलो बेड़ा खड़ा ने रोपा रोपी के मन कर सोत ने
1: हाँ हाँ सत्य
0: तो रोपा कर तो राय बोले तो दिन भर लागे से ना बेड़ा बाटे आई के नहीं
1: हाँ सत्य बोल सी गुलाय हाथ पाए दुखा
0: दुखा रस रसा लागे से ना हिरी छोलून छोलून नांगर जोतून जोतून ने
1: हाँ।
0: तो गीत सुना दिलन तो दादी मन बोल खेडी खरी खोसत
1: होसत सत्य आए
0: तो वाले तो ये जो मोड़ा नाल लो दूसर गीत के बोला दादी लगो अमराव दियो फिर नाव के आम्ही पाछे सांगू
1: वाले

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम आम चुगांव, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम नानोली में लीजिए सुनिए हरमाराम कश्यप और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

0: लोक गीतों के कार्यक्रम नानोली में अभी आप सुन रहे थे हड़माराम कश्यप और साथियों के गाए गोंडी लोक गीत।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट।

0: द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
0: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम पीला मन का जिगोट। प्रस्तुति है मीनेश पानीग्राही की।

पिलामन का जे गोठ कार्यक्रम ने सफाय पिलामन के खूबे खूबे मया आरु लाड़। पिलामन दखा ये कार्यक्रम ने तुमचो का जे खूबे नगत नगत कार्यक्रम मन के आंतर उवाट करलू से। असन तो सफाय पिलामन स्कूल ने जाऊन कई एक बरंचो ज्ञान ध्यान चो गोठ के शिक्षास। असने पिलामन चो गोठ कार्यक्रम ने तुमचो का जे रोजे दिना ज्ञान चो बाढ़ती काजे तीज तिहार संस्कृति शिक्षाविद महापुरुष कवि लेखक क्रांतिकारी असने मंचो गोट के धरुन एवं से। पिलामन आमचो देश भारत देश आए और आमचो देश कृषि प्रधान देश आए। आजादी चो पहिल आमचो देश के मुगल मन गुलाम बनाला, फिर अंग्रेज मन गुलाम बनाला। ये मन संगे लड़तो काजे आमचो देश ने बड़े बड़े क्रांतिकारी होला और देश चो आजादी काजे लड़ला। हुसने गोटक माने आमचो देश चो स्वतंत्रता संग्राम काजे लड़ाई करला। ये मनात पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 ने जेबे भारत के आज़ादी मिरली माने भारत के स्वतंत्रता मिरली तेबे पंडित जवाहरलाल नेहरू आमचो भारत देश चो पहिल प्रधानमंत्री बनला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जन्म 14 नवंबर 1889 ने कश्मीरी पंडित परिवार ने इलाहाबाद नावचो शहर ने होली जेके आमी प्रयागराज बले बलो से। पंडित जवाहरलाल नेहरू पिलामन संगे मया खूबे रहे। एक आजे पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जन्मदिन के आमचो भारत देश ने बाल दिवस रूप ने बनाऊ से। एमन पिलामन के गुलाब चो फूल मानोत। एक आजे पिलामन एमन के चाचा नेहरू वाले बलोत और एमन चो पिलामन संगे मया होतो के चाचा नेहरू नाव ले वाले जानतोर होए से। एमन चो बाबा चो नाव बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू और आया चो नाव स्वरूप रानी रहे। एमन चो पहिल मूर पढ़ाई घर ले होली और हाई स्कूल चो पढ़ाई काजे इंग्लैंड गेला। होता जाऊन कैम्ब्रिज चो ट्रिनिट विश्वविद्यालय ले स्नातक चो पढ़ाई करला और लंदन चो इनर टेम्पल ने बैरिस्टर बनला। हेरो और कैम्ब्रिज ने पढ़ाई करतो के एमन के 1912 ने बार एट ला चो उपाधि भले मेरली। भारतीय स्वतंत्रता चो लड़ाई ने महात्मा गांधी चो दखलो बाट ने हिंडला और सत्य और अहिंसा चो बाट ने रेंगुन भारत चो स्वतंत्रता संग्राम ने भाग धरला। ये मन चो और बोले नगट गोठमन के मैं आने दे तो सुनो गोटो गीत के।

पिलामन 1920 ने प्रतापगढ़ चो पहल किसान मोर्चा के संगठित करला, बल्लो ने संगठन बनाला। 1928 ने लखनऊ ने साइमन कमीशन चो विरोध ने घायल होला और 1930 ने नमक आंदोलन ने यमन के गिरफ्तार करला। 1935 ने अल्मोड़ा जेल ने रोन भाती यमन गोटोक आत्मकथा लिखला। यमन स्वतंत्रता संग्राम ने नवहार जेल गेला। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व चो कई देश ने बले बोलला, तेवे यमन चो पहचान अंतर्राष्ट्रीय नायक रूप ने बले होली। भारत चो स्वतंत्रता संग्राम चो लड़ाई ने कई खार जेल गेला और जेल ने रोन भारत की खोज नाव चो पुस्तक बले लिखला। स्वतंत्र भारत चो पहल प्रधानमंत्री चो रूप ने यमन चो उद्घाटन भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी आजी बले लोग मन के भाई से। यमन चो लाफी चो सोच वाट ने भारत ने कई शैक्षणिक तकनीकी और चिकित्सा संस्थान मंचो स्थापना होली। 1942 ने भारत छोड़ो आंदोलन करते करते यमन के गिरफ्तार करला और 1945 ने छाड़ला। चाचा नेहरू आपलो जीवना ने पंचशील चो सिद्धांत ने जीवला और 1954 ने यमन के भारत रत्न सम्मान बले मेरले। 15 अगस्त 1947 के भारत देश के जेबे आज़ादी मेरली, प्रधानमंत्री पद काजे वोट होली। वोट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी के खूबे वोट मेरली। मांतर महात्मा गांधी चो बलतोर के दोनों माने बल्लो ने सरदार भाई पटेल और आचार्य कृपलानी नाव वापस धरला और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत चो पहल प्रधानमंत्री बनला और चार हार देश चो प्रधानमंत्री रला। 27 मई 1964 के यमन चो मरनी होली, तेवे तक यमन पद ने रला। पंडित जवाहरलाल नेहरू चो जीवना ने लोकतांत्रिक परंपरा के मजबूत करतोर, आम चो राष्ट्र और संविधान चो धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बनाउन संगातोर, अलग अलग योजना ले भारत चो आर्थिक व्यवस्था के मजबूत करतोर, ये मंचो मूल उद्देश्य रली। संगे संगे शिक्षा और उद्योग के बढ़ावा देतोर बले ये मंचो मूल उद्देश्य रली। पिलामन असने कई महापुरुष मन रला जोन आमचो देश चो आजादी काजे कितरो मुश्किल ने लड़ाई करला और आजी आमचो देश स्वतंत्र होली। आजी आमी सफाय लोग हरी कुदिम ने रहू से, काय रसिया जीवना की जीवू से, कमाऊ नगत खाऊं से। असने पिलामन तुमके बले नगत नगत पढ़ाई करतो रहे, ये महापुरुष मंचो सत्य और अहिंसा चो बांटने आम के हिणतो रहे, अडरा काम के नी करतो रहे, हिंसा चो बांटने नी रेंगतो रहे, नगत माने बनून देश चो बाढ़ती काजे काम करतो रहे। आजी मैं इतरी गोट के सांगुन विदा धरे से, जातो पूरे जमाए पिलामन के मचो बाटले खूबे खूबे मया और लाड़।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पीला मन का जिगोट। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे मीनेश पानीग्राही। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा

0: और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दो वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब

0: के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने

0: पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9.

0: जीवना चुसोर आज चो ये कार्यक्रम ने मैं महिला स्वसहायता समूह बोले ने पंचवटी महिला स्वसहायता समूह ग्राम पंचायत मंगनार चो महिला अध्यक्ष दीदी संग गोट बात करें से आले सुन और जानू एमन स्वसहायता समूह बनान बाती कसन उन्ती बाढ़ती कर सो।
1: चल दीदी सब लिया तो नाम और गांव नाम सांग।
2: मर नाव श्रीमती गोमती कश्यप है। मर गाँव नाव ग्राम पंचायत मंगनार है। समूह नाव पंचवटी महिला स्व सहायता समूह है।
1: अच्छा।
2: समूह में अध्यक्ष है।
1: अच्छा तो गोमती कश्यप दक तुम्हार समूह ने बोलो कतक लोग
2: अमर समूह ने दस जन।
1: अच्छा कतक बरकस नोला ये समूह बनाला
2: अमर समूह ने जुड़ला 2016
1: ने। हाँ। अच्छा तो बल्ले ने सबले पहल बल्ले ने समूह बनाए बाका जी तुमके बल्ले ने काय काय करके लागले जाले
2: आम के पहले गोठिया बाटर दीदी मन गलाय।
1: हाँ।
2: तो दीदी तु समूह जुड़ लिया बोलक नहीं आमी ना जुड़ लो आचे कमता कमता आयाले बोलो आमी।
1: हाँ।
2: तो नहीं दीदी समूह ने जुड़ ले खूब फायदा हुआ है तो समूह ने जुड़ ले है चाय एवे तुमके आधार कार्ड फोटो कापी लागू आये बोलते बल लाए।
1: अच्छा हाँ तो बोले ने आगे तुम के कहीं पैसा वगैरह बोले इकट्ठा करके पढ़ लिखा
2: पहले ना लागे आम के तो जड़ आम समूह ने जुड़वा के 10-10 रुपया आमी बचत कर लू।
1: अच्छा
2: बचत कर लू और बैंक ने खाता खुलाए लू और आयता 10-10 रुपया पैसा के आमी जमा कर दे।
1: अच्छा हाँ तो फिर कहीं सरकार बाटले बोले पैसा तुम के मिलला के
2: सरकार बाटले आम के आरे पैसा मिलला 15,000 अनुदान CIF राशि बलवात आई मिलला 60,000 और 2017 ने आम के पहले 1,00,000 रुपया मिलला।
1: अच्छा
2: तो हाई पैसा कानी करी हम 10 दीदी बांटलू और 10 दीदी पठायलू पठाते आवरी मिलला आवरी पठायलू आवरी मिलला आवरी पठायलू एबे पेर 2,00,000 रुपया निकलायलू।
1: अच्छा तो सबले पहले तुम काय काम के मूर करला साले
2: सबले पहले आमी गोबर खरीदी होला।
1: अच्छा गोबर खरीदी।
2: अच्छा गोठान ने मंगनार गोठान होला तो गोबर खरीदी पंचवटी समूर नाव ने गोबर खरीदी होला।
1: अच्छा तो फिर गोबर के फिर
2: आमी और मी बेड बोलवा ताई तान गोबर गेनी आनलू और मी बेड ने भरलू परत और केचुआ मिरला कृषि विभाग ले 5 किलो केचुआ मिरला।
1: अच्छा
2: आई केचुआ पर हम गोबर ने चाड़लू पानी चिड़कू खाद बनाए ते जाए फिर केचुआ मन खाद बनाए गले ताकि ऊपर निकराते जाऊँ आमी।
1: अच्छा
2: आई कत के पर छन्नी कर के सोंगा जाऊँ तो कोनी पर आर्डर कर ले बोला कत के आमी बिकू।
1: अच्छा
2: 10 रुपया किलो
1: 10 रुपया किलो
2: 10 रुपया किलो ने हम बिकू आऊँ तो हमके 3 रुपया 85 पैसा शुद्ध लाभ मिलवाए।
1: अच्छा

0: टर नाड़ लगाला तो लाइट आचे रूम मन आचे सब कुछ आचे।
1: अच्छा
0: का खाइर कमी नहीं आया
1: कहीं कमी नहीं है। अच्छा तो हाँ तान जैसे की लाइट जो बिल वगैरह पैसा वगैरह तुम खुद पटा हुआ कि सरकार
0: सचिव पटा हुआ है
1: सचिव पटा हुआ है। अच्छा बोले तुम चुपाट ले पैसा देव पड़े कि हाँ
0: नहीं सचिव देवाए।
1: अच्छा सचिव
0: गोठान समिति खाता आचे तो हाँ तान ले पैसा आए माइनस करो और पठा हुआ है।
1: अच्छा बोले कहीं चीज तकलीफ
0: नहीं आया
1: पूरा
0: सुविधा है।
1: तो आल दीदी तू इतलो अच्छा बोले तू चो गोटान जो समूह ने बोलून बाती इतलो अच्छा बोले सपाय महिला मन इकट्ठा होन बाती काम कर सास ये चुल का है कि घर परिवार चो उदीम होती अरे बाट तुम बाटे कोनी बाट गेले ने बोले ने तुमके झिझक बल मिटली डर बल मिटली है कि नहीं। हाँ हाँ तो इतलो अच्छा तू गोट के सांगली साल खूब खूब जुआर
0: जुआर।

0: जीवना चुसूर कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। इसमें पंचवटी महिला स्व सहायता समूह मंगनार के अध्यक्ष गोमती कश्यप से बातचीत कर रहे थे बलबीर सिंह कच्छ।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
7: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
8: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भेंट घाट। इसमें सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक श्री बलदेव मौर्य से भेंट कर रहे हैं बलबीर सिंह कच्छ।
9: सुन तो भाई बहन मन, ये समयाने बल्ले ने कई कसन काम मन होते रहे से, जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता मन बोले कई काम कर सो, और बोले जो शिक्षित व्यक्ति मनात उनमन बोले समाज चो उनते बढ़ती काजे बोले काम कर सो, तो यही सब गो

0: बात बल्ले ने कहा है कि ये समयाने कई बल काम के कर लेने आमचो जीवना ने उन्नति बाढ़ती करतो काजे बल्ले नंगत रहे से जसन के आमी बलों से कि बतर चुकली बल्ले ने आमी कितली बल्ले कई बल काम कर लू बल्ले ने हुन दखा नहीं दे बल्कि घाटा हो सके ये बतर चो बल्ले गोटोक महत्व है से जे कि आमी समय बोलुक सकूँ। ये सब गोड बात आमी करूँ दे श्री बलदेव मौर्य एवं सर्व आदिवासी समाज संभागी स्तरचु संरक्षक हाथ। तो बलदेव मौर्य दादा सबले पहले तो मैं आज ही चु कार्यक्रम ने तुमके खूबे खूबे जुहार करें से और जैसन की पूछूक चाहे से कि बल्ले ने आमचो बस्तर संभाग चु उन्ती बाढ़ती काजे बोलो भी तुम्हें सर्व आदिवासी समाज ले जुड़ला सास संरक्षक आस और कई काम बल कर सास। तो मैं बोलते रहे कि ये सब उन्ती बाढ़ती चु काम के बल्ले ने पूरे नेतो काजे लोक के जना तो काजे बल्ले ने कर सा जाल
1: सबके सेवा जोहार। पहले मैं ये बने से सेवा जोहार बोलते भी थी हमन जन्म धरलू से सेवा कर तो काजे
0: सेवा कर तो काजे
1: माए बाप चो सेवा पीला पिचका चो सेवा बायले पीला चो सेवा समाज चो सेवा और खेती बाड़ी वाले सेवा तेवे हम चो समाज बाटले एक सेवा जुहार बोलतु भी थी गोटा है नी। तो कहने का मतलब ये है हमन नहीं समाज बाटले पूरा संभाग स्तरे में कार्यशाला लगू से कि हमन मंचो रूढ़ी प्रथा खासकर हम चो जीवना खावना कंप्लीटली रूढ़ी प्रथा में टिकली से कोनिज बेले कहीं करतरोलो ने हमी पितर डुमा के सुरता करू से देवी देवता के सुरता करू से हुंचो नहाल और हमचो आगे एक कदम बले बड़ूक नि सकू
0: नि सकू
1: है कि नहीं
0: हाँ।
1: चाहे हुन धान बुन तो बेरा हो चाहे बियासी मुन तो बेरा बियासी मार तो बेरा हो
0: हाँ।
1: ये हमन मन के नी रूढ़ी प्रथा में उनके पूजा पष्टंग हमचो गांव चो माता माउली मन के सुरथा करुण बाती हमें बुझान बाती मन ये सब काम मन के मुरियावा हूं चो आगे कोनी हम चो लोग मन नी मुरियावत तो बात ये आए ये बे बतर ये तुमन बोललास कि बतर है कि नहीं हम चो बतर बोलते भी थी हम चो समाज ने हम चो संभाग में बतर चुकली ने फिर सब चुकुआ
0: चुकुआ
1: है नी। तो ये बात आए कि बतर हिली से कि सेमी कुंडा लगा तो बाड़ी मन में आप लोग जीवना खावना का चाहिए भी लगा लिए बतर ने लगा ले तो ते भी थोड़ा आगे मेरे दे
0: मेरे दे
1: और बतर ने हम जोन बोले हम चो लोग मन कहीं लगा हुआ कहीं पौधा उधा बल लगा हुआ हुन पौधा मन पर लगाओ ये भी शासन बाटले बल्ले फ्री ने बूटा मन देस होत आपलान आपलान जसन जसन जगह मन ने आसत होता होता लगाओ तो ये चीज हमने ये सरकार तो करे से लेकिन हम जो पारंपरिक हिसाब ने आगत ले ये सब चीज मन आसे
0: आसे
1: हाँ जसन की ये गोटुक में गोटुक कहानी असन सांगे से हमन में ही हुदल मरका पंडुम बोलवा गोंडी में हम जो बाटले आमा नवा है नी
0: हाँ।
1: उनके जब तक गुटली नहाल और हम चो लोग मन निखावत हुंचो पाटकृति एक मतलब आसे हुन गुटली होलो में हुनके चांद दे और खा दे और हुन बीचा के बाट बाट पका दे तेबे नोआ बूटा करे दे बुना आम बूटा करे दे हुन मतलब बले आए हाँ हुंचो पहले खातोर हमचो समाज में ये नियम नी आए उसनी प्रकार चो एबे खेती बाड़ी चो बोलतो नहीं साहब ने एबे नया नया तरीका मन सरकार बटले बले इली से और हम चो लोग मन बोले खिंडिक नहीं हम गांव गोड़ान बल जाऊं से दुखू से खिंडिक खेती बाड़ी च बले खिंडिक अलग ही हिसाब ने करसोत जो खिंडिक कमालों में जुगे फायदा हो
0: वैज्ञानिक बोल सो
1: वैज्ञानिक पद्धति ने बल करसोत और अपलान अपलान बल वाट लगा सो तुन मन सरकार च बले वाट आसे और हुन मन च खुद च बल वाट आसे ये भी जसन जोंदरा बल लगा सो है नी ये भी लेकिन एक बात आए समय के दखुन दखुन हम चो लोग बोले चेंज हो सोत कसन चेंज हो सोत कौन तान कूपे पैसा मिले से ना है नी हुन भी तीक लगाऊ कौन भी तीन मेहनत कम लागे से हुन हिसाब ने आजकल नहीं जोंदरा ने खूब क्या मेहनत कम लागे से धान बाटे बोले खिंडी के कम जासो खिंडी के भी असन असन समय ऐसे कि धान और ये जोंदरा

0: बराबर का आयत का नहीं हो जोन बोले चीज आसे समस्या उनके मुकाबला कर तो काजे हमके तैयार रहते रहे चाहे वो खेती बाड़ी में हो चाहे और कोई दूसरा समस्या हो हार नहीं मानते रहे के भाई हाँ सबसे बड़ी बात तो ये कि हार नहीं मानते रहे कर तो रची आए तेबे हुन जांगर वाले अच्छा रहे दे काम धंधा वाले अच्छा रहे दे
1: हाँ।
0: है कि नहीं
1: हाँ
0: कसन बल्लो ने काम नहीं कर लो ने जांगर ठीक ही नहीं रहे उन बीमार पड़े दे
1: पड़े दे
0: फिर अस्पताल जाओ पड़े दे और हम चुगुनिया लग बल जाओ पड़े दे
1: हाँ।
0: अब हम चलोग मन ये सर्दी खांसी होलो ने हम चलोग मन ये ना सिंगस आए उन ठीक ही आए उन बात तो हवा पानी मतलब सिंगस ही बल तो बीती है गोट आए अब सरकारी बिताब ने मौसम चेंज होली असन बोलून बोलसो है कि नहीं हम चो गोटने उनके हम असन बोलूं से सरकारी ही गोटने के असन बोलसो है कि नहीं तो ये लेकिन एक समस्या खूब है ऐसे हम चो लोग मन रोपा बाट तो जा सो उनने फायदा बोले आसे फायदा का आया से कि एक हर रोपा लगा लेन हो ऐसे कितली हो एक बार कर लो ने हो ऐसे और बुन लो बीती हो ने दुई बार करूक पड़े से बियासी मारूक पड़े से बुनो को पड़े से निंदाई करूक पड़े से खर्चा ज्यादा लागे से लेकिन खर्चा तो लागे से मैं बोले गांव गांव लोग मन के मैं गोटो का सलाह दे से कसन बोल लो ने नहीं आजकल महंगाई खूब होली महंगाई इतलो ज्यादा होली से कि नानी किसान मन भूती दे तो काचे भूती दे तो काचे पैसा दे तो काचे बड़ा मुश्किल मोचो गोटो के सलाह है हम चो पुरखा पार्टी ने रूढ़ी प्रथा में चलते रहे गांव गांव ने ये ना गांव चो काम निसर लो नालो दूसर गांव में जाऊं नहीं
1: नहीं जाऊं
0: गोटक एक गांव गांव चो हर गांव चो लोग मैंने एक बैठक करा है कि नहीं और निर्धारित करा हम चो गांव ने कितलो भूती हो दे गोटक आदमी पूछे है कि नहीं और सरलोन बोल ले फिर दूसर गांव में जहा नागर

0: संचल बोरुन बाती आने से
1: है।
0: अब हुन बोरुन बीता आने तो नानी बीता काय करूँगा
1: काय करूँ
0: तो हुन कारण ने बने से गांव गांव ने गोटक बैठक करा ये ना हम चे गांव ने इतलो भूती रहो हम चे गांव ने सरलो ने दूसर गांव बीते जाए सर दूसर गांव ने अगर ने जाओ
1: जाओ
0: हुन चुका छाम चे मनानी है असन गोटक गोटक निर्णय धरा ये मचो बाटले एकदम प्रार्थना करूं बाती मैं स्मर मन के सांगे से गांव बिता मन एक ही समझो नहीं ये सही है कि
1: नहीं नहीं सही है, है? बिल्कुल सही है
0: आओ। अच्छा आजकल काम बुता तो ये भी तो भरमार होली से फुर्सत नहीं है कौन चिंता कोनी कुता ने बेड़ा के की चिंता से कहीं कई को चिंता से अभी गोटक फेर और गोटक चिंता से लिखाई पढ़ाई चो पीला मन खून मन बोल के तो खूब पढ़े
1: दे
0: नन नन पीला मन आसोत उनके पढ़ो के लिए भेजू कसन बल्ले नहीं यही एक शिक्षा जो आए उन आदमी मर तो दम तक के रहुआ
1: रहुआ
0: और बाकी कोनी नहीं रहत है
1: सही
0: माए बाप बल नहीं रहत भाई बन मन ले हम तो सेवा करते रहे माए इमन के सेवा करते रहे ये एक बात और मैं सांगे

0: ये चीज की खिंडी समझा महाप्रु।
1: हाँ
0: ये कसन कोनी कोनी लोग मन आसन भाई कसन बीती आए ना सेवा जुआर। सेवा जुआर मतलब यही आए, हम ही पैदा होलो से सेवा कर तो
1: सेवा कर जे
0: गुड़ी पीढ़ी चो सेवा माए बाप चो
1: सेवा।
0: सेवा
1: हाँ
0: ये के मैं इताय सांगे से
1: नहीं नहीं बलदेव दादा ये तो अच्छा गोट के सांग लास मंत्र तुम चो संग गोट बात तो करवा ची मंत्र ये मंजी के खिंडिक में बदलून बाती बोले तुम चो जन खिंडिक पढ़ाई लिखाई चो बोले गोट पूछे दे कि तुम चो जन्म कौन गांव होली कसन पढ़ा लिखा कर लास इतलो दिन ले बोले काय काय तुम चो काम बुता रली जाले।
0: अच्छा गोट के पूछ लास सांग तो काज मके आही कि ने आंसू निकर लो असन लागे से। हमी मैं मोरठ पाल चो आए मोरट पाल चो जिमिया रहे हम चो पुरखा पार्टी ने हुंता ने हम चो कम से कम 100 एकड़ जमीन रली। 100 एकड़ जमीन रली हम चो दादी मन चो सांग थो हिसाब ने अंग्रेज बेरा लगान नी दिले खूब दंड देवत मने। तो हुन हिसाब ने उदल दाए रानी चो राज रहे मने प्रफुल्ल कुमारी चो राज रहे अकाल पड़ली खूब।
1: अच्छा
0: खूब मच बाप दादा चो कहानी सांगिस्ता मैं। हम चो बाप मन हम चो दादी मन हम चो बाप मन के नान नान रहोत मने उनकी जीव तो खाओ तो काचे अकाल पड़ते को पूरा हम चो बस्तर में पूरा जंगल जंगल गांव बाट बुलुक लग गेला। कुदल रहे पट्ठा परछा के हम चो दादी मन गोटोक और घरे दे दिले के संगौरा हो पीला मन के पोसुक न्याय से असन बोलून बाती हुन मन जी घरे दिला। हुन चो बाद में हुन तान ले कितलो दिन चो बाद में कि 6 महीना साल भर चो बाद में फिर वापस सीला। तुदल ना इतलो सत विश्वास रे एक दूसरे चुप रे हाले कालिक बल धर्मा परान दिन के बल कागज धर्मा कहाँ पर आयिस्ता। असनी बोलून बोलून बोलून बोलून हम चो आई दादी मन मरून गेला हम चो बाप मन नान नान रहो हुन मन के सांगला असन असन है बाबू तुम चो जमीन बाड़ी होता आसे पूछला हुन मन पूछ तो के ये मन बोले हाले ठीक है दे देव जान खिंडी बाड़ू था। तो ये असन करुण बाती हम चो माए बाप मन जीवना करला और हमन खूब गरीब परिस्थिति में जीवना कर लू हामी। हमन ये गवर्नमेंट सरकार बाटले हॉस्टल सब्सिडी नहीं होती नहीं हमन मन पढ़ुक लिखुक नहीं सकते हामी मन लेंगुटी पिंधुन बात स्कूल जाऊं उदल दाए न चप्पल नहीं न हाफ पेंट नहीं न कहीं नहीं। असन करुण करुण मैं गरीबी स्थिति में खिंडी सोकार लेका मन संगे संगे संगे जाऊन जाऊन बाती हुन मन के दुखुन दुखुन मैं पोड़ लाए गेले। गांव ने पोड़ बाती मैं बस्तर गेले बस्तर हुतान ले पोड़ बाती फिर मैं 8वीं तक पढ़ ले हुता। हुंचे बाद में मैं आईटीआई गेले आईटीआई में मैं खूब ही अच्छा परसेंटेज में पास होले फिर मके पोड़ भावली मैं फिर पोड़ मुरियाले दंतेवाड़ में पोड़ मुरियाले हुताने हुतान ले 11 तक के मैं पढ़ून बाती फिर बाद में मैं फेल हो तो के बाद में मके उदल दा एडवर्टाइजमेंट निकली आईटीआई पास बीता मन के बैला डीलान में धरोसो।
1: अच्छा
0: तो मैं हुता गेले यार हुनता ने जाहुन बाती मैं इथलो अवनी अपने आप के बराई करत भी थी गोटा ये आओ। तो हम ही हुनता ने खूब मैं 40 साल असन काम कर ले मैं मक पता नहीं चली कि मैं नौकरी कर ले।
1: अच्छा।
0: हुनता ने नौकरी करुन करुन मैं लोग मानचो सेवा बले करे मैं हुनता ने।
1: अच्छा
0: आओ और हुनता ने सेवा करुन करुन मके मके पहला आदमी आए मैं एनएमडीसी में नेशनल अवार्ड मेरे मुंतान मिल ली एनएमडीसी बाटले।
1: अच्छा
0: हाँ
1: काय काम काजे
0: गोटो असन काम आए हुन क्रेशर बोलते भी थी आए मशीन हुन पीसू आए लोहा के हुन खराब होली।
1: अच्छा
0: 6-7 महीना खराब होली हुन के मके हुनतान चो जीएम इंजीनियर मन पूछला आले एक कसन कर लो ने काय होए देहोर सांग तुई नहीं मैं कसम की नानी बीता है बड़े बड़े मन के पूछा नहीं नहीं हुन मन के मक विश्वास नहीं होए। तो मैं हुन मन के सांग ले मके मके के अवलोकन कर दिया मके फिर मैं सांगे दे मके पता चल ली मैं जान ले हुन के समझ ले कसन करू है कसन कर लोन बोल ले हुन के दोबारा रांची नेत्र का चे कम से कम जितलो बोले जिला आस उनके परमिशन धरुक पड़ुआ है 80 टन है उन।
1: अच्छा
0: उन लोहा पिस्तु भी थी हैंडल 80 टन है उनके नेत्र रिवार्ड में आज के लिए नहीं आए। तो मैं हुनके हुनिता ने हुन मन के 1 महीना बनान दी ले अगर हुनके नेतर होला अतर होले कम से कम कई करोड़ रुपीस उनके आना जाना में लागती। तो मैं 1 महीने के अंदर में हुनके कंप्लीट करूं दी ले। हम चो हुनता ने एक जनरल मैनेजर है पीसी गुप्ता बहुत ही अच्छा आदमी है हुन देख लो खूब खुश हो लो मैगजीन इंडिया में बिजनेस इंडिया में मैचो फ्रंट पेज में मुझे नाम निकल ली कि बोले इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया बोलून बाती। तो ये हुन गोटो काम होली असनी कम से कम नहीं मैं असन मचू वाट ले इंजीनियरिंग वाट ने करुन करुन 7-8 प्रकार चो काम।

0: मन के करूं दिले मैं।
1: हाओ गोटो कावरे का हुन और गोटो खुन की चलात बीती साफ ताय हुन के बनात बीती हुन के आनुन बाती बना ला दुई फीट चो हुन चो डायमीटर आए।
2: अच्छा
1: उन लोहा चो
2: हाँ।
1: और कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 मीटर लंबा आए
2: हुनके
1: बना तो रहे हुन चो बोले बना तो बीती मशीन नहीं रहे हुन चो बोले मैं जुगाड़ करूं बाती बना ले लेकिन बना तो काजी बना ले हुन चे नाप तो काजी 0.001 बोल लो बीती मतलब ये केस कसन के मेजरमेंट करते बीती हुन चो काजी गोटो इंस्ट्रूमेंट जरूरत आ से और सिर बना हुआ है तो जापान बना हुआ है।
2: अच्छा
1: तो मैं हुनमन के सांग ले असन असन लागे दे ये तो 6 महीना लागे दे असन नहीं हो फिर मैं वो आठ सांग ले नहीं हो मैं 500 रुपया में हुन इंस्ट्रूमेंट के बना दे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में बनाए दे 500 रुपया खर्च करू पड़े दे बस। तो नानी बीती माइक्रोमीटर है उनके मैं काट ले काटून बात हूँ फ्रेम बना ले फरान फ्रेम बना बात ही उनके 2 फीट मेजरमेंट कर दो डायमीटर मतलब उनके माइक्रोमीटर बना ले। हाओ हम चो गोटो इंजीनियर रहे तो लोग खुश हो उन बात ही भले अरे उन्होंने बोले मिठाई उठाई ला के सबको बांटने लगा अरे अभी तुम ऐसे ही तुमने हमारा प्रोजेक्ट को इतना कर दिया बड़ी इतना में कर दिया ऐसे कई प्रकार का मिसाल का जो काम है ना तो मैं बता नहीं सकता। मैं अपने आप को भी मैं ये मालूम नहीं था मैं कैसा वो कर रहा हूँ मुझे खुद को भी पता नहीं लगता था ये सारी चीज़। और वहाँ पर मेरे वहाँ जितने भी 4-5 CMD रहे बहुत ही अच्छा क्लोज रिलेशन था लोगों को वहाँ पर भर्ती करने के लिए भी मैं बोलने से हमारे स्थानीय लोगों को मैंने भर्ती कर देते थे। मेरे पास कई बार बोलते थे जब मैं नौकरी करता था भले इंजीनियर लाओ हमारे लोग तो इंजीनियर मुश्किल कोई पढ़ा ही नहीं था
2: हाँ।
1: मैं जो नौकरी चालू आता बोले साहब हमको हमारे लायक का नौकरी IT वाले इनको दो। इस तरीके से उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारे लोग को उस दरमियान में बहुत से लोगों को नौकरी मिला और इस तरीके से हमारा रहा। कुछ दिन के लिए मैं फॉरेन भी गया युगांडा हाँ वहाँ से फिर आने के बाद मैं फिर धीरे धीरे मेरे को समाज में सबसे ज़्यादा झुकाव था। मैं अपना ड्यूटी भी करता था और समाज का भी काम करता था मैं वहाँ पर सवेरे उठ के मतलब ड्यूटी जाने पर लेकिन मेरा एक टॉप प्रियोरिटी था फर्स्ट वर्क उसके बाद सोशल वर्क। जब हमको जो जॉब हमको अलाटमेंट होता था वो पहले कंप्लीट होना है फिर उसके बाद दूसरा काम करना है। इस तरीके से मैं वहाँ मेरे नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हुए कि मैं अपने आप को कभी विश्वास नहीं करता कि मैं ये सब काम मैं असंग कर ले
2: बोले तक इतलो अच्छा है बोले तुम चो जन बोले ने आगे ले गोटुक सेवा भावना चो मन तुम चो तान आसे और बोले ने बहुत काम जसन के सांगलास मंत्र एवे जैसन कि तुम रिटायर बोलोलास आरु सीधा सीधा समाज संग जुड़लास आरु समाज संगे जुड़तो के बोलूबे हम चो

0: कई बार लिख के दिए धावड़े साहब को, और उन्होंने सर्ववादी समाज का, हमारे जो बहुत से स्वतंत्र सेनानी कभी हमारा कम से कम कुछ नहीं तो 1876 से भी आगे का
1: हाँ
0: वो चीज, कुछ कुछ लोग को मैं भी नाम नहीं जान रहा हूँ
1: हाँ
0: क्या, कुछ कुछ ऐसे मारिन मन है वो, उन लोगों का पूरा निकाले उन्होंने, और उन्होंने हमारे साथ में हम लोग भी समाज को ये सारे चीज को बताए कि ये हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, इनको याद करो, ये हमारे जो जैसा भी इन्होंने उस दरमियान में कैसी परिस्थिति रही होगी, कैसे करके उन्होंने किया हुआ, वो सोचने वाली बात है। अभी के हिसाब से मत सोचिए, अब उस परिस्थिति में पहुंच के अपने आप को सोचिए। अभी जैसे झाड़ा सिराहा जी है नहीं, उनका तो एक पेज में ही कंप्लीट होता है, लेकिन उन्होंने कितना सेवा भावना किया वो तो देखो आप, ये सोचना है उसमें, कैसे रहे होंगे, कैसे काम किए होंगे, और वो हमारे समाज के लिए अपने आप को बलिदान दे दिए, तो ये है। उसी तरीके से हमारे गुंडा धुर जी हैं, डेबरी धुर जी हैं, उसी तरीके से हमारे अभी जैसे अपना इधर भूमकाल चौक बना हुआ है, भूमकाल चौक में हमारे 1910 में जितने भी शहीद हुए हैं 51 आदमी का उनका शिलालेख है, बहुत से लोग को मालूम ही नहीं है कि हमारे खानदान का है बोल के, ये हमारा रिश्ता है बोल के, हम लोग ने कई बार जा जा के बताया भी नहीं है, ऐसा है वैसा है, उनको इतना हामी इतनी सुनू रोलू ना हम जो गोटो बोलू रोलो मने असन असन रहे वो,
1: रहे।
0: उसके बाद कुछ नहीं जानते हो,
1: हाँ
0: उसके बाद कुछ नहीं जानते, तो उस टाइप के लोग भी हैं वहां पर कम से कम। इसीलिए हम लोगों का ये विचार है कि हमने दिया कमिश्नर महोदय के माध्यम से,
1: हाँ
0: बस्तर प्राधिकरण के से तरफ से उन्होंने के बिल्कुल जिस जितने भी हमारे 51 मतलब शहीद हुए हैं और
1: हाँ
0: जिस गांव से हैं
1: हाँ
0: उस गांव के साला का नाम हो
1: हाँ
0: और उस गांव में उसका स्टेच्यू हो।
1: स्टेशन हो।
0: अभी केदार जी भी आए थे
1: हाँ
0: अपना भूमकाल चौक का
1: हाँ
0: अनावरण करने के लिए, उन्होंने भी इनके सामने भी बोला गया है देखिए क्या होता है अभी आगे। हम फिर भी हम लोग जब तक जिंदा हैं ये सब चीज तो बताना तो छोड़ेंगे नहीं,
1: छोड़ेंगे।
0: हाँ बताते रहेंगे कि हम लोग कौन, हमारे कौन लोग हैं, ये क्या किए हैं, कैसा किए, हम जहां जहां पर भी जाते हैं हम बताते हैं, और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। देखिए हम देश को सोचने वाले तो हैं, बहुत लोग हैं, हम छोटे स्तर में छोट सोचें वही देश के लिए काम आएगा,
1: हाँ बिल्कुल।
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: आ जाएगा।
0: हम उधर सोचने के बाद वहां जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वहां क्या करेंगे,
1: क्या
0: और
1: करें।
0: हमारे निचले स्तर में हम काम करेंगे तो उसके हिसाब से वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, यही
1: हाँ
0: हमारा विचार है।
1: हाँ
0: हाँ
1: अच्छा। तो बल्दे दादा ये बोल मैं जसन की जानुक चाहे से जसन की असनी बुद्धि जीवी लोग पूरे उन बाती समाज के उठा तो काजे जसन की भी वन संसाधन बले आमचो बस्तर न्यासे उनचो बोले सदी उपयोग करतो और खूबी जरूरी आए हम जो जीवना काजे तो ये छो बोले कहीं काम बोले नहीं तुम चो

0: आपको मैं मेरे से आप पूछते तो मैं बताता, सबसे अच्छा ठंडक पहुंचाने वाला कुमी का रुख है,
1: कुमी है,
0: हर समय हरा भरा रहता है।
1: हाँ
0: उसको प्लांटेशन लगाओ और दिखने में उसका फल भी गोल गोल रहता है,
1: हाँ
0: देखने में है, उसका भी दवाई बनता है, उसको
1: हाँ
0: उसका बनता है दवा भी बनता है।
1: हाँ
0: उसी हिसाब से आप चार को लगाओ, टेमरू को लगाओ,
1: टेमरुख, हाँ
0: है कि नहीं।
1: हाँ
0: और उसके बाद मैं यार दो चार और झाड़ बताया जो ज्यादा मतलब, हाँ उसके बाद हो गया अपना क्या नाम का ये भेलवा हो गया,
1: भेलवा,
0: वो पत्ता उतना झड़ता नहीं है, वो
1: हाँ
0: वैसा वाला झाड़ को लगाओ जो पत्ता नहीं झड़ता है, जिसको फायदा भी हो।
1: हाँ
0: तो ये कहने का मतलब ये अब जड़ी बूटी की बात है। बात यह है हमारे यहाँ जिस तरीके से जड़ी बूटियां तो बहुत सारे हैं है, और हमारे यहाँ कॉमन यूज है भेलवा, है कि नहीं।
1: आया,
0: कॉमन इतना हमारा, जैसे आदमी कुछ क्या लग गया है बोले डिटल लगाओ,
1: डेटल
0: ऐसा
1: है,
0: बोलते हैं नहीं,
1: आओ
0: वही हिसाब से हमारे गांव वाले भेलवा जो
1: भेलवा
0: है,
1: में,
0: कहीं कट गया भेलवा लगाओ, कहीं दर्द हो गया भेलवा
1: भेलवा लगाओ,
0: टीको, है नहीं, ये ना
1: हाँ
0: कहा है इसमें उतार वरान दिया, ऐसा टाइप जो बात मना से।
1: हाँ
0: तो वो वैसे चीज मन को हम लोग का हमारे रूढ़ी प्रथाओं में भी ये जो चलन है, और जड़ी बूटी का हिसाब से अभी देखिए जिस तरीके से हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे होने के बाद भी बनने से सावन के महीने में जितने भी जड़ी बूटियां हैं बोलते हैं ये सावन
1: हाँ
0: के महीने में उगते हैं,
1: हाँ
0: और जितना भी प्रयोग
1: हाँ
0: इसी सावन के महीने में करते हैं।
1: हाँ
0: हमारे रूढ़ी प्रथा के हिसाब से भी थोड़ा गुनिया वुनिया सीखने वाले जो होता है,
1: हाँ
0: देखिए
1: आया,
0: हर चीज का दो मतलब है, गुनिया अच्छा भी है और गुनिया बुरा भी है, लेकिन हम लोग गुनिया को अच्छे ही समझ के उनके पास जाते हैं।
1: हाँ
0: उन लोग भी अपना परीक्षा इसी आने वाले अमुस त्योहार में इनका एग्जाम होता है, कहते हैं
1: हाँ
0: हमारे सब देखे तो नहीं है ऐसा सुने हैं,
1: सुने, हाँ
0: एग्जाम होता है। तो ये सावन का महीना हमारे लोगों के लिए भी कितना इंपॉर्टेंस है।
1: हाँ
0: तो अब यही यही चीज हरा भरा का टाइम है,
1: हाँ
0: अब इसको इन्वायरमेंट डे भी आएगा अभी, है नहीं,
1: हाँ
0: अभी इन्वायरमेंट डे सरकारी हिसाब से इन्वायरमेंट डे भी आएगा
1: पर्यावरण संरक्षण,
0: हाँ। तो ये सारे चीज जितने भी चीज है हमारी रूढ़ी प्रथा से कन्वर्ट करके ही किया हुआ है। हम
1: हाँ
0: लोग जो उस चीज को गहन ध्यान करेगा ना तो तब समझ में आएगा कि हाँ ये हमारा चीज है,
1: हाँ
0: इसको ऐसा बनाया गया, इसको
1: इसको
0: ऐसा
1: ऐसा,
0: बना गया, अरे
1: हाँ
0: हमारा ही चीज है, लेकिन अभी तक उसको ऐसा समझने के लिए अच्छा कार्यशाला चाहिए।
1: हाँ
0: अच्छा कार्यशाला वो भी अदना आदमी कैसा होना चाहिए, उसको दोनों को हम लोग को क्या, दोनों को अभी इसीलिए सरकार अभी इसी इसीलिए हमारे 5th शेड्यूल में है
1: हाँ
0: स्थानीय भाषा सिखा बोली सिखाना है।
1: हाँ
0: बहुत से दवा दारू को हिंदी हिसाब ने नहीं जानते हैं,
1: हाँ
0: हल्बी हिसाब ने गोड़ी हिसाब में
1: उन्हें,
0: जानेंगे,
1: हाँ
0: तो उसको अपने जीवना जीवन के लिए दुख दर्द में शामिल करेंगे इस भाषा में बोल के, इस तरह से है बोल के शासन भी उसको बढ़ावा दे रही है।
1: हाँ
0: हाँ तो ये है जड़ी बूटी का। अभी हमारे जानवर का भी अभी महीना आ रहा है, उनको भी जड़ी बूटी खिलाने का,
1: खिलान, हाँ
0: हाँ अभी एक दो हफ्ता में आएगा ही आएगा ही,
1: हाँ
0: है नहीं,
1: आया,
0: बहुत सारे जो चीजेस हैं। तो जड़ी बूटी का कहने का मतलब है ना हमारे में ना बहुत ही है जड़ी बूटी का। अब
1: हाँ
0: सबसे ज्यादा उन लोग को सीधा कुछ भी हो गया उनका जड़ी बूटी में ध्यान जाता है और गुनिया के पास ध्यान जाता है,
1: हाँ
0: और हॉस्पिटल का ध्यान जाता नहीं है, चाहे आप कितना ही भी कुछ करिए।
1: आया,
0: ये आप ठीक है, डेवलप होना है, डेवलप

0: में जनसंपर्क माहौल नहीं है, अपने में सीमित रहते हैं, खाओ कमाओ, है
1: कमाओ।
0: नहीं। अब ये सारे चीज अब धीरे धीरे जो नए जनरेशन उनके बीच में जब पैदा होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, वो उनके खत्म होते जाएंगे, तब फिर वो एक प्रकार का है कि मतलब हमारा रूढ़ी प्रथा खत्म करने वाली बात है, सीधा
1: हाँ
0: सीधा वो ऑटोमेटिकली भूल जाएगा, वो
1: बोल।
0: उसे याद नहीं रहेगा। हमको बोलते जरूर है कि भले भाई अपनों की याद रखना चाहिए, क्या रखेगा, जब ध्यान उस तरीके से नहीं रहेगा तो कहां से याद
1: कहाँ से
0: रखेगा।
1: याद रहेगा, हम
0: तो
1: तो है।
0: ये बात है।
1: तो अले बलदेव मौर्य दादा दखा आज तुम संगीत लो। अच्छा हम जो पूरा संस्कृति जो जो गोड बात आए हम जो शहीद वीर मंच बोले गोड बात होली अरे तुम जो संघर्ष जीवना जो गोट के बोले सांगला है तो असन आए ये गोट मन के आम चो एप चो नवा पीढ़ी सुन ला जाले जान ला जाले उन मन की खिनिक बूझे दे। आप लोग खुद चो बाढ़ती संग संगे देश चो बाढ़ती काज बोल पूरे है दयाल जुआर
0: जोहार
1: सेवा जुआर।
0: सेवा जोहार हो।
2: कार्यक्रम भेंटघाट में अभी आप सुन रहे थे सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक श्री बलदेव मौर्य से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता थे बलबीर सिंह कच्छ।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: सुनो ना।
7: हाँ?
6: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
7: तो रोका किसने है? हाँ?
6: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
7: मुझसे।
6: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
7: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
6: पर उससे मेरा क्या फायदा?
7: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
6: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
7: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
6: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: मीडियम वेव FM बैंड और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात की 10 बजे हैं। लोक गीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में लीजिए सुनिए जैनू सलाम और साथियों के गाए गोंडी लोक गीत।

0: मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: लोक गीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में आप सुन रहे हैं जैनू सलाम और साथियों के गाए गोंडी लोकगीत।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम कोदोमाली। इसमें लीजिए अब सुनिए जैनू सलाम और साथियों का गाया गोंडी शादी गीत।

0: लोक गीतों के कार्यक्रम कोदोमाली में अभी आप सुन रहे थे जैनू सलाम और साथियों के गाए गोंडी लोक गीत। ये आकाशवाणी जगदलपुर है। रात्रि के 11 बजने को हैं समाचार, अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री

0: श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए तीन सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia

रायपुर केंद्र है। रात के 11:10 हुए हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। अब हमें अनुमति दीजिए। जय